100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, शक संवत 1948 तदनुसार 29 जून 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारुरिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनका कपूर के समान गौर वर्ण है, जो साक्षात करुणा के अवतार हैं, जो समस्त सृष्टि के सार हैं, जो सांपों को हार के रूप में गले में धारण करते हैं, हम उन शिव संग पार्वती जी को प्रणाम करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि वे सदा हमारे हृदय में निवास करें और हमारा कल्याण करें।

पुष्पांजलि का प्रथम पुष्प अर्पित है श्री गणेश के चरणों में। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहिं पद पंकज सेव। हे विश्वनाथ, हे त्रिपुरारी, आप हम सबके स्वामी हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जड़ चेतन, नाग, मनुष्य और देवता ये सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। अर्थात भगवान शिव केवल देवताओं के पूजनीय नहीं हैं, बल्कि वे महादेव हैं। दानव, मानव, पशु, पक्षी और प्रकृति का कण कण उनकी ही शरण में रहता है। आपकी भक्ति निष्पक्ष और वे सबके दुखों को हरने वाले हम सबके भोलेनाथ हैं।

आप सुन रहे हैं भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि आकांक्षा के साथ 100.7 FM रेनबो पर। कहते हैं जहां स्वार्थ है वहां श्रद्धा नहीं हो सकती, और जहां श्रद्धा है वहां स्वार्थ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसलिए अपने आराध्य के सामने कभी शून्य मन शांत हृदय लेकर जाइए, स्वयं को प्रभु के सामने समक्ष समर्पित कर दीजिए। आप सब कुछ पालेंगे, संतोष, समृद्धि, सुकून।

सर्वे मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रकार के कल्याण करने वाली हमारी माँ ही कल्याणमयी हमारे सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। हे तीनों लोक की देवी गौरी, हमें अपनी शरण के योग्य बनाए। नारायण की शक्ति हो आप, हम सभी भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें।

कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोए। आप सुन रहे हैं भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि, आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

जब हम ये मान लेते हैं कि पूरे संसार को चलाने वाला, सबका कृपा करने वाला और सबकी चिंता करने वाले कोई और नहीं बल्कि परम शक्ति स्वयं है, तो हमारे मन का अकारण भय और तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सच्ची भक्ति हमें यही भरोसा दिलाती है कि जिसने हमें संसार में भेजा है वे हमारी कृपा, हमारे कल्याण का भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए चिंता छोड़िए, प्रभु पर विश्वास रखिए और केवल अपने कर्म श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। इस कलियुग में मात्र दया ही धर्म का आधार है और सभी पापों का आधार अभिमान है। इसलिए स्वयं को प्रभु का दास मानकर उसके बनाए जीवन संसार की सेवा, दया ही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।

हनुमान नहीं हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है और ना ही कोई उनके जैसा श्री राम के चरणों का परम प्रेमी अनुरागी है। संसार में सबसे बड़ा भाग्य धन या वैभव पाना नहीं है बल्कि प्रभु के चरणों में अनन्य और निश्चल प्रेम होना है। हनुमान जी के इसी निष्काम भक्ति और समर्पण का इस संसार में प्रतीक है। प्रभु कृपा सदैव हम पर बनी रहे इसी मनोकामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जिसने भारत और सेशेल्स की मजबूत मित्रता को दर्शाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पहले पीलीभीत पहुंचेंगे, जहां बीसलपुर में पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों के 569 करोड़ से अधिक का विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के साथ ही पट्टा वितरण करेंगे। पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां वह मुरादाबाद मंडल में लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों की समीक्षा और नए कार्यों की कार्ययोजना के संबंध में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, कृषि, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग सहित प्रदेश की विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने अग्नि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर NOC की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराया जाए। जिन संस्थानों की फायर NOC की वैधता समाप्त होने वाली है अथवा जिनके पास अब तक वैध फायर NOC उपलब्ध नहीं है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं। ICC महिला T20 विश्व कप में कल रात ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह मौसम में बदलाव देखने को मिला है और मध्यम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी संभाग के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: शहर आपका, धुन आपकी।

बादल सा आता है मैं बूंदों सी गिर जाती हूँ, तो कुदरत का करिश्मा जैसे और मैं बारिश कहलाती हूँ। खामोशियाँ खिलखिलाना सीख गई हैं मेरी, मानो मानो कोई करिश्मा बन तुम होठों पे ठहरे हो। नमस्कार, सत श्री अकाल आदा। जी हाँ, आकांक्षा है आपके साथ और प्रोग्राम है सदाबहार गीत। मौसम का रुख क्या बताएं, बेशक सुहावना है, और बताया भी आपको कि थोड़ी सी करवट ली है और थोड़ी सी इस करवट से आपको राहत मिल सकती है। तो आइए इस खूबसूरत से मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, इस पल को एंजॉय करने के लिए सुनते हैं उन बेहतरीन गीतों को बेहतरीन बातों के साथ। जी हाँ, मेरे साथ बने रही है यहीं पर ओनली 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जब तक हम ना समझ होते हैं ना, तब तक वो छड़ी पर चलने वाला सर्कस, रुमाल से फूल निकालना या फिर यूं आंखों से गायब हो जाना, यही सब हमें जादू लगता था। लेकिन उम्र की समझदारी बताती है कि ये जिंदगी से बड़ा कोई जादू का प्लेटफॉर्म नहीं है और कुदरत से बड़ा कोई भी जादूगर नहीं है। वो कैसे? तारों का टिमटिपाना, सूरज का छिप जाना और हवा का ना दिखकर भी एक खूबसूरत एहसास, बेहद हसीन रंगों से भी रंगीन ये दुनिया, क्या इससे बड़ा कोई जादू हमारी जिंदगी में हो सकता है?

बिल्कुल, जब जिंदगी में हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं ना कि जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, असल में उन्हें लगता है कि हो ही नहीं सकता, तो वो भी एक तो लाइफ का मैजिक ही है ना। जो औरों से नहीं हो सकता उसे आपने करके दिखाया, तो ये तो मैजिक है। और भाई इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी तभी खूबसूरत है जब आप दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं मैजिक की, तो क्या वाकई असल जिंदगी में जब आप देखते हैं ना कि जादू होता है या नहीं, तो ये पूरी थ्योरी आपके विश्वास पर डिपेंड करती है। जैसे आप जब स्टेज पर मौजूद जादूगर को देखते हैं, क्यों कितनी अपने हाथ की सफाई से आपकी आंखों को धोखा दे देता है, या फिर यूं कहें कि विश्वास दिला देता है कि हाँ ऐसा ही हुआ, तो आप मान भी तो जाते हैं। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे ही एफर्ट्स, ऐसे ही काम जो लोगों को ये बता सकते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल, ऐसे काम जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल लगते हैं और आप उसे करके दिखा दें, तो जिंदगी में इससे बड़ा क्या कोई और जादू हो सकता है। तो बरकरार रखिए खूबसूरत से जादू को, जो लोगों को जब आप उनके सामने जाए ना, तो लोग आपको देखकर बोले कि यार ये सामने कौन आ गया, इसी का तो हमें इंतजार था।

बातें, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं कुछ लोगों से जिन्हें देखकर वाकई ऐसा लगता है कि यार ये तो जादू था और हम उनको खोना नहीं चाहते और चाहते हैं कि बस बार बार ये जादू होता रहे, ये खूबसूरत सा जादू। आज आप सोच रहे होंगे कि आकांक्षा आज जादू का बॉक्स लेकर क्यों बैठी है, ऐसी क्या बात है कि आज मैं सिर्फ जादू के बारे में बात कर रही हूँ। दरअसल कल मैंने एक हेडलाइन पढ़ी एक मैगजीन के ऊपर और वहाँ पर बड़ी बेहतरीन बात लिखी थी, सिर्फ एक हेडलाइन, कि क्या असल जिंदगी में भी जादू होता है। तो अब बस दिमाग उसी ओर दौड़ गया और बहुत सी बातें, बहुत से ख्याल दिमाग में आने लगे कि वाकई ये सवाल तो है कि जहाँ पर हम बहुत सारी मिन्नतें करते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, तो क्या हम किसी जादू का इंतजार करते हैं? क्या असल जिंदगी में भी जादू होता है? आप भी जरूर बताइएगा। जादू का मतलब तो ये भी है कि जैसे आपने देखा कि स्टेज पर बॉक्स को छूते ही तितलियां उड़ने लगी, लेकिन मेरे हिसाब से माँ की हथेलियों में भी तो जादू होता है, जिसकी दुआ दवा से ज्यादा काम कर जाती है। किसी अपने की झप्पी भी बड़ा आराम दे जाती है, जो आपके लिए आपकी जादू की झप्पी कहलाती है। और जिंदगी में जादू तो ये भी है कि वो ख्वाहिशें जो बताई भी नहीं, आपने किसी से जताई भी नहीं, फिर भी आपके पिता ने उनको पूरा किया आपके बिना कहे। मेरे हिसाब से जिंदगी की यही छोटे छोटे सरप्राइजेस, ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स जिसे आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनाते हैं, वही तो है हमारी जिंदगी का असली जादू।

जी हाँ, 7:27 और प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गीत, जिसमें बेहतरीन एहसास और जज्बातों के साथ आप सुन रहे हैं उस दौर के बेहतरीन गीतों को। तो बस यूं ही बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, जिंदगी में मुस्कुराते रहना और खुश रहना, लाख मुसीबतें हों, लाख तकलीफें हों, लेकिन फिर भी अपने आप को समेट के रहना, ये बड़ा जादू है। और आपको पता है कि हम बेशक बहुत एफर्ट्स करते हैं कि हम अच्छे दिखें, बहुत से रंग चुनते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स चुनते हैं, बहुत से कपड़े भी चुनते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, लेकिन उससे पहले, उन सब चीज़ों से पहले, आपको खूबसूरत दिखने के लिए, ताकि आप एक अलग छाप छोड़ें, लोगों की ज़िंदगी में जादू बने, उसके लिए आपको मुस्कुराना होगा। क्योंकि इस जहां में एक ही लिबास मशहूर है, इस जहां में एक ही लिबास मशहूर है, वो है आपकी और सिर्फ आपकी मुस्कुराहट। अगर आप मुस्कुराते हैं, आप खुश रहना जानते हैं और लोगों को खुश रखना जानते हैं, आपकी वाइब्स ऐसी हैं कि जब आप कहीं भी पहुंच जाएं तो बस आपको देखकर लोगों के चेहरे पर सुकून आता है, एक प्यारी सी स्माइल आती है कि हाँ यार, इनसे बात करके अच्छा लगता है, तो बेशक आपकी

जिंदगी दूसरों के लिए जादू है। वो कहते हैं ना कि यहाँ सूरज हंसेंगे आंसुओं को कौन देखेगा, चमकती धूप होगी जुगनुओं को कौन देखेगा, अगर हम साहिलों पर डोर कांटे लेकर बैठेंगे, हम साहिलों पर डोर कांटे लेकर बैठेंगे तो मौजों में चमकती तितलियों को कौन देखेगा, यहाँ सूरज हंसेंगे आंसुओं को कौन देखेगा। इंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम सदाबहार गीत आकांक्षा के साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जिंदगी का एक राग आप भी जानते हैं जो कहती है कि आंखों में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो दोस्तों तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। जी हाँ, इस खूबसूरत से सफर में आप हैं आकांक्षा के साथ। 7:42 प्रोग्राम है सदाबहार गीत और ऑनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर आप एंजॉय कर रहे हैं ये बेहतरीन सा प्रोग्राम।

कई कई बार जब हम दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते और कुछ ऐसे फैसले जिंदगी के हमारा दिल नहीं मान पाता, तो बेशक वहाँ पर कोई भी जादू, कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। वक्त लगता है ऐसी चीज़ों को सुलझने में, समेटने में। इसीलिए तो कहते हैं कि कसक दिल की मिटाने में ज़रा सी देर लगती है, किसी का गम भुलाने में ज़रा सी देर लगती है। तुम्हें पाने की ख्वाहिश में हुआ ये एहसास मुझको कि मुकद्दर आजमाने में जरा सी देर लगती है। जिसे मिन्नत मुरादों से बड़ी मुश्किल से पाया है, बिल्कुल उसे दिल से भुलाने में जरा सी देर लगती है।

बिल्कुल, आपकी किसी भी खुशी को कोई नज़र ना लगे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय करते रहें। लेकिन एक बात और, अभी किसी ने मुझे मैसेज किया कि आज आप जादू के बारे में बात कर रही हैं, और एक जादू वो पूछना चाह रही हैं, वो ट्रिक पूछना चाह रही हैं कि भाई साहब, लोग गलतियाँ करते जाते हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, क्या जादू हो सकता है कि उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए या ठीक कर दिया जाए। तो आपको बता दूँ कि दो शब्द होते हैं, गलती और गुनाह। और एक ह्यूमन टेंडेंसी, या यूं कहें कि हमारा एक तरह से एटीट्यूड यही बन जाता है कि हमें अपनी गलती या गुनाह कुछ भी हो वो बहुत छोटा नज़र आता है, तो इसीलिए अपनी जितनी भी गलती है वो गलती ही नज़र आती है, लेकिन सामने वाले की छोटी सी भी गलती हमें गुनाह नज़र आती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई माफ़ कर दे, तो आप पहले सामने वाले को माफ़ करने की कैपेसिटी रखें, क्योंकि वहीं से तय होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने लोग शामिल कर लेते हैं। और बेशक एक लिमिट तय रखें, क्योंकि

बार बार जब हम गलतियों को माफ करने लगते हैं इतना, तो वो कहीं ना कहीं गुनाह बनती जाती हैं, अपने साथ हम गलत करने लगते हैं। तो बिल्कुल मौके दीजिए, लेकिन एक लिमिट तक। आपकी जिंदगी में ऐसी ही खूबसूरत जादू की ट्रिक्स बरकरार रहे। बहरहाल 7:54 हो रहा है और ये वक्त मुझसे कह रहा है कि भाई प्रोग्राम सदाबहार गीत से मुझे दीजिए अनुमति। हम मिलेंगे आपसे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक दोस्त के साथ 8:15 पे, और 8:00 आप सुन सकेंगे हमारा समाचार दिल्ली केंद्र से। बस यूं ही बनी रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी समाचार कक्ष से आनंद पाठक
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य संपर्क सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर्यावरण संबंधी कार्यों टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है समाचार कक्ष से कृष्णकांत
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके

0: सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज़ जल डमरूमत से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा

0: परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7117 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य

कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: शहर आपका, धुन आपकी।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। जी हाँ, आपसे कहा था ना कि वादे के मुताबिक लेकर हाजिर है हम आपका बेहतरीन प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो। गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: गुड मॉर्निंग आकांक्षा, कैसी हैं आप?
0: मैं तो बढ़िया हूँ। और इतनी सुरीली आवाज एक आवाज तो आप सुबह से सुन रहे हैं, अब वो कैसी कर्णप्रिय थी या नहीं, ये अभी मेल्स के जरिए पता चलेगा।
1: मैं बताऊंगी।
0: हाँ, वो ये बताएंगी। और इनका नाम मैं बता दूं, चंद्रकला है हमारे साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।
1: शुक्रिया आकांक्षा। और ये मॉर्निंग आज काफी गुड मुझे वैसे लग रही है। जब मैं आ रही थी स्टूडियो तो सनसनाती हवाएं ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी, लेकिन जब धूप दस्तक दे रही थी ना तो वो थोड़ा मजा नहीं आ रहा था।
0: वो कहते हैं ना, करवटे बदल रहा है मौसम।
1: बिल्कुल,
0: जैसे आपकी नाम है ना चंद्रकला, तो चांद की कलाएं भी बदलती रहती हैं, उसी तरह से मौसम भी अपनी करवट बदलता है। और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ अपने वादे के मुताबिक रहता है, क्योंकि इसमें फुल पैकेज है एंटरटेनमेंट का, बहुत ढेर सारी बातें।
1: बिल्कुल। और आपने चांद का नाम लिया तो मुझे वो समय याद आ रहा है जब रात में लाइट चले जाती है और सब लोग उठ करके छतों में जाते हैं, तब देखते हैं कि वाह, चांद इतना खूबसूरत लग रहा है सन्नाटे भरी रातों में। और जब बारिश के थोड़े छींटे आए हों बारिश के बाद, और आज गर्म तवे में छींटे मारने के बाद जो उमस होती है, थोड़ी बहुत ऐसी जैसी महसूस होने वाली दिन में।
0: क्या बात है। तो बहरहाल 8:18 और सारा कुछ बता दिया है चंद्रकला ने कि भाई किस तरह का मौसम है, किस तरह का माहौल है। और आगे हम बताएंगे कि इस प्रोग्राम में क्या क्या खास है आपके लिए।

0: जी हाँ, एक ऐसी थॉट, एक पॉजिटिव थॉट जो आपके दिन को बनाती है खूबसूरत। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है चंद्रकला?
1: आज का मॉर्निंग मंत्रा कहता है कि मुस्कान आपकी पहचान है और सकारात्मक सोच आपकी ताकत। इन्हें कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि यही दो चीजें हर दिन को बेहतर बना सकती हैं।
0: बिल्कुल, तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, तो बेशक ये पॉजिटिव वाइब आप हर तरफ हर दिल में जगा सकते हैं।
1: और आकांक्षा, आपने ये खूबसूरत बात बोली और मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात याद आई कि जब भी हम सुबह उठते हैं, मम्मी, बड़े या जो भी होते हैं, हमें नाश्ते में बहुत हेल्दी और ताकतवर चीज़ देते हैं, ये सोच करके कि पूरा दिन जो है वो एनर्जी में जाएगा। तो इसीलिए हमारे माइंड के लिए, हमारी सोच के लिए और हमारी स्ट्रेंथ के लिए पॉजिटिविटी भी मॉर्निंग डोज लेनी ज़रूरी है।
0: तो बिल्कुल अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट में इस पॉजिटिव मंत्रा को ज़रूर रखिए।
1: एग्जैक्टली।

0: क्या खूबसूरत, ओ सॉरी आप कुछ कहने जा रही थी, लेकिन आपने अपनी तरफ से गाना प्ले किया था और मुझे लगा कि क्या खूबसूरत गाना प्ले किया, मुझे मतलब बहुत मजा आ रहा था बैठे बैठे, और मुझे पूरा पता है कि जो सुन रहे ना उन्हें भी बहुत मजा आ रहा होगा।
1: बिल्कुल चंद्रकला, और खूबसूरत प्लेलिस्ट हम बनाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे लिसनर्स और साथ ही साथ हम भी इंजॉय करते हैं इन सारी प्लेलिस्ट को। और एक और बात, जैसे अब ये लास्ट में जो एक राइम जा रही थी ना, ला ला ला ला ला ला, तो मैं यही बोल रही थी कि कभी कभी हम ऐसे खाली बैठे होते तो ऐसी चीजों को काउंट भी करने लगते हैं, कितनी बार गाया है और कितने सुर में गाया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इनको शायद पता होगा ये काउंटिंग कि हमें इतनी बार ये सुर ये ताल ऐसे जोड़ना है, ऐसे करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर होगा, लिरिसिस्ट होगा, जब गा रही होगी सिंगर, उससे कहा गया चार बार बेटा ला ला ला ला करना
1: है। आवाज है। तो भाई देखिए, कैलकुलेशंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो जो उस दौर के लोग थे चंद्रकला, तो वो लोग क्या करते थे कि अगर एक रुपया भी खर्च करते थे
0: जी,
1: तो वो हर एक चीज़ का हिसाब रखते थे। आप उनसे पूछिए कि 6 महीने पहले आपने यहाँ पे ये फलाना खर्च किया है तो उसका हिसाब है आपके पास, तो फटाक से अपनी डायरी निकालते थे और यूँ दिखा देते थे, इतनी साफ राइटिंग में लिखा होता था कि आपको पता चल जाता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो हिसाब, अच्छा आपको भी याद होगा जैसे पेरेंट्स मम्मी पापा ने कुछ आपसे सामान मंगाया होगा तो वो मतलब ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा 5 ही रुपये तो बच्चे ने खर्च कर लिया होगा, खर्च करने तो देते थे लेकिन आपको याद होगा पूछते थे क्या खरीदा, जरूरत काम की चीज थी क्या, कहाँ उड़ा लिए पैसे।
1: हाँ, और तुमको किसी ने ठगा तो नहीं कहीं, हाँ, तुमसे उस चीज के ज्यादा पैसे तो नहीं ले लिए।
0: एग्जैक्टली।
1: तो आज इन सारे आंकड़ों के बारे में, इन सारे कैलकुलेशंस के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और चंद्रकला, जैसे कभी कभी आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगी, आज सवालों की लड़ी लगा दी है मैंने, दूसरा सवाल ये होगा कि आप जैसे कोई भी काम करते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ का कैलकुलेशन रखते हैं, हर चीज़ का मेजरमेंट रखते हैं कि भाई मैंने इतना तेल डलाया तो मैं इतनी दूरी तक जा सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ, या फिर मैं मुझे इस तरह से पानी खर्च करना चाहिए, इस तरह से बहुत से कैलकुलेशन लोग रखते हैं जो आंकड़ों पर निर्भर करते हैं, उनकी लाइफ निर्भर करती है। आप भी ऐसे ही हैं या फिर एक होता है ना अंधाधुंध वाली जिंदगी कि हाँ बस चलता जा रहा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं।
0: आपने बिल्कुल ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है, और मैं बताऊँ मैं जैसी हूँ एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे क्या पसंद है मैं वो बताती हूँ आपको। मुझे ये पसंद है कि अगर मैं आज उठी हूँ तो दिन भर में मैं अपना सुबह का ख्याल रखती हूँ कि दिन भर मुझे कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना है, और मैं जो गिलास है हमारा जो सिपर है जो बॉटल है वो बिल्कुल ऐसा रखते हैं कि हमें ध्यान आता रहे कि हमने इतना पानी पिया है। इसके अलावा जो खर्च होता है उसके बारे में भी थोड़ा सोचती हूँ कि आज लिमिट इतनी ही है, इतना ही खर्च किया जाएगा, इस बजट से ऊपर खर्चा नहीं जाएगा, मुझे इस तरीके का पसंद है, थोड़ा बहुत इसमें बंद करके रहने की कोशिश करती हूँ। और अपना बताइए, अपना बताइए।
1: भाई देखिए, मेरे साथ ये होता है कि कैलकुलेशंस दिमाग में बहुत चलते चलते, लेकिन मैं कहीं लिखती नहीं हूँ, बस दिमाग में वो आंकड़े चलते रहते कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और कुछ चीज़ों में बचती भी हूँ कि जैसे मैं वेट अपना मेजरमेंट नहीं करना चाहती
0: क्योंकि अगर वो सही सही पता चल गया तो उसके बाद थोड़ा सा स्माइल जा भी सकती है
1: आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, टेंशन आपको हो जाती है, तो मैं सोचती कि ठीक है यार पहले तो आप उसको कम करने की कोशिश करें, उसके बाद हम और भी एफर्ट्स करेंगे तब मेजर कर लेंगे अगर हमको रियलाइज होता है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल हमारी लिसनर चंद्रकला जी सोच रहे हैं कि भाई ऐसी आंकड़ों की बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्योंकि आज का मुद्दा कुछ ऐसे ही रिलेट है।
2: मुद्दा आज का।
0: जी हाँ, आज का मुद्दा ये कह रहा है, कहावत है कि जो मापा जाता है, नाप तोल करके कैलकुलेट करके रखा जाता है वही सुधरता है, वही सही मायने में सेट रहता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मतलब आकांक्षा समझाइए जरा हमारे लिसनर्स को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी कैलकुलेशंस और आंकड़ों को रखना बहुत जरूरी होता है। जरूरी है कि आप अपनी जितनी भी वर्थ है या फिर जितने भी आपके ऑफिस पेपर्स हैं, आपके काम है, उन्हीं की आप कैलकुलेशन रखें, आंकड़े रखें, लेकिन जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कैलकुलेशन, जिनका आंकड़ा रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप इस चीज़ को कितना फॉलो करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें, जैसे कि आप वेट के बारे में बता सकते हैं कि भाई हम हर महीने एक डाइट चार्ट के साथ

0: अपना वेट मेजरमेंट करते हैं, आप खर्चे मेजरमेंट अपने करते हैं, उनका आंकड़ा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज हैं नॉर्मल डेली लाइफ की चलते।
1: जैसे कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो दिन भर आजकल स्टॉप वॉच है, टाइमर है, मोबाइल है, वो अपना टाइम गिन करके रखते हैं, कैलकुलेट करके रखते हैं कि दिन भर में हमने कितने घंटे पढ़ाई की और कितनी करनी चाहिए, कितनी और बची है।
0: तो बिल्कुल ऐसे डेली लाइफ के आंकड़ों से आपकी जिंदगी में कौन से पॉजिटिव बदलाव आए हैं इसके बारे में आप हमसे शेयर करिए fmakashwadilakhnow@gmail.com
1: पर। और भाई धड़कन जो है ये लखनऊ की है, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, आपकी दो दोस्त आकांक्षा और चंद्रकला हैं आपके साथ।

0: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। जी 8:40 और ये वक्त है सिटी अपडेट का। आपके शहर में क्या हो रहा है खास और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे सकती है थोड़ा सा लाभ, तो उसके लिए बस हम हैं तैयार बताने के लिए।
1: और पहली अपडेट ये है आज की, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में संचालित डी फार्म पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए समर्थ पोर्टल 30 जून तक के लिए खोल दिया गया है। अरे 30 जून तो कल ही है,
0: बिल्कुल।
1: और वही डी फार्म ने कुल 60 सीटों पर जो आपके एडमिशन्स हैं, आपके प्रवेश हैं, वो मिल जाएंगे। और इसी के साथ जो अगली खबर आपके लिए है वो है आईटी कॉलेज के जितने भी बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं उनमें दाखिले के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है 2 और 3 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए आज ही तक एप्लीकेशन का मौका है, यानी कि 29 जून तक ही। और उसी दिन से जो आप कैंडिडेट्स हैं सारे, आपको एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, मिल जाएंगे वेबसाइट पे।
0: बिल्कुल। और हो रही है पढ़ाई की बात, तो एक और इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं पीएचडी प्रवेश के लिए चयनित किए गए हैं, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 29 जून को यानी कि आज ही सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। कॉलेज की तरफ से जारी जो आदेश है उसमें कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं शकुंतला विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के प्रथम तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर उपस्थित हो जाएं। तो वक्त याद रखिए, डेट तो आज ही की है क्योंकि बॉर्डर लाइन है, और टाइम है 10 बजे से ये सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि भाई अगर आप एडमिशन की जद्दोजहद में हैं तो अमीनाबाद इंटर कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ लगभग 1200 सीटों पर छात्रों के साथ छात्राओं के भी दाखिले होंगे। फिलहाल कॉलेज में 1000 विद्यार्थी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और ऐसे में बची 200 सीटों पर अगस्त तक प्रवेश लिया जाएगा। कॉलेज जो अभी तक कई सालों बाद बालिकाओं को भी ये प्रवेश दे रहा है, तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
1: एक अगली अपडेट और आपको बताएं?
0: जी हाँ बिल्कुल बता दीजिए, क्योंकि देखिए ये अपडेट जो है ना वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है।
1: बिल्कुल। और बच्चों के आधार में आपको पता है बायोमेट्रिक का जो अपडेट होता है वो 5 और 15 वर्ष की एज पूरा, मतलब जो आप 5 या 15 साल के हो जाते हैं तो कंपलसरी है, वहाँ उस समय करवा लेना चाहिए। जिन स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके आधार अपडेट्स नहीं है उनकी जानकारी आप UDICE पोर्टल से ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसे में UIDAI ने 5 से 17 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को 30 सितंबर 2026 तक निशुल्क कर दिया है। तो ये बेहतरीन मौका है आपके साथ कि विदाउट एनी फी आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको कोई फीस नहीं देनी होगी क्योंकि एंटरटेनमेंट फुल ऑन फ्री है आपके लिए।

0: बिल्कुल, और इसी तरीके से पाया मैंने पाया तुम्हें करके रोज मैं सोचती हूँ कि आज क्या पाया क्या खोया। और कई सारे मेरी तरह लोग होते हैं जो हर दिन सोचते रहते हैं कि आज दिन भर क्या अच्छा काम किया। एक किसी बहुत भले इंसान का हमें एक दिन मैसेज भी आया था कि बहन, हम रात को अपना दिन ख़त्म करने के बाद शाम को हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि आज कितने अच्छे लोगों से मिले, कितनी पॉजिटिव बातें हुई और कितना पुण्य कमाया।
1: बिल्कुल चंद्रकला, और आज का मुद्दा भी कुछ हमने ऐसे ही लिया है।
0: बिल्कुल, बहुत सारे लोग, इवन हम सभी लोग दुनिया में बहुत कुछ जोड़ जोड़ करके, मेहनत से, अपनी बहुत ईमान से, बहुत मन से, कुछ बहुत कीमती चीज़ें और कुछ बहुत कीमती रिश्ते जो है वो बना करके बचा करके रखते हैं।
1: बिल्कुल, और आज हमने आपसे यही पूछा है कि भाई डेली लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैलकुलेशंस रखते हैं कि भाई मेरा वजन कितना बढ़ा कितना घटा, या फिर मैंने कितने लीटर आज पानी पिया, या फिर मुझे महीने में कितने लीटर पानी पीना चाहिए अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, पढ़ाई का टाइम कितना रखना चाहिए, खेलने का टाइम कितना रखना चाहिए, और प्रॉपर उसको दिमाग में नहीं बल्कि ऑन पेपर कैलकुलेट रखते हैं, कैलकुलेशन रखते हैं। तो आपसे हमने यही पूछा था कि क्या कुछ ऐसे ही कैलकुलेशंस आप भी अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और उनके क्या पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आए, वो हमसे शेयर करना था आपको।
0: बिल्कुल, और आपके ढेर सारे मेल्स आए हैं, और आकांक्षा मुझे याद आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हमें अभी भी दिखाई देते हैं, आजकल भी दिखाई देते हैं कि जो अपने दो दो रुपयों का भी हिसाब रखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं ग्रुप में बैठकर कि क्या है दो रुपए के लिए, मतलब इतनी बहस।
1: बिल्कुल, और कभी कभी चंद्रकला कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि जैसे कोई है जो पानी पे बहुत चिल्लाता है, क्यों इतना पानी वेस्ट करो, या बिल्कुल एक अगर बल्ब भी ऑन है तो वो घर में गुस्सा करते हैं कि क्यों लाइट बेवजह ऑन है, और हम कहते हैं अरे क्या हो गया, छोटी सी तो बात है। बट आपको पता है ये छोटी छोटी बचत, चाहे जिंदगी की आप पैसे की बचत हो, समय की बचत हो, या फिर आपकी रिसोर्सेज की बचत हो, ये छोटी छोटी सी बचत कईयों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाती है।
0: बिल्कुल, और मैं तो कहूंगी ये बचत मानसिकता जो है ना वो बहुत ही अच्छी आदत होती है।
1: बिल्कुल, तो आपकी क्या है मानसिकता, आपकी क्या है राय, तो इसके लिए हम चलते हैं आपकी मेल्स की ओर। और हमारे पास शैलेश कुमार, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से मेल कर रही हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी, और सुपरहिट जोड़ी का नाम मिल गया हमें, थैंक यू सो मच आकांक्षा और चंद्रकला मैम, नमस्कार आपको भी। और कह रहे हैं कि कल से मेरा दिल बड़ा टूटा हुआ है, इंडिया जो हार गई, कोई बात नहीं भाई, देखिए गेम जो है ना वो हार और जीत का ही नाम है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हम ही जीतेंगे, तो कभी कभी मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जी, मेल सुन रही हैं और कह रही हैं कि उतनी ज़्यादा खुशी नहीं महसूस हो रही, मगर फिर भी मुद्दे पर लिखा है कि मैं ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करके नहीं रखती हूँ, जो समय लम्हा गुजर जाता है उसको मैं पीछे छोड़ देती हूँ, आने वाला कल को याद करती हूँ और जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको मन में रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच।
0: मैं इन्होंने छोटा सा नीचे और टैग करके लिखा है ताकि वो दिख जाए तो अच्छा है, ना दिखे तो भी अच्छा, डायरी में नोट करके लिख लेती हूँ।
1: हाँ, ये आंकड़े भाई देखिए, इमोशंस को तो हम नहीं नोट करके रख सकते कि किसने कितना लीटर हमको रुलाया
0: बिल्कुल
1: और कितने टन हमको हंसाया, तो ये बातें तो हम नहीं कैलकुलेट करके रख सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें, कुछ आंकड़े हम नोट करके रखते हैं डेली लाइफ की, तो डायरी में नोट करने के लिए थैंक यू सो मच मेल करने के लिए।
0: और जो अगला मेल हमारे पास आया है वो है महेंद्र देपन जी का, और इन्होंने लिखा है आकांक्षा मैम और चंद्रकला मैम जी को नमस्कार। इन्होंने गाँव रूण जिला नागौर राजस्थान से हमें ट्यून इन किया है, वहाँ से हमें लाइव सुन रहे हैं, और इन्होंने लिखा आज सुबह के प्रोग्राम में चंद्रकला मैम की आवाज़ सुनकर खुशी हुई। मुझे भी बड़ी खुशी हुई भाई आपसे मिलकर, सुबह सुबह जो होता है मन वो बड़ा प्रसन्न होता है, फ्रेश होता है। इन्होंने लिखा आज के मुद्दे पर यही कहना है कि पैसों का हिसाब किताब बहुत पक्का रखता हूँ। मेरी मंथली सैलरी 25,000 है, जिसमें से सबसे पहले मैं 3500 रुपए की किस्त निकाल देता हूँ, फिर बाकी पैसों से घर का खर्च भी चला लेता हूँ और हर महीने 15,000 रुपए बचा भी लेता हूँ। मेरे लिए तो यही लाइफ की सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है। मतलब इन्होंने लिखा है साथ में कि आप दोनों का शो बहुत अच्छा चल रहा है, धूम मचाते रहिए। धूम तो मचेगी, लेकिन आपके मैसेज ने हमारे मतलब दिमाग के जो पर हैं वो थोड़े से खोल दिए हैं, क्योंकि आपने बोला है कि आप 15,000 रुपए हर महीने सेविंग करते हैं और सोच के सेविंग करते हैं, कितनी बड़ी बात है ये।
1: बिल्कुल बड़ी बात है, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हम भी जानना चाहते हैं जो हमें शॉक करें और लोगों को भी शॉक में डालें और एक तरह से मोटिवेट भी करें कि भाई किस तरह से लोग कैसी कैसी बचत कर सकते हैं। दतार सिंह और सुमन जी, आपको हम बता दें कि आप बिल्कुल अपने फरमाइशी गीत सुन सकते हैं, इसके कई मौके मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच मेल करने के लिए, और हॉट मेल पर आप अपने फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं।
1: शकील अहमद भी कुछ हमसे कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग आपको भी।

0: और रायबरेली से मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1 साल के बाद चंद्रकला मैम को जीएमएल पे सुन रहा हूँ। कितना नोट रखते हैं ये लोग
1: जी। ये भी एक कैलकुलेशन है मतलब आपको याद है कि लगभग मैं बहुत लंबे टाइम बाद जीएमएल पे आई हूँ।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया।
0: और मेरा काम ही कैलकुलेशन करना होता है बिजनेस, बिकॉज प्रोफेशनली आई एम एन अकाउंटेंट और मैं लगभग हर चीज का हिसाब रखता हूँ, लेकिन केवल दिमाग में लिखता कुछ नहीं हूँ। पैसों के साथ साथ कौन सा काम कब करना है इसका भी हिसाब रखता हूँ और हर काम समय पर करता रहता हूँ। जीवन का हर हिस्से का हिसाब रखने से जिंदगी सुख भरी गुजर जाती है, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए।
1: क्या बात है। और आपके मेल्स का जो सिलसिला है ना वो चलता ही रहेगा। और सुधांशु जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, राधे राधे। सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से। इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आज का सुविचार अच्छा लग रहा है, आप दोनों की आवाज़ अच्छी लगती है। टॉपिक पर कहना है कि मैं हर चीज़ कैलकुलेट जरूर करता हूँ, इससे जिंदगी बैलेंस्ड रहती है।
0: बिल्कुल।
1: और इन्होंने एक और लाइन लिखी, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो है हमारी टीम बाहर हो गई है, दिल दुखा है, लेकिन अगली बार जीतेंगे जरूर, यही तो जज्बा है।
0: क्या बात है। और जज्बा बनाए रखिए क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ 8:56, एक प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर, और फिर उसके बाद हम लेके आएंगे फिर से एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन
1: लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने कल प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को सभी समाचार पत्रों ने आज हेडलाइन में शामिल किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, हिंद महासागर बने अवसरों का महासागर। वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है, समुद्र से आकाश तक भारत बन रहा है लगातार आत्मनिर्भर। दैनिक जागरण ने इसके साथ ही अगले महीने मोदी कैबिनेट में फेरबदल के संकेत, केंद्र सरकार द्वारा घुसपैठियों की पहचान कर देश से बाहर निकालने का अभियान शुरू करने को भी प्रमुखता दी है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही पुलिस ने कल सभी 8 नामजद आरोपियों के घर एक साथ छापा मारा। अमर उजाला ने इसे सुर्खियों में शामिल करते हुए लिखा है, सभी 8 आरोपियों के घर छापे, टिन्नू के घर से नकदी व जेवर बरामद। अमृत विचार ने इस खबर पर लिखा है, 8 आरोपियों के घर छापेमारी, दस्तावेज जब्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हाथरस में जनसभा में राम मंदिर प्रकरण को लेकर सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के बयान को हेडलाइन में शामिल करते हुए लिखा है, गोली चलाने वाले मुंह में पानी ना लाएं। इसके साथ ही अखबार ने सोशल मीडिया पर अफसरों पर आरोप लगाने वाले सिपाही सुनील शुक्ला को बर्खास्त किए जाने, होमगार्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने और महिला को परीक्षा दिलाने के लिए छुट्टी के दिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के बैठने को सुर्खियों में शामिल किया है। ईरान पर हुए अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने रविवार को बहरीन और कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत को बंद कर दिया जाएगा। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को आज अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा, अमरीकी हमले के बाद ईरान ने दागी मिसाइलें, ट्रंप ने चेताया ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे। भारत में ड्रग तस्करी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, अब ड्रोन सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। स्वतंत्र भारत ने इस खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 5 साल में 100 गुना बढ़ी ड्रोन से ड्रग तस्करी। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ, 9:03 और एक बार फिर से हम पूरा कहते हैं ना कि बहुत ढेर सारे एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर है लेकर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
2: और आपके दो दोस्त आकांक्षा और चंद्रकला है आपके साथ। और ये जो हवाएं चल रही है ना, आज भले ही थोड़ी सी उमस है लेकिन जो हवाएं है ना वो सुकून देने वाली होती हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि जो ऊपर वाला है ना सारे रास्ते जो है बंद कर तो देता है लेकिन एक कोई रास्ता खुला छोड़ता है।
1: बिल्कुल, तो थोड़ा सा सबब आपको ये आ रहा है कि भाई बारिश हो सकती है, थोड़ा सा मौसम से राहत मिल सकती है, लेकिन आपके मन को सुकून देने के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन सा सॉन्ग आपके रेडियो सेट्स पर।
2: बिल्कुल, और इसीलिए ये गाना आपके सेट पर आ रहा है। हो सकता है इन ठंडी हवाओं से आपकी चुनरिया सरक सकती है।

0: और जरा जरा हम यहाँ पहुँच गए हैं कि 9:09 हो गए हैं और हमारे साथ TSI विकास सिंह जी हैं जो कि ट्रैफिक अपडेट्स के लिए आपके लिए हाजिर रहते हैं हमेशा. गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम हो या फिर शाम अवध प्रोग्राम हो, खैर अपडेट्स की बात आगे बढ़ाई जाए.
1: बिल्कुल, तो

0: बहुत स्वागत है आपका सर. गुड मॉर्निंग.
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग लखनऊ. सभी श्रोताओं को नमस्कार. मैम आज पीक आवर्स का समय है और आज के दिन जैसे कि ऑफिस वगैरह खुले हैं तो ऐसे में ट्रैफिक का थोड़ा प्रेशर रहता है
0: जी.
1: और इस समय वर्तमान में जो सबसे ज्यादा यातायात का दबाव है हमारा दुबग्गा के पास में है लखनऊ हरदोई मार्ग में. और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें लखनऊ अयोध्या मार्ग की तो हमारा कमता चिन्हा के पास में थोड़ा सा यातायात का प्रेशर है. और लखनऊ सीतापुर मार्ग पर मड़ियाव डाल के पास में लखनऊ अगर रायबरेली मार्ग की बात करें तो हमारा उतरेचिया तेलीबाग जो है थोड़ा सा प्रेशर रहता है. परंतु यातायात पुलिस और नागरिक पुलिस मौजूद रहकर सुगम यातायात का संचालन करा रही है. कहीं कोई अतिरिक्त डायवर्जन नहीं है. आज यदि कोई डायवर्जन होता है तो आपके माध्यम से हम अवगत कराएंगे. जब
0: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच ये अपडेट देने के लिए, ट्रैफिक अपडेट. और कोई अपडेट अगर आप देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को तो मोस्ट वेलकम.
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा सभी श्रोताओं से कि जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम लगातार HSRP नंबर प्लेट के लिए जो है सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जितना 2019 से पहले के वाहन है उनमें HSRP जरूर रहना चाहिए क्योंकि HSRP नंबर प्लेट आपके वाहन की जानकारी को सुनिश्चित करता है, मतलब आपके वाहन की आइडेंटिटी को बताता है.
0: बिल्कुल.
1: तो आप कृपया HSRP नंबर प्लेट को अवश्य लगाए. यदि आप नहीं लगाते हैं तो इसमें इसका 5,000 रुपए का जुर्माना है और दोबारा वायलेशन करने पर 10,000 का जुर्माना होता है.
0: बिल्कुल.
1: तो ये अनुरोध है कि आप HSRP नंबर प्लेट लगाएं जिससे कि आपके वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. ये बहुत जरूरी है आपके वाहन के लिए और आप यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.
0: थैंक यू सो मच सर. और आपकी ये जो अवेलेबिलिटी होती है ना न्यूज के लिए और ट्रैफिक अपडेट्स के लिए पूरे शहर की, सारे लिसनर्स आपको मिलके थैंक यू कहते होंगे.
1: जी धन्यवाद धन्यवाद.
0: और आप सुन रहे थे अभी ट्रैफिक अपडेट्स और आपको मिल चुके हैं और साथ में यातायात नियमों का पालन करने की आपको इतनी बार, 2-3 बार नसीहत मिल चुकी है तो ज़्यादा कहेंगे नहीं, समझदार आप बहुत हैं. मौसम जो है अगर वो आपकी तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं और अपनों से आप प्यार करते हैं, आपके दिल में प्यार जिंदा है तो ख्याल रखते हुए अपना अपनों का चलते रहिए, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहेगी. और ख़ासकर जब आपने ट्यूनिंग किया हो 100.7 FM रेनबो.

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ।
4: नौ बज के 17 मिनट हो चुके हैं चंद्रकला, और आज के दिन को खास बनाने के लिए बहुत से ऐसे डेज मनाए जाते हैं
5: जी। और बिना देरी के जल्दी आगे बढ़ते हुए मैं बता ही देती हूँ कि आज एक बहुत ही खास दिन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है।
4: जी हाँ, जिसके बारे में हमने मुद्दा भी आपको दिया।
5: बिल्कुल, 29 जून को हर साल मनाया जाता है और ये दिन महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महाल नोबिस जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।
4: बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में भी आपको जाना जाता है। और इस दिन का जो मोटिव है वो यही है कि आप आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण, सांख्यिकी के जितने भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना।
5: जी,
4: और महाल नोबिस जी का जन्म जैसे कि आज ही के दिन 29 जून 1893 को हुआ। और एक और खास बात है चंद्रकला कि 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की भी स्थापना इन्हीं के कारण हुई, और भारत की स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक योजना की नींव रखी। और सांख्यिकी और जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं इन समारोहों का ये दिन नेतृत्व करता है और लोगों को जागरूक करता है कि आंकड़े हमारी जिंदगी में कितने अहम भूमिका निभाते हैं।
5: बिल्कुल, और इस दिन हम इन्हें याद भी करते हैं और इनको ट्रिब्यूट भी देते हैं, और साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले दिवस की। जो अगला दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया जाता है।
4: क्या बात है,
5: हर साल 29 जून को मनाया जाता है ये दिन, और ये दिन दुनिया के उन क्षेत्रों को इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए मनाया जाता है जो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लोकेटेड हैं।
4: बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि धरती का लगभग 40% भूमि को ये एरिया कवर करता है, और ये क्षेत्र दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का भी घर है। हम भले ही हमको ये लगता हो कि अरे यार क्या ही ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, लेकिन आपको बता दें कि ये सारे एरियाज चाहे कितने भी हम इनको निग्लेक्ट कर लें लेकिन हमारी जो जलवायु परिवर्तन है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें ये एक अहम रोल निभाते हैं।
5: बिल्कुल, और ये दिन हमको याद दिलाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के फेफड़ों और खजाने की तरह हैं। यहाँ घने जंगल हैं, अनगिनत पशु पक्षी हैं और महत्व

0: पूर्ण जल स्रोत भी हैं और करोड़ों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनके संरक्षण और विकास पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है।
1: जी हाँ, तो आपको जागरूक करने के लिए आज की ये खास दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और इसी के साथ इंटरनेशनल
0: मड डे भी
1: है आज, ये एक और खास दिन। तो मिट्टी से जुड़े ये हम लोग और हर साल 29 जून को ये दिन है समर्पित बच्चों को प्रकृति के करीब लाने के लिए, खेल में खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और एक टाइम पे हम कहते थे चंद्रकला कि पहले के जो बच्चे जो प्योर मिट्टी होती थी
0: जी,
1: पूरा दिन हम उसी मिट्टी में खेलते रहते थे और हमें डस्ट एलर्जी थी, क्या कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज जरा सा बच्चा डस्ट में जाता है तो हमें लगता है कि डस्ट एलर्जी हो जाएगी।
0: बिल्कुल आकांक्षा, और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है कि आप अपने बच्चों को ग्राउंड पर, जमीन पर खेलने के लिए भेजें, प्राकृतिक रूप से खेलने के लिए भेजें, ताकि वो शारीरिक रूप से मजबूत भी हों और मिट्टी से, अपने पर्यावरण से जुड़ाव महसूस कर सकें।
1: बिल्कुल, और ये हमारे सारे डेज देखिए सारे कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं आंकड़े। अगर हम पर्यावरण का भी आंकड़ा देखें, जिस तरह से मौसम में मानसून में देरी हो रही है, मौसम में बदलाव आपको परेशान कर रहा है, अगर यही आंकड़े हम लेकर चले ना तो ज़िंदगी बहुत ट्रैक पर चलेगी, बहुत अच्छे चेंजेस आप में आएंगे। तो मुद्दा भी आज का हमने यही पूछा था कि भाई आंकड़े आप रखते हैं अपनी डेली लाइफ के और आपकी लाइफ में वो क्या क्या चेंजेस लाते हैं, इसके बारे में आपको हमसे शेयर करना था। कहाँ पे शेयर करना था?
0: fmakashwani@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है, इस पर आप आज के मुद्दे पर अपने विचार लिख भेजिए। और दोबारा अगर आपको मुद्दा बताना है तो बता देते हैं कि आपके जीवन में कैलकुलेशंस का क्या महत्व है। सारी चीज़ों को, हेल्थ हो, पैसा हो, या पढ़ाई हो, खेलकूद हो, अपने समय को, रिश्तों को आप कैसे नाप तोल करके रखते हैं, लिख भेजिए।

0: बिल्कुल। और पालकी में सवार हो के हम 9:25 पे पहुंच गए हैं। और ये जो मौसम है ना, ये एक अलग सी अपने आप में उम्मीद, आशा, एक अलग सी एनर्जी लेकर के आता है। एनर्जी पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम पूरा पूरा ध्यान लगाए रहते हैं कि बारिश आएगी क्या, आएगी क्या। कल ही मैंने देखा अपने मोहल्ले में कि जैसे ही बारिश की पहली बूंदे आए, बच्चे इतनी खुशी से झूमे, जोर से एकदम उछले, लेकिन बारिश थोड़ी सी आके रह गई,
1: पूरी तरह से भिगो नहीं पाई।
0: लेकिन उम्मीद हमें भरपूर होती है कि कहीं से बारिश आएगी, मौसम अच्छा होगा क्या।
1: तो भाई, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या है आज की मौसम अपडेट। गुड मॉर्निंग सर
2: जी। गुड मॉर्निंग।
1: तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि जो सुबह से मौसम दिख रहा है, हवाएं चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई, तो क्या ये बारिश थोड़ी बढ़ सकती है या फिर धूप हमें दर्शन दे देगी?
2: नहीं, थोड़ा सा आज बादलों की आवाज आई रहेगी, थोड़ा सा बीच में धूप भी आएगा और ओवरऑल मौसम थोड़ा खुशनुमा टाइप का रहेगा, लेकिन उमस वाली गर्मी सताएगी। और अगर बात करें तो जैसे कि आज रात में और कल से मौसम में तब्दीली की संभावना है और कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में मानसून का आगमन की प्रबल संभावना, एक तरीके से कहा जाए तो 2-3 दिन में मानसून आगमन आएगा और जो हमको इतनी गर्मी है उससे राहत मिलेगा।
1: थैंक यू सो मच सर मौसम के अपडेट हमारे लिसनर्स को देने के लिए।
2: ओके, धन्यवाद।
0: क्या बात है। और ये जो खुशखबरी है ना मौसम की, कि 2-3 दिन बहुत कम होते हैं भाई, 2-3 दिन वैसे देखा जाए तो 2-3 दिन में मौसम बदल जाएगा और बारिश आएगी, हम भुट्टा खा सकेंगे आराम से गरम गरम।
1: क्योंकि भाई देखिए, अभी तो ये सारे अरमान आप यहाँ पे जगा लीजिए और समेट लीजिए सारे ख्वाब, और इंतजार हम करेंगे बारिश का बेशक, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि एक बेहतरीन ट्रैक्स के साथ आए हैं हमारे साथ। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ, 9:26, चंद्रकला और आकांक्षा है आपके साथ। और देखिए मेल्स भी हैं, और अभी भी एक स्क्रीन पे मेल आया चंद्रकला कि हमारे मेल्स कब शामिल किए जाएंगे, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपके मेल्स भी शामिल किए जाएंगे, आपकी बातें भी शामिल की जाएंगी। और आज के मुद्दे पर जो हमने आपसे बात पूछी ना कि भाई कैलकुलेशंस आप रखते हैं अपनी डेली लाइफ के जो काम होते हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं ना, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी हमें बताएं।
0: और बिल्कुल, अब बारिश की खुशी में और आपकी ये खुशी जो है बरकरार रहे और बढ़ जाए थोड़ी सी, उसी खुशी में एक गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: बिल्कुल, और नाचते झूमते यूं ही हम बढ़ते रहे, और मौसम जो है ना एक दिन वो खुशगवार होने ही वाला है, और खुशी जल्दी आती है, और वैसे भी बोलते भी हैं किसी भी समय को बीत जाना होता है।
1: और भाई एक समय अगर ये बीत गया तो हमारे मेल्स रह जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत प्यारे प्यारे मेल्स हैं हमारे साथ, और चंद्रकला अंजू जी का मेल हमारे पास आया है।
0: और अंजू जी ने हमें एक लाइन लिखी है, हेलो ब्यूटीफुल चंद्रकला, क्या बात है, आपने आवाज की आंखों से हमें देख लिया है, मन की आंखों से देख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने लिखा है मुद्दे पर कि वेल कैलकुलेशन की बात है तो मैं अपना एक्सरसाइज टाइम कैलकुलेट करके रखती हूँ। लाइक अगर 7:30 पे स्टार्ट करके अप्रॉक्स 9:30 तक एंड करना है, एंड ये रूटीन एंड अपनी सिस्टर इन लॉ से उतना ही हिसाब से बात करती हूँ जितनी की ज़रूरत है, वरना टेढ़ी खीर भाभियों के तांडव टुकड़े भाई के ऊपर ही निकलता है। ओह शिट, लेकिन ऐसी तो कहावत है, पर मुझे ऐसा लगता था कि भाभियों और नंदों में तो दोस्ती होती है, होनी चाहिए। आपको क्या लगता है?
1: हर घर की अपनी कहानी। हाँ, हमें ज़्यादा नहीं जाना है इस मामले में, अंदर
0: ज्यादा अंदर नहीं जाते हुए अंजू, लेकिन जो आपने बात लिखी है मुझे लगता है कि आपकी दोनों बातों में कैलकुलेशन है, आप बात भी सोच समझ के करती हैं और एक्सरसाइज भी नाप तोल के करती हैं। बड़ा अच्छा लगा आपका मेल।
1: बिल्कुल, और राम मोहन गुप्ता जी अपनी पंक्तियों के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है। जीवन पर्यंत करते रहते हैं हम सभी नियोजन, आज की बचत कल उपयोग कर सके हम, खाते इनके मापन जीवन भर गणना करते, बहुत जरूरी बातों संग आंकड़े संजो धर लेते, धन संपदा का इसमें सबसे अग्रणी स्थान होता, ऊर्जा जल स्वास्थ्य संरक्षा पर भी ध्यान होता, पर समय के अपव्यय पर ध्यान देते कम, लौट फिर नहीं आता, जान कर भी भूल जाते हम, रिश्ते भी टूटने पर मुश्किल से जुड़ पाते हैं, और विश्वास टूटा तो फिर कहाँ वापस पाते हैं। बहुत ही जरूरी है इन सब पर भी रखना ध्यान, सबसे बड़ी बात तेज जुबान करती बड़ा नुकसान। अमर लखीमपुर की राम मोहन गुप्ता जी, आप हमें मेल कर रहे हैं और हर बार ये बहुत ही बेहतरीन पंक्तियों के साथ हमसे जुड़ते हैं। अगला मेल किसका है?
0: अगला मेल जो है हमारा विजय महोबिया जी का है। इन्होंने सादर प्रणाम लिखा है, कैसे हैं आप, सदैव मुस्कुराते रहें, सुरीले गीत गाते रहें। इन्होंने यही लिखा है, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन विजय महोबिया जी ने रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हमें मेल किया है
1: और कहा है कि भाई कुछ नाम ले लें जो शायद इनके फैमिली मेंबर्स और दोस्तों।
0: बिल्कुल, तो फिर नाम भी ले लिए जाए। विजय महोबिया है, कविता महोबिया है, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू का नाम लिखा है।
1: क्या बात है। और एक अगला मेल हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग लिखा है सिर्फ, और उर्फी खान फ्रॉम बुलंद शहर से हमें मेल कर रही हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं करती लेकिन खाने में बहुत कैलकुलेशन करती हूँ, जैसे आज ये खाएंगे तो ये नहीं खाना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो का सीज़न है और मैंगो मुझे बहुत पसंद है लेकिन फिर भी नाप तोल कर खाती हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे

0: कि भाई कल जो सब्जी बनी थी वही सब्जी मैं आज नहीं खाऊंगी, कि वही रिपीट कर दिया, आलू दूसरी तरीके से बना दिया, कुछ ऐसा ही इनका खाने का कैलकुलेशन है।
1: लेकिन आपकी बात तो अच्छी है, लेकिन आकांक्षा मैं अपनी बात बताऊं आपको कि मुझे वही सब्जी अगर 10 दिन पे मिलती है ना तो मैं खा सकती हूँ, क्योंकि मिल रही है खाने को मुझे।
0: बहुत बोरिंग
1: इंसान है। बनाएगा कौन है? बनाएगा कौन? आप अपना बताइए, आप खा सकती हैं 2-4 दिन से?
0: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, कुछ डिशेस ऐसी हैं कि जिन्हें हम 2-3 दिन ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अगर वो रिपीट बन जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना लंबा नहीं कर सकते जैसे आपने बताया।
1: पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, पता है, जैसे आलू मिक्स नहीं हो जाता हर सब्जी में, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं आलू हूँ क्या इंसानों का। खैर, रोशनी रावत मेल लिख रही है और इन्होंने लिखा है, नमस्ते आकांक्षा मैम जी, चंद्रकला मैम जी, हम दोनों बहुत अच्छी हैं रोशनी, और आप भी अच्छी होंगी। इन्होंने लिखा है, 6:15 से प्रोग्राम सुन रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पुष्पांजलि और सदाबहार गीत प्रोग्राम इन्हें लाजवाब लगा। और आकांक्षा के लिए लिखा है कि भाई आपकी प्लेलिस्ट बहुत हटके है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी के लिए है शायद ये। और इन्होंने साथ में लिखा है कि होली वाले दिन चंद्रकला मैम विनय सर के साथ आई थी, उसके बाद आज गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रही हूँ। तो आपकी कैलकुलेशन रोशनी जो है बिल्कुल सही, एकदम सही। हम मुझे याद नहीं था होली वाले दिन दरअसल मैं आई थी। और इन्होंने लिखा है, रोशनी रावत ग्राम बम्हना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है। लिखा है, ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है और वो मैं करती हूँ। जैसे मेरा बिजनेस है तो मुझे अपना लिखा जोखा करना होता है, उसके लिए अपनी कॉपी पर सब कुछ लिख करके रखती हूँ।
0: क्या बात है, और थैंक यू सो मच इतने बेहतरीन मेल्स के लिए। आगे भी हम आपकी और ढेर सारी बातों को, मेल्स को शामिल करेंगे, जैसे कि आज है सांख्यिकी दिवस, जिस पर हमने आपसे पूछा था कि आपने दैनिक जीवन के आप आंकड़े कितना रखते हैं और क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, उसके बारे में हमसे शेयर करिए। तो बस मेल करिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com और एक बेहतरीन सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।

0: टू यू टू यू टू यू.
1: मैंने कहा कि अगर इतनी प्यारी सी आवाज हमारे साथ है तो वही गा दे भाई थोड़ा सा.
0: लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जिसके लिए मैं आज सुबह सुबह हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रही हूँ वो कौन है लकी.
1: बिल्कुल, ये तो हमारे लिसनर ही बता सकते हैं कि भाई हमारा काम है सबको डेडिकेट करना. अगर कोई ऐसा इंसान है जो हमें कहीं सुन रहा है या फिर नहीं भी सुन पा रहे हैं तो उन सबको आपके इस खास दिन आपके बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं.
0: बिल्कुल, और अगर आपका बर्थडे के अलावा कोई और खास दिन है, एनिवर्सरी है या कुछ और स्पेशल डे है तो उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.
1: जी हाँ, आप खुश रहें, गुनगुनाते रहें और हमें सुनते भी रहें क्योंकि एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज यहाँ पे है. और आपके दिन को खास बनाने के लिए हम ये भी बताते हैं कि भाई आज वो कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कौन से शख्सियत हैं जो आपके दिन को खास बनाते हैं.
0: बिल्कुल, और जो पहली शख्सियत है वो आपके सामने है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस अगेन, जिनके जन्मदिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है. महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद हैं. बहुत सारी डिटेल्स उनके बारे में आपको बता चुके हैं और भारतीय सांख्यिकी का जनक वो कहलाते हैं. उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की और महालनोबिस डिस्टेंस नामक सांख्यिकी सिद्धांत विकसित किया जिसका उपयोग आज भी डेटा साइंस और रिसर्च से यूज़ किया जाता है. हर साल 29 जून को उन्हीं की स्मृति में नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है.
1: बिल्कुल, क्या बात है. और आज के दिन हम इनको नमन करते हैं, इनके कार्यों के लिए हम धन्यवाद कहते हैं. इसी के साथ अगला वो नाम चंद्रकला, आप चंद्रकांता सुना है आपने, चंद्रकांता पढ़ा और वो चंद्रकांता की कहानी. तो भाई अगला वो जो नाम है, एक बेहतरीन हमारे साथ जिन राइटर देवकी नंदन खत्री जी, 29 जून 1861 को आपका जन्म हुआ और इसी के साथ उन्होंने चंद्रकांता, काजर की कोठरी, नंद मोहिनी कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोंडा और कटोरा भर भूतनाथ जैसी रचनाएं इस समाज को दी. और आपकी रचनाएं, आपके उपन्यास अलग ही तरह का मर्म रखते थे, अलग ही तरह का मर्म रखते हैं. और बहुत ही कहते हैं ना कि जब भी हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, आज भी आप उनका कोई भी उपन्यास उठा ले तो आप पढ़ने लगे तो एकदम उसी दौर में खो जाते हैं. बहुत सी मैजिक्स, बहुत सी रहस्यमय कहानियों के साथ आपके उपन्यास रहते हैं. और आपको बता दें कि देवकी नंदन खत्री जी भाषा के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने बहुत बड़े योगदान दिए. उनको कहा जाता है कि भाई भाषा के लिए भी उनको याद किया जाता है, भाषा के उत्थान के लिए भी आपको याद किया जाता है. और जितने भी हिंदी पाठक हैं अगर उनकी लिस्ट देखी जाए तो आपका नाम ज़रूर उसमें शामिल होता है. तो आपको भी हम आज के दिन नमन करते हैं और आपके कार्यों को हमेशा हम याद रखेंगे.
0: क्या बात है.

इन महान हस्तियों के साथ दोस्तों आपका जिनका भी बर्थडे है वो अपना खास दिन शेयर करते हैं, बर्थडे शेयर करते हैं। तो सोचिए आप इस जीवन में आए, इस धरती पे आए तो कुछ तो महान, कुछ बढ़िया रचने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए आए हैं। और ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर भेजा जाए हम सोच रहे हैं, और आप इसे इंजॉय करिए। तुरंत वापस आते हैं इसे लेकर।

0: तो आपका खास है दिन, तो भाई फोटो तो बनती है, तो फोटो क्लिक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारी खुशियां अपने जिंदगी में शामिल करिएगा।
1: लेकिन दांत दिखाते हुए, स्माइल करते हुए, और बिना स्माइल के ना फोटो वो जो है वो ऑरा ले आती है, तो इसलिए स्माइल करिए दांत दिखा करके, बिल्कुल एकदम बढ़िया से चमकदार।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ, 9:51 और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ। और देखिए वक्त कैसे बीत जाता है आपके साथ, बहुत ढेर सारी बातें, बहुत ढेर सारा एंटरटेनमेंट और ये खूबसूरत सा वक्त।
6: लेकिन कुछ और वक्त है हमारे पास और ढेर सारे मेल्स भी तो हैं।
5: जी हाँ, और उनको शामिल करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और भाई, बिना आपके मेल्स के प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो आंचल सेठ खालिसपुर से हमें मेल कर रही हैं, जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तब पीछे से छूटे लोग, बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए उनके साथ जो आपसे पीछे छूट गए हैं। और उतरते समय भी ये रास्ते फिर से मिलेंगे, फिर से वैसे ही लोग मिलेंगे, तो उनका भी आप ख्याल रखिए।
6: अगली जो मेल हमारे पास है वो है ब्रजेश सिंह जी की, और इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग आकांक्षा मैम जी, चंद्रकला मैम जी। इन्होंने लिखा है मुद्दे के बारे में, सभी खर्च का एक आंकड़ा रहता है मेरे पास, कितना कहाँ खर्च करना है और कितना किस में बचा कर रखना है। सभी खर्चे से थोड़ा बचाना भी ज़रूरी होता है। इन्होंने हमें कैसरगंज बहराइच से मेल लिखा है।
5: थैंक यू सो मच। छवि राम सिंह जी भी, आपको भी गुड मॉर्निंग। और फरुखाबाद से आप हमें मेल कर रहे हैं, नियमित श्रोता है, और सिर्फ एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेल किया है, मुद्दे पर कुछ आपने नहीं कहा है।
6: और वारिस अली खान जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, आदाब, आप दोनों की खूबसूरत आवाज़ ने शो को बेहतरीन बना दिया है। और इन्होंने लिखा है हमारे लिए कि GML भी किया करें। बिल्कुल बेशक हम किया करेंगे। इन्होंने लिखा है अगला आज के मुद्दे के बारे में कि मैं कैलकुलेशन के चक्कर में पड़कर स्ट्रेस नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आज में जीता हूँ और हर लम्हे का मजा लेता हूँ, आगे की सोचकर अपना आज बर्बाद नहीं करता हूँ। इन्होंने हमें ऐशबाग संजय नगर लखनऊ से मेल किया है।
5: थैंक यू सो मच। और भाई देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी एक फितरत होती है, कुछ लोग हर एक चीज़ का कैलकुलेशन रखते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है जितना भी हो वो हम समझ लेंगे, एक समझ के आधार पर वो अपनी चीज़ें खर्च करते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं विनीत कुमार जी, और ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आप हमें मेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। और कह रहे हैं कि प्रोग्राम तो सुपर हिट है और बोली भी सुपर हिट लग रही है। कह रहे हैं कि बस आज के पंचांग से शुभ और अशुभ मुहूर्त गुड मॉर्निंग लखनऊ में ज़रूर बताया करिए, इस सब की जानकारी भी मिलेगी तो ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि ये आपकी बात पहुँचे और आपकी ये विश पूरी की जाए।
6: बिल्कुल, अगली मेल जो हमारे पास है वो मोनू सेठ जी की है। इन्होंने लिखा है, जीवन में रिकॉर्ड या डेटा रखना बहुत सही और फायदेमंद है। इससे आपको अपने खर्चों, सेहत लक्ष्यों पर बेहद कंट्रोल मिलता है, निर्णय लेने में सटीकता आती है और आप अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं पर नींद का कैलकुलेशन रखता हूँ, कितना सोया और कितना कम अधिक है, दिन भर में खर्च कितना किया वो भी कैलकुलेशन रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी हमें मेल करने के लिए।
5: जावेद पटेल जी, थैंक यू सो मच मेल करने के लिए, गुड मॉर्निंग आपको भी। और कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में अगर कैलकुलेशन ना होता तो कुछ भी काम संभव ही नहीं हो पाता। बिल्कुल चंद्रकला, कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि जब हम कुछ चीज़ों का आंकड़ा नहीं रखते हैं ना, जैसे कि पहले के लोग हर एक चीज़ को नोट करके रखते थे, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च करना है, कहाँ पे कौन सा चीज़ लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना बजट लगेगा, बजट के साथ साथ और भी वो चीज़ें कैलकुलेट करके रखते थे, तभी वो एकदम कहते ना फिट रहते थे, सोचते समझते रहते थे कि मैनेज मेंट उनका बहुत अच्छा कहलाता था उस दौर के लोगों का।
6: बिल्कुल, और उस दौर से आज के दौर में अगर आज आए, भागती दौड़ती जिए जिंदगी है, यहाँ पर भी नाप तोल कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नाप तोल कर अपनी जिंदगी में कैलकुलेशन रखकर हिसाब से नहीं चलेंगे तो इस भीड़ में और दौड़ में कहीं खो सकते हैं।
5: और भाई देखिए, कैलकुलेशन और आंकड़ों को पता होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए वक्त का भी तो हम कैलकुलेशन रखते हैं। 9:55 हो चुका है और ये वक्त कह रहा है कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ से फिर कभी मिलेंगे बहुत ढेर सारी बातों के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, और आगे का सफ़र आप तय करेंगे चंद्रकला के साथ।
6: लेकिन आकांक्षा, जाते जाते आपको बाय तो बोलती हूं।

0: लेकिन मुझे आपकी याद आने वाले दिन भर, क्योंकि जो एनर्जी है ना, आई विल बी मिसिंग यू. और फिर हम कभी आएंगे इसी तरीके से बात करते हुए. कई बार जाते जाते कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो चेहरों पे स्माइल दे जाते हैं, तो इसीलिए सुबह सुबह पॉजिटिव लोगों से मिलना भी तो जरूरी है.
1: थैंक यू सो मच एंड सेम हियर.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियंस ऑफ द ब्लू हेरोजाइन दिया गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया और सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ी

0: लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस अवसर के वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान प्रकरण में सभी 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस 8 आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई निगरानी में जांच की मांग की गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी दाखिल एक याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में ऑडिट और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सहारनपुर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1,31,00,000 रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए गाजियाबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 26 एटीएम कार्ड, 24 बैंक पासबुक, 19 चेकबुक और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी संभाग के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आज सुबह राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा?
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
6: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10 बजकर के ठीक 3 मिनट हुए हैं और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और इस समय प्रोग्राम जो चलने वाला है शुरू हो चुका है वो है सुपर हिट सॉन्ग्स। जी हाँ, सुपर हिट सॉन्ग्स, जबकि आपको मिलते हैं बैक टू बैक खूबसूरत सुपर हिट सॉन्ग्स की झड़ी और इस झड़ी में आप खो जाएं। तो इस झड़ी को शुरू करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ और ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। ये रहा आज के प्रोग्राम का पहला सुपर हिट सॉन्ग।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

10:55 मिनट हो गए हैं और आप अभी ये प्रोग्राम सुन रहे थे सुपर हिट सॉन्ग्स, और इस आखिरी गाने के साथ प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग यहीं वाइंड अप करना होगा. उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, उसमें हम ही रहेंगे आपके साथ. ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शिक्षकों और अभिभावकों से पढ़ाई को लेकर बच्चों में रुचि बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल को दैनिक रूटीन का हिस्सा मात्र न समझें, बल्कि विद्यालय जाने में रुचि दिखाएं। खेल कूद जैसी गतिविधियां इसके लिए बेहतर माध्यम हो सकती है। उन्होंने लिखा कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं। प्रदेश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब प्रत्येक बच्चा शिक्षा से अभिसंचित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक राजेंद्र लाहिड़ी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए राजेंद्र लाहिड़ी का सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के युवाओं को सदैव देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग

ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के स्थान पर बीवीजी राम यानी कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी पूरा कर ली है। योजना के 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाने की बात है। इसी क्रम में 2 जुलाई को राज्यव्यापी जन आंदोलन लॉन्च इवेंट कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों एवं विकसित ग्राम पंचायत योजना का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में कुल 10,000 कार्य 2 जुलाई को शुरू की जाएंगे। ओडिशा के पुरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देवास्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है। देवताओं को एक विशेष शोभा यात्रा के माध्यम से स्नान बेदी तक लाया गया, जहां उन्हें 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाएगा। इस दौरान मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और भक्ति संगीत की गूंज सुनाई दे रही है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी संभाग के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ ही तेज हवा और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के मुताबिक सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के जिलों में आज हल्की बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। ग्यारह बजकर के 3 मिनट हो चुके हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है संदेश आपके गीत हमारे, और इस प्रोग्राम में आपके मेल्स भी शामिल हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में और आपकी कॉल्स भी। तो आपके संदेश जो भी होंगे हम उन संदेशों को शामिल करेंगे और उसके साथ ही आप फोन कॉल पर भी अपने संदेश हमसे साझा कर सकते हैं। और दूसरी बात, संदेश तो आपके होंगे लेकिन गीत हमारे यानी कि हमारी पसंद के होंगे। ज़्यादातर प्रोग्राम्स में आपकी पसंद के गीत बजाए जाते हैं और इस प्रोग्राम में हमारी पसंद के गीत और साथ ही आपके संदेश। कुछ मेल्स हमारे पास आने भी शुरू हो चुके हैं लेकिन मेल्स का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले खूबसूरत गाने के साथ प्रोग्राम का आगाज करना होगा। और खूबसूरत गाने की अगर बात करें तो बस प्रोग्राम की जब शुरुआत होती है तो ये खूबसूरत सा गाना आते ही मन में जो विचार हैं, जो संदेश में लिखने हैं, वो टाइप करने का समय मिलता है और साथ ही मन भी थोड़ा सा अलग एक डाइवर्ट हो जाता है। ढेर सारी बातें तो करनी है, आपके संदेश भी पढ़ने हैं, तो बिना देरी के ये रहा आपके रेडियो सेट पर आज प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे का, हमारी पसंद का गाना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जो पहली मेल हमारी आज प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में आई है वो मेल है वकील अहमद जी की। उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। संदेश ये है कि पानी बर्बाद ना करें। इस समय हमारे गर्मी बहुत हो रही है, बारिश होने से मौसम कुछ ठंडा हो गया है, उम्मीद करता हूँ अच्छा ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, इन सब का नाम शामिल किया है। वकील अहमद साहब शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, और आपने जो मेल की है हमें वो ये मैसेज देता है कि पानी की बर्बादी नहीं करनी है, बहुत ज़रूरी है पानी। दूसरा जो मेल हमारे पास है रामराज जी का है, इन्होंने लिखा है, श्री गणेशाय नमो। संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राज भानु शंकर भैया रामचरण पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका सबका नाम लिखा है, और लिखा है, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। इन्होंने लिखा है, संदेश यह है कि गर्मी बहुत हो रही है, पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें ताकि पशु और पक्षियों का जीवन सुकून से कटे। आदमी तो अपनी व्यवस्था खुद कर लेता है, लेकिन पशु जो पक्षी हैं इन सब की व्यवस्था अगर हम कर दें तो अच्छा होगा।

शुक्रिया रामराज जी आपके मैसेज के लिए, क्योंकि वाकई में आपका जो मैसेज है वो मानवीय है, इसमें संवेदनाएं हैं और पशु पक्षियों के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। अंगद यादव जी का मेल है हमारे पास, इन्होंने लिखा है नमस्ते, और नमस्ते अंगद जी, इन्होंने लिखा है शिवरामपुर निजामबाद आजमगढ़ यूपी से, इन्होंने लिखा है हम मोबाइल ऐप के माध्यम से आपका प्रोग्राम सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कुछ लोगों का नाम शामिल करना चाहता हूँ, सृष्टि, साक्षी, रिंकी, देवांश, रविनंदन, श्रवण, इन सब का नाम शामिल किया है और लिखा है कि हम सब मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं। शुक्रिया अंगद जी, लेकिन आपने संदेश कुछ भेजा नहीं, जो आप भी संदेश लिखना चाहें वो आपने कुछ भेजा नहीं। खैर, समय 11:11 हुआ है, एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, इस गाने के बाद आपके संदेशों की बारी।

0: 11:16 हो गए हैं और ये खूबसूरत हमारी तरफ से जो गीत आपकी तरफ आया था और आपके संदेशों की बारी है, अब आपके खूबसूरत संदेशों की बारी, हम चलते हैं आपके संदेशों की तरफ। लेकिन इस समय हमारे पास फोन लाइन पे कोई मौजूद हैं, देखते हैं उनका क्या होता है संदेश। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी आवाज़ आ रही है।
1: अस्सलाम
0: जी सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी बताइए साजिया, कैसी हैं आप और कैसा चल रहा है लखीमपुर खीरी का मौसम?
1: अच्छे, अपना बताइए।
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो मस्त एकदम फर्स्ट क्लास।
1: बहुत दिनों के बाद आई हूँ।
0: हाँ मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ जी, ये मिल में फिलहाल बहुत दिनों बाद आई हूँ। आप बताइए क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: हम संदेश देना चाहते हैं,
0: जी
1: जैसे घर गैस से खाना बना रहे हैं तो जो है उसको गैस सिलेंडर से गैस बंद कर दें। अगर
0: जी
1: चूल्हे पे खाना बना रहे हैं मिट्टी वाले, तो खाना बनाने के बाद रात को पानी से बुझा दें
0: जी
1: और माचिस या लाइटर को ऊंचे उठा कर रख दें, फिर बच्चे ना पा सकें।
0: जी
1: हम आसिफ भाई से एक बात कहना चाहते हैं, अगर
0: जी
1: वो सुन रहे हैं तो, मतलब हमारा नाम वो साजिया अंसारी लिया करें, तो हमारा नाम सादिया अंसारी लेते हैं।
0: अच्छा साजिया है,
1: जी वो हमको सादिया अंसारी कहते हैं।
0: अच्छा सादिया कहते हैं, कोई बात नहीं, अब क्लियर हो गया है, सब कंफ्यूजन सारी दूर हो गई है।
1: एक बार मैंने और बोला था लेकिन फिर भी वो सादिया अंसारी लिखते हैं।
0: चलिए कोई बात नहीं, मोहब्बत है, मोहब्बत है, आप ले लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साजिया हो चाहे साजिया हो चाहे सादिया हो, जो आपसे प्यार से कह रहे हैं कोई बात नहीं, जिनका करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मोहब्बत काफ़ी है।
1: जल्दी जल्दी आया करे,
0: ठीक है, बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल,
1: आते हैं बहुत अच्छा लगता है हमको।
0: चलिए शुक्रिया, हम जल्दी जल्दी आया
1: आप
0: करेंगे।
1: जो

0: कब्बा
1: अरे तो देखिए, वो भी तरीका गलत
0: जी
1: नहीं है ना? ऐसा है साजिया कि सबका तरीका अपना अपना है। उनकी भी बात बिल्कुल सही है, अगर कल ही किसी की बात हुई आज फिर उनकी बात होगी, तो जो बेचारे नहीं बात कर पाते उनका तो नंबर ही नहीं आ पाता, तो उनका भी तरीका फेयर है।
0: नाम ले सकते हैं
1: हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
0: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, वकील अहमद भाई, तमाम प्रवीण हफ्ते, गलत साहबा, रिंकी दीदी, स्मृति दीदी, रोशनी दीदी, प्रीति दीदी, बबीता राव दीदी, सत्यन कुमार भाई, राशिद अंसारी भाई, सारा दीदी।
1: जी चलिए ठीक है। साजिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप
0: थैंक
1: ऐसे
0: यू।
1: ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, फिर आपसे कभी
0: बस
1: बात होगी।
0: जल्दी जल्दी आया करिए।
1: बिल्कुल, बहुत जल्दी आएंगे और बहुत जल्दी आपसे बात होगी। साजिया जी का संदेश ये था हमारे पास, कि हमारे पास जो आया है कॉल के माध्यम से, उनका संदेश वो ये है कि अगर आप गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं तो गैस सिलेंडर में जो है गैस ऑफ करके रख दें, लाइटर माचिस जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको बच्चों के पहुंच से बहुत ऊपर रख दें। आग में खाना बनाने वाले लोग पानी से छींटे मारकर आग बुझा दें, ऐसा इन्होंने कहा है। और बहुत अवेयरनेस वाला मैसेज है कि आग हवा की वजह से कहीं भी फैल सकती है और बच्चों के पहुँच से लाइटर और माचिस से सब नुकसान पहुँचा सकता है। तो खैर, इन्हीं के मैसेज के साथ, इन्हीं की कॉल के साथ हम अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आए और उस गाने के बाद हम पढ़ेंगे आपके मैसेज।

और बिल्कुल इन्हीं खूबसूरत मस्त मस्त नैनों के साथ आप हमें मैसेज लिख रहे हैं, इन्हीं खूबसूरत नैनों के साथ हम आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, और ये खूबसूरत नैन ही इस खूबसूरत दुनिया को दिखाते हैं। भाई नैनों की कहानी तो कुछ और ही है। और इन्हीं नैनों के साथ हम ढेर सारा प्यार आपको भेज रहे हैं, आँखों से आपको इमेजिन कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, दिन में सपने देख रहे हैं हम। महेंद्र देपन जी का मेल हमारे पास है और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में इन्होंने मेल किया है, और गांव रूण है इनका, ज़िला नागौर राजस्थान है। FM रेनबो लखनऊ पर आपका लाजवाब शो सुन रहा हूं, और इन्होंने लिखा है बारिश का मौसम शुरू हो रहा है इसीलिए सभी श्रोताओं के लिए मेरे प्यारे दोस्तों के नाम एक संदेश है। इन्होंने लिखा है रिमझिम बारिश की बूंदें लेकर आई है पैगाम सुहाना, इस पर सुहाने मौसम में सुरक्षा को भूल न जाना, सुल्तान रजा और बाबू भाई अंसारी जी रखें पूरा ध्यान, रोशनी दीदी और बबीता दीदी भी सुने ये खास पैगाम, बिजली चमके पानी बरसे तो बरतें पूरी सतर्कता, सेहत और सुरक्षा से ही बढ़ती है जीवन की सरसता। FM रेनबो लखनऊ पर गूंज रहा है आज संदेश हमारा, संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, कार्यक्रम है हम सबको सबसे प्यारा। क्या बात है महेंद्र जी, आप तो बिल्कुल शायराना अंदाज में जो है बारिश का स्वागत और सुरक्षा के इंतजाम सब कुछ करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा आपका ये जो संदेश है, मैसेज है, सतर्कता का भी, प्यार का भी और बारिश के स्वागत का भी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। आहिल खान, ओके, इन्होंने लिखा है उर्फी खान, अच्छा आहिल खान के हैंडल से उर्फी खान है, और इन्होंने लिखा है बुलंदशहर से, इन्होंने लिखा है मेरा मैसेज यही है, ज़िंदगी में जो वक्त आने वाला है वो गुजरे वक्त से बेहतर होगा, और ये सोच इंसान को कभी उदास नहीं होने देती, इंसान को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उर्फी जी हमें मेल करने के लिए, और आपके मैसेज के लिए बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही पॉजिटिविटी से भरपूर मैसेज भेजा है। और इसी तरीके से अगर हम अपने साथ ऐसा ही पॉजिटिव व्यवहार करें तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुलझ जाती हैं। ये जो हम बेवजह शिकायतों का बोझ लेकर चेहरे पर बैठे रहते हैं ना, तो वो कुछ अच्छा नहीं है, उससे नुकसान ही है, निगेटिविटी और भर भर के हमें अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिविटी की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है कि हम पॉजिटिव रहते हैं तो और पॉजिटिव रहता है, लोग पॉजिटिव मिलते हैं, लोगों को भी अच्छा मिलता है, दो चार मुस्कानें मिलकर बहुत ही सकारात्मक जो माहौल है ना वो बना देती है। अगली जो मेल हमारे पास है वो है मुनेश कुमार राज की, और इन्होंने हमें गांव भानपुर हरोवा ज़िला लखीमपुर खीरी से मेल किया है, और मेल पे इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, अच्छा इन्होंने लिखा है हर कार्यक्रम बेमिसाल है, सुनते सुनते कई साल हो गए हमें। इन्होंने लिखा है कि मेरा संदेश ये है कि आजकल नौजवान और महिलाएँ मोबाइल पर बात करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अगर उन्हें कोई नमस्कार करे या हालचाल पूछे तो वो ध्यान ही नहीं देते। ये भी बहुत गंभीर बात है, मतलब हेलो का तो जवाब देना चाहिए, नमस्ते और हालचाल पूछने का तो जवाब देना चाहिए। दूसरी समस्या यह है कि महिलाएं अक्सर मोबाइल पर इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि अगर वो बाहर हों और साथ में छोटा बच्चा हो तो बच्चा चाहे जिधर चला जाए उनका ध्यान बात पर ही रहता है, बच्चे पर नहीं। मैंने खुद अपने हाथों से एक बच्चे को पकड़ कर दिया है जो रोड की तरफ जा रहा था। मोबाइल ज़रूरी है पर अपनों की सुरक्षा और ध्यान उससे भी ज़रूरी है। मुनेश कुमार जी, आपका ये मैसेज मुझे इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा और इतना रिलेट किया इसने, इतना कनेक्टिंग लगा। आपकी ही तरह हमने भी कुछ दिन पहले ऐसा किया कि बस में बैठी हुई एक, हालांकि बस बहुत सुरक्षित थी, कवर्ड थी, बंद थी, फिर भी किसी भी समय झटका लग सकता है, बच्चे को चोट लग सकती है। एक माता जी रील्स देखने में इतना व्यस्त थी कि उनका बच्चा उठकर पीछे की तरफ जा रहा था, और मैंने उसे तुरंत पकड़ के उनको दिया। मैं कहा इसे संभाल कर रखिए आप पहले, मैंने उनसे यही कहा पहले आप इसे पकड़िए, मोबाइल थोड़ी देर में देख लीजिएगा। तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर ये बहुत सोचने वाली बात है, मोबाइल पर ध्यान देना ठीक है और जो एक्स्ट्रा समय है आपका उसको यूटिलाइज करना भी ठीक है, पर ये बहुत ही जरूरी मैसेज है। अगली जो मेल हमारे पास है नागेश कुमार जी की है, इन्होंने उमरी जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से मेल किया है हमें, गांव उमरी है इनका। इन्होंने लिखा है किसान भाइयों बहनों, मौसम को ध्यान में रखकर खेती करें, अच्छी गुणवत्ता के बीज अपनाएं, और इन्होंने बहुत लिखा है कि सुरक्षित खेती समृद्ध किसान, ये लिखा है। बहुत शुक्रिया नागेश कुमार जी आपका हमें मेल करने के लिए। और एक नाजिम रेन जी का मेल हमारे, ओ माफ़ कीजिएगा, नाजिम रेन जी का मेल हमारे पास है।

अजीम रहीम जी ने हमें मेल किया है और लिखा है कि दिल्ली से सुन रहा हूँ और आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया नाजिम जी, लेकिन आपने संदेश नहीं भेजा हमें, तो हम इस प्रोग्राम में संदेशों को ही पढ़ते हैं। अगला जो गाना है आपके रेडियो सेट पर हमारी तरफ से, आप इसे सुनिए, इंजॉय करिए और तुरंत वापस आते हैं आपके संदेशों को लेकर।

0: चल रहा है आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ, और बिना देरी के हम देखेंगे कि कौन जुड़े हमारे साथ। लेकिन इस समय हम कॉल रिसीव कर लेते हैं कि कौन जुड़ी हैं फोन लाइन पे हमारे साथ। हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, बोलिए। हाँ
1: गुड मॉर्निंग मैम,
0: हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलिए।
1: और बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आपसे बात करके हम और अच्छे हो गए। और जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी शमा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैम आज बहुत कंफ्यूज हैं।
0: क्यों?
1: क्यों, हमने देखो फोन किया पहले 2238 845 वाले नंबर पे,
0: जी
1: ये हमेशा FM रैनबो पे चलता था, लेकिन आज वो विविध भारती पे चल रहा है। हमने जब
0: अच्छा,
1: फोन किया, आप राखी मैम बात कर रही हैं, अनुपमा रंजन, आप सीमा मैम बात कर रहे हैं।
0: हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद। अगली जो मेल हमारे पास है वो है, अच्छा इससे भी पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे स्टूडियो के नंबर्स पे 2238 852 इस नंबर पे ट्राई कीजिए, और FM की हमारी ये वाली लाइन अभी चल रही है, इस पे सारी कॉल्स आ रही हैं। 0522 ये कोड आगे आपको लगाना होगा। अगर आप नए श्रोता हमारे हैं तो 2238 852 ये लाइन हमारी चल रही है, 2238 852 इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com, इस मेल आईडी पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। मेल हमारे पास आया है मोहम्मद आसिफ जी का, इन्होंने लिखा है हैदराबाद तेलंगाना से ये सुन रहे हैं, और इन्होंने लिखा है सुपर हिट सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे लगे। इन्होंने संदेश ये भेजा है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, नाले में कचरा वगैरह न डालें, इससे नाले चोक हो जाते हैं और बरसात में सड़क पर पानी भर जाता है। कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। एक्चुअली मैं रहने वाला ये अच्छा जो मोहम्मद आसिफ जी हैं, ये एक्चुअली में रहने वाले राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी के हैं। आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए, और आपका संदेश भी काबिले तारीफ है। आपने लिखा है कि जो नालों में हम डाल देते हैं कूड़ा रेपर, परसों भी हम देख रहे थे कि एक महाशय गाड़ी से जा रहे थे और कुछ खाकर लगातार एक के बाद एक दो तीन छिलके फेंक रहे थे। हम उनसे कुछ कहने जाते इससे पहले कि उनकी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आगे निकल गई, पर कहने का मतलब ये है कि ये सब कूड़ा सड़क से उड़ करके नालों में ही जाता है, और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी उसमें लगे रहते हैं वो मनुष्य ही तो है भाई, कितना काम करेंगे वो, कितना काम करेंगे वो, कितना कूड़ा उठाएंगे आप सोचिए। आप अगर उन्हें समेट कर अपना डस्टबिन में रखा हुआ कूड़ा पन्नी में भर कर या जिस भी तरीके से अपना डिब्बा उन्हें पास कराएं तो उनके लिए कितनी आसानी होगी। थोड़ी मानवीय पहलुओं के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगला जो मेल हमारे पास है वो है पिंकू सोनी का, इन्होंने टिकैत नगर बाराबंकी से मेल लिखा है। इन्होंने लिखा है संदेश ये है कि आप बच्चों के सारे छोटे बच्चों को अच्छा सहारे छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं, प्लीज़ वो ऐसा ना करें। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि बच्चों को छोटे बच्चों के सहारे छोड़ देते हैं, मतलब जो भाई बहनों में होते हैं। इन्होंने लिखा है बाद में परेशानी उठानी पड़ती है, इसीलिए ऐसा ना करें। मतलब इन्होंने लिखा है कि जैसे कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ के बाहर जाना हो या कहीं जाना हो तो छोटे बच्चों के सहारे छोड़कर उन्हें चल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में खुद अक्ल नहीं होती है, वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते, तो अपने से उतने छोटे बच्चों का कैसे रख पाएंगे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वारिस अली खान जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है प्यार भरा सलाम। इन्होंने लिखा अर्ज है लहजे में नरमी बातों में मिठास होनी चाहिए, आपका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात तो सही है। इन्होंने लिखा है संदेश अहंकार कभी ना करें, एक छोटा सा कंकड़ भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकलवा सकता है। क्या बात है, बात तो बड़ी डेप्थ है बात में तो। एडवोकेट वारिस अली खान, इन्होंने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से मेल किया है, और इसी तरीके से आपके संदेश हमारे पास आते रहेंगे और आपके संदेशों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, और ऐसे ही एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आने जा रहा है, और ये गाना सुनने के बाद तुरंत शुरू होंगे आपके मेल्स का पढ़ने का और कॉल्स का सिलसिला शुरू।

0: मैसेज हमारा ये है कि हम जैसे कि अब बारिश भी होने वाली है, मतलब कि मानसून बन रहा है हमारे यहाँ, तो बादल बना हुआ है।
1: अच्छा,
0: और मैं वो आस पास शहर के सफाई रखते हैं, ऐसे नाले वगैरह हैं, तो मैं इनकी सफाई भी करवा दूंगी कि रोड में बारिश होने के बाद में रोड पे पानी भर जाता है,
1: जी
0: तो हमें अपने घर के आस पास की सफाई करवानी चाहिए।
1: ये यही सेम मैसेज अभी हमारे एक लिसनर ने दिया था, तो आप सुन रही थी उसमें?
0: जी हम सुन तो रहे थे।
1: अच्छा, तो मतलब आपका भी यही
0: आसिफ
1: मैसेज
0: भाई
1: है।
0: ने संदेश दिया था।
1: जी, आपने आसिफ भाई को कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, आपका भी यही संदेश है मतलब।
0: मैम
1: चलिए कोई बात नहीं, ठीक है फिर।
0: परिणाम ले लें।
1: हाँ ले लीजिए।
0: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, अकेले मोहम्मद मंसूरी भाई हैं, सत्यम कुमार भाई, समाप्ति हैं, गुलाब सर देखी अप्पी हैं, स्वाद्यान साहब हैं, रोशनी दीदी हैं, प्रीति दीदी हैं, बबीता रा दीदी हैं।
1: ठीक है,
0: अब हम जल्दी जल्दी आया करें।
1: बिल्कुल, हम जल्दी जल्दी आया करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के
0: शुक्रिया,
1: लिए।
0: हम आपका प्रोग्राम करने का अंदाज अच्छा लगता है।
1: थैंक यू साहिबा। चलिए ठीक है, फिर आपसे
0: थैंक
1: बात
0: यू।
1: होती है। और शुक्रिया, देखिए मैसेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये मैसेज जो है दो दो लोगों ने सेम मैसेज किया है। और एक मेल भी हमारे पास है गुलफ्सा जी की, और इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, और संडीला से इन्होंने मेल किया है। इन्होंने लिखा, मेरा संदेश ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें किसी की बात अधूरी नहीं सुननी चाहिए, पूरी सुननी चाहिए। और आज मैं बहुत दिनों बाद मेल किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखिए गुलफ्सा जी, और हो सकता है आपने जीवन से कोई सबक लिया है, इसीलिए आप इतने दम के साथ कह रही हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की दिल की मतलब किसी की बात अधूरी नहीं सुननी चाहिए। वैसे ये भी सच है, हम अब जब अपनी ज़िंदगी में अनुभव पाते हैं ना, एक्सपीरियंस पाते हैं, ठोकरें खाते हैं या फिर कुछ अच्छे किसी और की वजह से किसी ने दुख दिया, वहाँ भी अनुभव मिलते हैं, तो तब हमारी बातों में ज़्यादा वजन होता है, इतना स्ट्रांग वेट होता है हमारी बातों में कि अगला वाला इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्योंकि आपकी बात से मुझे ऐसा स्ट्रांग फील हुआ कि झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी कीमत पे। और उसके बाद जो दूसरी बात आपने बोली है कि किसी की बात अधूरी नहीं सुननी चाहिए, तो बेशक बात पूरी करनी देनी चाहिए, उसके बाद ही बात काटनी चाहिए। खैर, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और मेल्स तो अभी हमारे पास आपकी है, और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजें, और इस गाने के बाद कुछ मेल्स और कुछ कॉल हमारे पास और बचेगी, तो इसलिए बस ये गाना सुनिए, तुरंत वापस आते हैं।

0: 11:45 हो गए हैं और इसी एक मुलाकात के गाने के साथ आपके मेल्स जो है शामिल करने हैं, लेकिन मेल्स शामिल करने से पहले हम सोच रहे हैं कि कॉल को शामिल कर लिया जाए, देखेंगे कौन हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: साहिबा अंसारी, मैं लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
0: जी साहिबा, कैसी हैं आप?
1: मैम हम बहुत अच्छे, अपना बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: मैम बहुत दिनों के बाद आई हूँ।
0: हाँ मतलब बहुत दिनों बाद आई हूँ। हाँ बिल्कुल
1: जी मैम, आप 12 जून को आई थी साथ ही।
0: 12 जून
1: जी, हमारी बात आपसे 12 जून को हुई थी, आप तब से आप आई नहीं शायद थी।
0: अच्छा जी हाँ, थोड़ा समय हो गया जी।
1: जी
0: क्या मैसेज है आपका, कैसी हैं आप?

11:54 हो गए हैं और अब समय देखिए कितनी तेजी से जाता है और हमें भी घर जाने का समय हो गया है. हमारी आज का समय जो है समाप्त हुआ और ये प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे इसे भी वाइंड अप करने का समय है. एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर छोड़ जाएंगे. साथ ही एक मैसेज है हमारे पास अंगद यादव का. इन्होंने लिखा है कि पानी आजकल कमी इसकी हर जगह है, पानी अनमोल है, पानी का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करिए. आगे तकलीफ पड़ सकती है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है, जल ही जीवन वाकई में है. इसी मैसेज के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और उसके बाद फिर कभी किसी और दिन नहीं, कल ही होगी मुलाकात आपसे ठीक 12 बजे. तब तक के लिए ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, जो कि है धड़कन लखनऊ की.

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे। यहां वो मुरादाबाद मंडल में लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों की समीक्षा और नए कार्यों की कार्ययोजना के संबंध में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री मुरादाबाद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री यहां मुरादाबाद सदर, मुरादाबाद देहात व कुंदर की विधानसभा क्षेत्रों और नगर निगम मुरादाबाद के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहां मुख्यमंत्री गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय परिसर का भी निरीक्षण करेंगे। परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान का लक्ष्य न केवल नियम लागू करना है बल्कि स्कूल परिवहन को एक सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी सेवा बनाना है। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी, साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन जांच की जाएगी। अभियान में प्रवर्तन दल नियमानुसार बसों के फिटनेस की जांच करेगा। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ चालान, वाहन निरुद्ध, फिटनेस निलंबन ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल खतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक हुरमुज जल डमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी।

अमरीका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं तक चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, कासगंज, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, लखनऊ समेत आसपास के क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज चमक और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM Rainbow घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो
2: फिर मानो।
4: जी 12:03 हो चुके हैं, प्रोग्राम शत्रुपा लेकर हाजिर है तरन्नुम। बहुत सारी बातें हैं जो हमारी लेडी लिसनर हैं उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, ऐसे में आपको भी बदलना होगा अपना खान पान, अपना लाइफ स्टाइल। कैसे? सुनते रहिए रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

जी हाँ, फोटो। और फोटो जब महिलाएं खिंचवाती हैं तो बहुत ही मुस्कुरा के खिंचवाती हैं, बहुत ही उनको लगता है कि एक एक चीज़ परफेक्ट आनी चाहिए, यानी जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब पिक्चर परफेक्ट कब होती है? पिक्चर परफेक्ट जब होती है जब हमारी और आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर से हेल्दी हैं, अंदर से आप चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तभी आपका जो चेहरे पर नूर है, स्पार्क है, वो फोटो में नज़र आएगा। ऐसे तो बहुत सारे मेकअप की चीज़ें हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, लोग उसको लगा लेते हैं, लेकिन जब वो फ़ोटो को देखते हैं, एक्चुअल फ़ोटो जब उनके सामने आती है, तो ध्यान देते हैं वो कि भाई आँखों के नीचे डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं, या फिर उनको लगता है बहुत ही हम लीन नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ऐसे कैसे हो गया, कैसे ऐसे हो गया। लोग फिर राय देना शुरू करते हैं कि भाई ऐसा करो, इतना पानी पी लिया करो, ऐसा करो, सुबह उठ के ये सारी चीज़ें खा लिया करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये वाले सीड्स ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन आप बताइए कि क्या एकदम से जो पौधा होता है, जब हम बीज किसी ज़मीन की मिट्टी में बोते हैं, तो क्या एकदम से पौधा निकलता है? क्या एकदम से पौधे में फल आना शुरू हो जाते हैं? नहीं। इसी तरह हमारी और आपकी हेल्थ है। जब हम अपनी हेल्थ पे शुरू से लेकर एंड तक, एंड इन द सेंस कि सुबह से लेकर रात तक, जब हम अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ना सही थोड़ा सा भी ध्यान देते रहें, तो फिर हमारी जो हेल्थ है ना वो एकदम हेल्दी रहेगी। और ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ये सीट खा लो, वो सीट खा लो। यानी एकदम जब आप पिक्चर खींचेंगे ना तो पिक्चर परफेक्ट नज़र आएगी। अब देखिए, मौसम बदल रहा है, कल से बहुत ज़्यादा उमस है, परसों और भी ज़्यादा उमस थी, हल्की बारिश हुई, लोग खुश हो गए कि भाई बारिश का मौसम आ गया है। अब जो लेडी होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको क्या करना होता है? उनको तो भाई किचन में जाना ही जाना है, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे उमस का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, कोई भी मौसम हो। लेकिन किचन में जाते जाते लोग उनसे फरमाइशें करते हैं, ये खाना बनाओ, ये ऐसी रेसिपी तैयार करो, वो लोग भी फॉलो करती हैं कि भैया मौसम बदला है, तो जाहिर सी बात है खाने में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसी के साथ ज़रूरत है आपकी सेहत को लेके आपके खाने में तब्दीली लाने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस मौसम में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही साथ अपनी स्वच्छता का ख्याल रखिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली महिलाओं में होती हैं, जिनको बहुत जरूरत है उसको ध्यान देने की, साफ सफाई रखने की, सावधानी बरतने की, तभी आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो बरसात में हेल्दी रहने के लिए किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। और लोग आपको देख के कहेंगे कि कितनी खूबसूरत है, एकदम परम सुंदरी, बताएंगे। यस, इस ट्रैक के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, FM रेनबो।
4: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
5: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
6: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

जी 12:20 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन हेल्थ की और कैसे औरतें जो हैं वो अपना ध्यान रख सकती हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि भाई अब परसों से या फिर कह लीजिए कल से बहुत सारी चीज़ें जो महिलाओं के हैं वो बदलने वाली हैं। स्कूल खुलने वाले हैं, जून जा रहा है और जब तक जून रहा लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, गर्मियों में छुट्टियाँ रहीं, लोग यहाँ गए वहाँ गए और जो एक टाइम टेबल था ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। मतलब ये था कि सुबह अगर जल्दी उठना है तो देर से सो के उठ रहे हैं, उसके बाद सुबह जैसे ही उठे तो थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज होती है, थोड़ा बहुत जो योग होता है, वो सारी चीज़ें दरकिनार करके सीधे किचन में जाते हैं। अरे इतना टाइम हो गया, खाने का भी टाइम आ गया है और लंच का भी टाइम आ गया है और नाश्ते का भी टाइम आ गया, बच्चे भी सो के उठ जाएंगे, सास को भी ये देना है, ससुर को भी ये करना है, मम्मी को ये करना है, पापा को ये करना है और उसमें बेचारी एक महिला, एक औरत दौड़ दौड़ के इतना काम। अब देखिए उमस है तो बहुत ज़्यादा पसीना भी हमारी बॉडी से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, ऐसे में पानी को भी वो काफ़ी इग्नोर करती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप बहुत ही हेल्दी रहें, और अक्सर लो ब्लड प्रेशर भी महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, क्यों?

क्योंकि उनके अंदर अनीमिया बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोचिए कि अच्छा आयरन की कमी होगी, अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या करना है क्या करना है। बहुत ही ईजी से टिप्स हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप कर सकती हैं तो कम से कम डेट्स, दो डेट्स खा के एक नॉर्मल दूध अगर आप पी सकती हैं नॉर्मल टेम्परेचर का, अगर आपको चिल्ड अच्छा लगता है आप चिल्ड पी लीजिए, अगर आपको ठंडा अच्छा लगता है आप ठंडा पी लीजिए, अगर आपको दूध से थोड़ी बहुत एलर्जी है भी तो आप दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉर्मली काला नमक है अगर आपके किचन में, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में काला नमक मौजूद नहीं होता है, काला नमक है उसमें आपने थोड़ा सा नींबू डाला एक ग्लास पानी में, उसके बाद थोड़ी सी आपने जगरी पाउडर उसके अंदर डाल लिया, गुड़ को अगर डाल लिया, और वो आप दिन में एक दो बार पी लेती हैं अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो, यानी शुगर पेशेंट अगर आप नहीं हैं या फिर मान लीजिए आपको कोई और वजह से कुछ चीज़ें मना है, तो अगर ये सब चीज़ें आप में नहीं हैं और खुदा ना खास्ता हों भी, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके नहीं हैं तो आप इन सब चीज़ों का अगर दो तीन बार भी इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन मानिए आप इतनी खूबसूरत नज़र आएंगी, इतनी हेल्दी नज़र आएंगी, आपको खुद लगेगा कि आपने काम इतना कर लिया लेकिन आपको थकान तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुई। और अब अगले जो ट्रैक है उसके बाद हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे शरबत हैं, ऐसे ऐसे जूस कह लीजिए कि जिनको आप जब इस्तेमाल करेंगे, उस पर मिंट का आप इस्तेमाल करेंगी, पुदीने का इस्तेमाल करेंगी, तो इतना टेस्टी वो शरबत बनता है, इतना टेस्टी वो ड्रिंक बनता है, जब आप उसको अपने डाइट में शामिल करेंगी ना तो फिर आपको लगेगा कि भाई तरन्नुम ने बिल्कुल सही बताया है। और अब आज से बस आप खरीद खरीद के लाएंगी, आम की बात नहीं कर रहे, आम के बाद तो वो बेचारे जो फल हैं ना वो कोने में चले जाते हैं, उन फलों को आपको लेके आना है और बहुत ही महंगे नहीं हैं, बहुत ही आपके बजट के अंदर हैं, आपको उनको लाना है और उसका शरबत बना के पी लेना है। उसके बाद फिर आप बताइएगा कि आपको ज़रा सी भी रत्ती बराबर भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पैसे बहुत सारे हों या ना हों, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
4: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
5: जोर का झटका है जोरों से लगा।
3: अंदाज है सबसे निराला,
4: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: Oh God, stay tuned to channel सतरंगी रे।

12:34 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और जुगनी ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे थे। और जुगनी के बाद अगर आप चाहते हैं जुगनू की तरह चमकना और अगर आपको लगता है कि इस उमस भरी गर्मी में आपको एनर्जी जो है, आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसे स्टोर रहे, ऐसे ही बरकरार रहे, तो उसके लिए एक बहुत ही ईजी सा शरबत हम आपको शेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शरबत सिर्फ महिलाएँ ही पी लें, महिलाओं के लिए इसलिए खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि महिलाएँ ही हैं जो पूरे घर का ध्यान रखती हैं, सारी फैमिली का ध्यान रखती हैं। और अगर वो ही चुस्त दुरुस्त नहीं होंगी तो बताइए फिर कौन अच्छे अच्छे खाने खिलाएगा, कौन अच्छे अच्छे नाश्ते आपको बनाएगा, कौन आपको प्यार से थपकी देगा, कौन आपको प्यार से झप्पी देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं के ही हिस्से में आती हैं, तो महिलाओं का भी पूरा राइट है कि वो एकदम हेल्दी रहें। तो फिलहाल प्लम की अगर हम बात करें, जी प्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप देखिए कि जो ठेले नज़र आते हैं या जो शॉप नज़र आती हैं फ्रूट्स की, उन पर आपको वो नज़र आ जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग उसको हाथों में उठाते हैं, देखते हैं और फिर रख देते हैं। अरे नहीं, खट्टा होता है, अरे नहीं बच्चे खाते ही नहीं है, ये अंदर से थोड़ा सा कड़वाहट भरा होता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लगता है, तो फिर क्या लें, बनाना ले लें, ये ले लें। वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कुदरत ने इस मौसम में, हर मौसम में ऐसे ऐसे फ्रूट्स आप तक भेजे हैं जो अगर हम उनको लगातार इनटेक करते हैं, लगातार उनको हम खाते हैं, तो फिर हम हेल्दी रह सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आम बहुत ज़्यादा आप खा लेते हैं, अगर आपने 5 आम खा लिए हैं और 5 जामुन अगर आप खा लेते हैं, तो जो शुगर लेवल होता है ना वो एकदम बैलेंस्ड रहता है। उसी तरह अगर हम प्लम की बात करें, इसको आलूचा भी बोलते हैं, इसको आलू बुखारा भी लोग कहते हैं, और कभी कभी तो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं, आलू बुखारा अच्छा किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, लेकिन ये जो लाल लाल गोल गोल तरह के होते हैं, और समझ गए होंगे आप, बड़े ही शाइनी टाइप के होते हैं, चमकने वाले होते हैं, उसी को कह रहे हैं हम। और प्लम आप जाके बोलेंगे, या फिर अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लम बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। आपको करना क्या है, एकदम फ्रेश, आपको जो ताजगी भरा, आपको ताजगी महसूस करा दे, वो ड्रिंक हम आपसे शेयर करने वाले हैं। आपको करना क्या, बहुत ईजी

अभी अगर आप किचन में खाना बना रही हैं और वाकई अगर आलू बुखारे आपके घर में हैं, प्लम है आपके घर में, तो 5 से 6 पके हुए आलू बुखारे यानी प्लम को आप ले लीजिए, उसका बीज निकाल लीजिए। उसके बाद 10 से 12 पुदीने की पत्तियां, ये भी बहुत इजीली मिल जाएंगी। 1 नींबू का रस, नींबू भी बड़ा सस्ता है, नींबू भी आपके किचन में ज़रूर होगा। इसके अलावा 1 चम्मच शहद या फिर चीनी, चीनी का इस्तेमाल कर लीजिए, शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए और टेस्ट के हिसाब से काला नमक। अब देखिए सारी चीज़ें जो हैं ना, पुदीने की पत्तियाँ हैं यानी मिंट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके लिए गर्मी के लिए। नींबू है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके लिए, सिट्रिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। शहद है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। काला नमक वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, भले ही वो काला है लेकिन उसका जो फ़ायदा है ना बहुत ही ग्रेट फ़ायदे होते हैं। आपको करना क्या, सारी चीज़ों को आपने निकाल लिया यानी बीज आपने निकाल लिए प्लम के, और अब आपको ब्लेंडर में सारी चीज़ें जो हैं वो डाल देना, ज़रा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद उसको एक साथ पीस लीजिए, बस छलनी में छान लीजिए और बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए और ठंडा ठंडा परोसने से पहले ख़ुद भी ज़रूर पीजिए। बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आप बनाती हैं और आप हमेशा कहती हैं खिलाना अच्छा लगता है, तो उसके बाद पहले ख़ुद भी तो खाइए, ख़ुद भी तो आप हेल्दी रहिए, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो है ना उनको परोस दीजिए, सर्व कर दीजिए। और उसके बाद जब आप ये शरबत जो हमने आपको बताया प्लम का जब आप पी लेंगी तो इतनी आपको एनर्जी फील होगी ना कि एकदम जो ये ऐसे ऐसे करके पसीना पोंछते हैं ऐसे ऐसे करके हटाते हैं, ये सारी चीज़ें आप हटाना बिल्कुल भूल जाएंगे और साथ ही साथ आपको अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहती हैं कि भाई अब रोज़ रोज़ का इतना टाइम है, तो रोज़ रोज़ तो टाइम है ही नहीं मेरे पास, तो 3 से 4 दिन तक इसे आप ईजिली स्टोर भी कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ही आयरन लगता है किसी भी फल में, जैसे ही छुरी लगती है, उसके जितने भी पोषक तत्व जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बाइट करके खा लीजिए। अगर नहीं आपके पास चलिए टाइम है तो आप कोई भी फल ले लीजिए, उसको बाइट करके खा लीजिए। कहीं ना कहीं से आपको हम लोग यही समझाते रहते हैं कि भाई कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, लेकिन एटलीस्ट अपनी सेहत का तो ध्यान रखो। सेहत है तो समझ लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।

0: 7।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
4: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
5: हैंगओवर
4: Only 100.7 FM Rainbow।

जी हाँ ठीक है, डांस में तन डोल दिए और मन डोल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी गर्मी से भी तन डोल जाता है और मन भी डोल जाता है, यानी डूबा डूबा लगता है। ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं दिल बैठा जा रहा है, क्या करें, बड़ी टेंशन है, बहुत गर्मी है, ये है वो है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी ये है कि बहुत ज़्यादा जो फैशन में लड़कियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा फैशन में जो महिलाएँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी जीन्स या फिर बहुत ज़्यादा कसे हुए कपड़े इस मौसम में ना पहने, ख़ासतौर पर बारिश के मौसम में, क्योंकि उमस होती है तो पसीना बहुत आता है, पसीना बहुत आता है तो जो कसे हुए कपड़े होते हैं ना, वो रैशेज हैं या फिर इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें को पैदा कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके ढीले ढीले कपड़े पहनिए जो जल्दी से सूख जाएं, बहुत पसीना आया तो आसानी से सूख जाएं और आपकी स्किन को इरीटेट ना करें, आपके मूड को भी इरीटेट ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि उमस है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी है उसमें से सोडियम और जो फ्लूइड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना होने पाए। अब चलिए ये तो बात हो गई कि भाई जो महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती रहती हैं, बिजी रहती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं घर में होती हैं जो बुज़ुर्ग हो गई हैं। बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं वो उतनी ही जल्दी काम नहीं कर सकती, उतनी जल्दी वो अपना ये देखभाल नहीं करती हैं, बहुत कम पानी पीने पे फोकस करती हैं, उनको लगता है अगर पानी पिएंगे तो फिर जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है क्या करते हैं कि पानी ही नहीं पीते हैं। और अक्सर यही वजह होती है कि आप देखिए कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं उनके पैरों में सूजन भी आ जाती है, कभी कभी क्या होता है उनको खांसी लगातार आती रहती है, उसका कोई भी कहीं पे इन्फेक्शन नहीं निकलता लेकिन खांसी आने लगती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वो एक ही जगह पर बैठी हुई हैं, एक ही जगह पर उनको वही खाना दिया जा रहा है जो सब लोग खा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बच्चे और बुज़ुर्ग बराबर होता है तो उनका भी दिल करता है कि बच्चे अगर ऐसा खा रहे हैं, कोई भी स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं तो मुझे भी मिलना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एज के साथ दिमाग में आने लगती हैं। तो अब क्या है कि भाई उनको भी ज़रूरत है हाइड्रेशन की, तो ठंडा माहौल उनको भी चाहिए, हल्के कपड़े उनको भी ज़रूरी है कि आप पहनाइए। उनकी जो बढ़ती उम्र है उसकी वजह से उनका जो जिस्म का, उनका जो शरीर है उसका तापमान जो है वो बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी होती है, वो बहुत कम हो जाती है, जिससे उन्हें हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसलिए घर पे जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनको गर्मी से पूरी तरह से सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, पानी की कमी उनको बिल्कुल ना होने दें। आप बार बार पूछिए कि आपने पानी पिया कि नहीं पिया, या फिर उनको टाइमली नींबू पानी दीजिए, नारियल पानी दीजिए। उसके अलावा उन्हें प्यास अगर लगी है या नहीं भी लगी तब भी उनसे पूछिए कि कितनी देर में उन्होंने पानी पिया है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी पेय पदार्थ हैं जो उनकी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए, जैसे छाछ है बहुत फ़ायदेमंद है, लस्सी है, अब आजकल मौसम बदल रहा है तो दही का थोड़ा सा आप अवॉइड कर दीजिए तो ठीक है।

लेकिन जो ताज़ा फल हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं होता। उनको विदाउट फ्रिज के जो फ्रूट्स होते हैं उनको ज़रूर उनकी डाइट में शामिल करवाइए। उसके बाद ये है कि चाय है बहुत ज़्यादा, अगर चाय को उनको लगता है क्रेविंग हो रही है तो भी उनको चाय को मना कीजिए। कॉफ़ी है या बहुत ज़्यादा मीठे जो कूल ड्रिंक है जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे उनको परहेज़ कराइए। दूसरी चीज़ ये है कि कपड़े उनको भी सही पहुँचाइए, ठंडा जो माहौल है उनके पास भी रखिए और धूप से जितना हो सके उनको बचाइए। बिल्कुल लाइट उनको खाना दीजिए और उनको फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराइए। तेल मसाले ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके पैर कितने साफ़ हैं ये भी बहुत देने की ज़रूरत है। अगर घर में कोई महिला ऐसी है जो डायबिटिक है उनके पैर कितने साफ़ हैं, कितनी उन्होंने सफाई की है, ये ध्यान देना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाएं वो टाइमली ले रहे हैं कि नहीं। अक्सर ये होता है ना, बुज़ुर्ग सोचते हैं इतनी दवाएं खाते हैं, अरे काम करते हैं, दवाएं नहीं खाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप, भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा है या घर में कोई ऐसा है मेंबर जो उनको दवाएं देता है, लेकिन फिर भी आप उनको चेक कीजिए, उनसे प्यार से पूछिए, थोड़ा सा उनके पास प्यार से बैठिए। बच्चों को भी बार बार दिखाइए कि जाओ देखो दादी ने खाना खाया कि नहीं खाया, दादा है या कोई भी घर में बुज़ुर्ग है। जब बच्चों में आप ये सारी चीज़ें डालेंगे, संस्कार डालेंगे, तो बच्चे भी वही करेंगे जो वो आपको देखेंगे। और हम ये कहते हैं कि अगर किचन का भी कोई काम है और बच्चे घर में छुट्टी पे हैं तो उनसे भी थोड़े थोड़े काम कराते रहिए, तभी तो उनको आदत पड़ेगी। अगर आप एकदम से उनको काम करने को बोलेंगे तो फिर उनके अंदर वो आदतें नहीं डेवलप हो पाती हैं जो बचपन में अगर ना करवाई गई हों। तो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को डाल सकती हैं। बच्चों को कैसे बुज़ुर्गों का ध्यान रखना है, कैसे बार बार उनके पास बैठने को कहिए, बार बार उनके पास जाने को कहिए, बार बार आप उनसे पूछिए कि बेटा तुमने मुझे नहीं पूछा, तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुमने मेरे साथ वो नहीं किया, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, मेरे साथ ऐसा करो। तो जब आप ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में उनके जहन में डालेंगे तो फिर बच्चे भी बड़े जब होंगे तो वो भी वही करेंगे जो आप कर रही हैं। फिलहाल 12:54 हो गए हैं। अब एक काम हमें करना है और वो काम ये है कि हमें जो है वो आप तक एक गाना पहुंचाना है। और गाने के बाद एक और प्रोग्राम है जिसको हम और आप कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, ओठों पे तेरी बात। और उस में टॉपिक आज हमने ये लिया है कि कौन सी ऐसी दो आदतें हैं जो हर इंसान में होना ज़रूरी है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakachodilakhnow@gmail.com। फिलहाल प्रोग्राम शत्रुपा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 569 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विस्थापित 2500 परिवारों को नागरिकता और पट्टा वितरण किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता गरीब, युवा और महिला सुरक्षा को लेकर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोगों की समस्याओं का समाधान तय समय सीमा के भीतर हो। इसके उपरांत पीड़ित पक्ष से बात कर उनकी संतुष्टि के बारे में जानकारी ली जाए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में राजस्व संबंधी मामलों पर कहा कि सरकार अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, इस पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और शीलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। वहीं मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर पैरवी नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा का शेड्यूल और गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई हैं। यूपीटीईटी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को ऑफलाइन मोड में होगी। इस राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए लगभग 15,99,638 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यूपीटीईटी 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप भी जारी की जा चुकी है। यूपीटीईटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जी 1:03 हो चुके हैं, एक बार फिर से हाजिर है तरन्नुम लेकर प्रोग्राम होटो पे तेरी बात। और आज का सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी दो आदतें हैं जो सब में होनी चाहिए। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakachoni@gmail.com। फिलहाल सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की, बोले तो FM रेनबो।

जी बिल्कुल इश्क कीजिए और रेनबो से ही करते रहिए इश्क. और आपको बता दें कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें. फिलहाल मेरे पास एक मेल आ गया है. नाजिम उस्मानी साहब हैं, लिख रहे हैं, इंसान के अंदर दो आदतें हैं जो सबको सब में होनी चाहिए. वो ये है कि एक तो सच बोलना चाहिए और हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए. बहुत बहुत

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर असेंबली हलकों में 569 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने 2500 बेघर ख़ानदानों में शहरियत और लीज तकसीम की। जलसायाम से ख़िताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि हुकूमत का अज़्म गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ है। मरकज़ी वज़ीर मम्लकत और पीलीभीत के MP जितिन प्रसाद भी इस तकरीब में मौजूद थे।
1: हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे।
0: पीलीभीत के बाद वज़ीर-आला मुरादाबाद जाएंगे, जहां वो मुरादाबाद डिवीज़न में महकमा तामीरात आम्मा के पुराने कामों का जायज़ा लेने और नए कामों के लिए एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की मीटिंग की सदारत की और कई प्रोजेक्टों, बशुमूल एक्सप्रेसवे, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर, देही रोजी रोटी, तवानाई और ईवी चार्जिंग की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर और मेयारी तरीके से मुकम्मल किया जाना चाहिए। वज़ीर-आला ने तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, तिब्बी इदारों, ज़िलाई सतह के मर्दाना और ख़वातीन अस्पतालों और होटलों के फायर NOC स्टेटस की फौरी तस्दीक की हिदायत दी। वज़ीर-आला ने एक्सप्रेसवे समेत दीगर मंसूबों के लिए ज़मीन के हुसूल के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत दी। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के साथ सनती इलाकों की तरक्की के लिए मुनासिब ज़मीन की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर खसूसी ज़ोर दिया। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस ज़िले में 548 करोड़ रुपए के 143 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुस्तहिकीन में घर की चाबियां, स्मार्टफोन और चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब कर

0: चिपते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि हाथरस में जल्द ही एक प्रोसेसिंग सेंटर मुकम्मल हो जाएगा जिससे वहां के आलू काश्तकारों को फायदा पहुंचेगा।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद वज़ीर-आला ने आगरा में अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों के साथ तरक्याती कामों और अमन व अमान की पेशरफ्त के सिलसिले में जायजा मीटिंग की। वज़ीर-आला ने ओहदेदारों को तमाम ज़ेर-उल-तवा प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया केस के तमाम 8 मुलजमीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस तमाम 8 की रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में मुबैना गबन और माली बेजाबदगियों से मुतालिक दायर दरख्वास्त की आज समाअत हुई। अर्जी में सीबीआई की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया था। कल से रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ। पहले दिन बूथ डे पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। आज से 3 जुलाई तक महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। मुहिम के पहले रोज़ मुख्तलिफ अज़ला में अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। रियासत में देही तरक्की महकमे ने महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार गारंटी स्कीम मनरेगा की जगह पर VBG रामजी यानी तरक्की याफ्ता भारत रोज़गार और रोज़ी रोटी गारंटी मिशन देही स्कीम के मुअस्सर निफाज की तैयारी मुकम्मल कर ली है। यह स्कीम 1 जुलाई 2026 से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएगी। इस सिलसिले में 2 जुलाई को रियासतगीर अवामी कॉन्फ्रेंस लॉन्च इवेंट प्रोग्राम होगा जिसके तहत मुजव्वजा कामों और तरक्की याफ्ता देही पंचायत स्कीम की नुमाइश की जाएगी। रियासत में कुल 10,000 से काम 2 जुलाई को शुरू किए जाएंगे। दारुल हुकूमत लखनऊ और आसपास के इलाकों में आज सुबह मौसम में तब्दीली देखी गई और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरक़ी डिवीज़न में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

और 1:17 हो चुके हैं प्रोग्राम होठों पे तेरी बात पे. आज हमने आपसे सवाल किया है कि वो कौन सी दो आदतें हैं जो सब में होना चाहिए. आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com.

जी, और आज हमने आपसे सवाल ये किया है कि कौन सी दो आदतें हैं जो सब इंसानों में होना चाहिए, और इस पर बहुत सारे हमारे पास मेल आ चुके हैं, लोगों ने अलग अलग तरह के जवाब दिए हैं। और वाकई ये जो जवाब हैं, ये कहता ना कि दिमाग की कुछ बत्तियाँ ऐसी होती हैं जो बुझी रहती हैं, और जब ये जवाब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, जब हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी हमारे अंदर होनी चाहिए। सुधांशु हैं, लिख रहे हैं, राधे राधे, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट मोहना, थाना इटौंजा, बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच सुधांशु, आपके कान बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमको हमारी जो आवाज़ है वो अच्छी लगती है। दूसरों की

बात को केवल जवाब देने के लिए नहीं, यानी ने हमारे सवाल का जवाब दिया है, दूसरों की बात को केवल जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उनके नजरियों और भावनाओं को गहराई से समझने के लिए पूरे ध्यान से सुनना, यानी सक्रिय श्रवण, इन्होंने ये लिखा है। दूसरी चीज है अनुकूलनशीलता, बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखते रहने का जज्बा रखना। और एक और आदत है जो इन्होंने लिखी है कि सब में होनी चाहिए, वो है सिविक सेंस, जो कि सब में होना चाहिए। थैंक यू सो मच सुधांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया और इतना अच्छा सा आपने हमें जवाब दिया। अब जो नेक्स्ट मेरे पास मेल आया है वो लिख रहे हैं, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ, आपको भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। लिख रहे हैं कि आपके टॉपिक के हिसाब से मनुष्य को जीवन में धर्म और सत्कर्म ये दोनों ज़रूर करना चाहिए, मैं कुछ नाम है जिनका लेना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक आपने मैसेज किया, मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। पिंकू सोनी जी टिकैत नगर से हैं और कुछ नाम इन्होंने लिए हैं, कुलदीप आकाश, नारायण जी, बहन रिंकी, पिंकी जी और सभी लिसनर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो चीज़ें हैं जो ये कहते हैं कि होनी चाहिए। सुल्तान रजा साहब का मेल आ गया, लिख रहे हैं सब्जी मंडी बरेली से, और ज़ीशान रजा, अफजल रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा, पूरा रजा परिवार लिख रहे हैं कि आज का टॉपिक बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले आदत होनी चाहिए, किसी ने गलती की, हमारे साथ कोई धोखा किया तो हम उसे माफ़ कर दें बिना किसी भावना के साथ, और उसके बाद ये एक आदत होनी चाहिए जब किसी की मदद करनी हो बुरे वक्त में या किसी का एक्सीडेंट हो जाए सड़क पर, तो हमारे अंदर सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए, ना जाने कि ना जात की बात हो ना कोई धर्म की बात, फौरन उसकी जैसी भी हो मदद करनी चाहिए। अच्छा, कई आदतें इन्हें लिखनी हैं लेकिन सारी आदतें बहुत अच्छी हैं सुल्तान साहब, ये आदतें आप अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए, उतार लीजिए। और बहुत अच्छी बात आपने लिखी कि हमेशा सड़क पे कहते हैं ना कि अगर कोई छोटा सा पत्थर भी पड़ा और आप उसको सिर्फ पैर से किनारे कर देते हैं तो उसका भी जो पुण्य है, उसका भी जो सवाब है, वो इतना है कि हम और आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब तो ये हो गई कि ये आदत है, आदत यानी जब इस तरह की आप छोटी छोटी काम करते हैं तो लोग भी आपको देख के आपसे प्रेरित होते हैं और फिर वो भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। शैलेश कुमार जी का मेल आ गया है और टाइगर पूर्णिमा की ओर से तरन्नुम बाजी को सलाम आदाब कबूल हो, और कोई सवाल पूछने की इन्होंने कहा, मेरा दिल कर रहा है आपकी इजाज़त हो तो पूछें, लेकिन अभी सवाल पूछने का नहीं, हमने आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब हमें चाहिए और वो आप हमें दे नहीं रही हैं, इसलिए थोड़ा सा इस मैसेज को नहीं यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कस्बा बराड़ा ज़िला अम्बाला हरियाणा से हैं और देखिए गाने की फरमाइश कर दी, इतनी बेखरारी है 2 बजे के प्रोग्राम की कि 1:20 पे इन्होंने हमें मेल कर दिया कि भाई आला गाना में सुनवा दीजिए। और भी बहुत सारे मेल मेरे पास आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से भी मेल आ गया है, लेकिन अभी जो सवाल है वो यही चल रहा है होठों पे तेरी बात में कि कौन सी 2 आदतें हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए, वो जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए जो गानों की फरमाइश है वो धड़ाधड़ हमारे पास जो मेल है आ रहे हैं। वकील अहमद साहब हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, लिख रहे हैं आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, कार्यक्रम अच्छा लगता है, सच बोलना और सभी का सम्मान करना चाहिए। सच बोलना और सभी का सम्मान, 2 आदतें, बहुत अच्छी बात और सब में होना चाहिए। लिख रहे हैं कि मौसम ठंडा हो गया है और कुछ अर्ज़ भी कर दिया है, चलिए अर्ज़ किया तो मेरा फ़र्ज़ है कि हम पढ़ दें उसे। लिख रहे हैं गज़ब की गर्मी है शहर में लेकिन दिल किसी का भी पिघलते नहीं देखा। अच्छा, एक ही लाइन में शेर है, गज़ब की गर्मी है शहर में लेकिन दिल किसी का भी पिघलते नहीं देखा। देखिए दिल पिघलाने की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले तो हमें अपना दिल पिघलाना होगा, अपने दिल को हमें नरम रखना होगा, तभी हमें दूसरों की जो दिल है, खूबसूरत सा जो दिल है, उसमें हम झांक सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए आप नरम रहिए, सामने वाला भी आपके साथ ऑलरेडी नरम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। रोशनी रावत जी हैं और मेल कर रही हैं, 12 बजे से लगातार सुन रही हैं और लिख रही हैं, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, मीठी टिकिया खाइए तो आवाज़ मीठी होगी। फिलहाल गांव बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हैं, अभी चंडीगढ़ में हैं। कितने दिनों से चंडीगढ़ में आप, मतलब आने का आपका कोई इरादा ही नहीं लग रहा है। मैं लिख रही हैं आज के टॉपिक पर कि आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है लेकिन दूसरों को सुनना और समझना कोई नहीं चाहता। ये बिल्कुल आपने 100% की बात कही है, हालांकि टका यहाँ नहीं नेपाल में चलता, लेकिन 100% की आपने हमें बात कही है। दूसरी चीज़ ये है कि खुद को रख कर उनकी दर्द या खुशी को महसूस करना, और हमारे पास नहीं है हम अक्सर उसका रोना रोते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है जैसे खूबसूरत ज़िंदगी, परिवार, आज की सुबह, उसके लिए शुक्रिया कहना हमें खुश रखता है। इनका कहना ये है कि हमें हमेशा 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, शुक्रिया कहना खुदा का, ऊपर वाले का, भगवान का। दूसरी चीज़ ये है कि

दूसरों को सुनना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और महेंद्र दीपन जी हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, मेल करते हैं, और इन्हीं ने लिखा इस बात पे कि मैम मैंने नोटिस किया है इतने महीनों से आप जितना दिल से प्रोग्राम करते हो उतना कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है महेंद्र, क्योंकि सारे लोग हैं दिल जान लगा के प्रोग्राम करते हैं, और ये बात अलग है कि सबको अलग अलग, किसी का अंदाज़ है, किसी का अलग अलग प्रेजेंटेशन है, तो आपको क्या अच्छा लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आज का जो प्रोग्राम है, ये लिख रहे हैं महेंद्र कि दिल से साझा करता हूँ अच्छे संस्कार और तमीज़ का होना। मेरा मानना है कि आज के दौर में इंसान चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अगर उसके भीतर अच्छे संस्कार और बात करने की तमीज़ नहीं तो सब कुछ अधूरा है। हाय महेंद्र, आपने मेरे दिल की बात कर ली। और सच में कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी उनके पास डिग्री है, लेकिन तमीज़ नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं उनके पास। और क्यों है ये ज़रूरी? तमीज़ और तहजीब एक ऐसी आदत है जो बिना किसी खर्च के दूसरों का दिल जीत लेती है। अपनों का आदर करना और हर छोटे बड़े से अदब के साथ पेश आना एक ऐसा क्वालिटी, एक ऐसा गुण है जो आज के वक्त में हर इंसान में होना बेहद ज़रूरी है। और सच में तमीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इतनी अच्छी आपने बात लिखी है, और बस क्या कहें, मतलब क्या कहें। अब एक काम करते हैं, कहते नहीं हैं, एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक है जो हम पहुँचा रहे हैं आप तक।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, FM रेनबो।
5: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
6: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
7: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

और 1:39 हो चुके हैं और उसके बाद जो जुबान है ना, लोग कहते हैं कैची की तरह इसकी जुबान चलती है, मेरी जुबान भी कैची की तरह चलना शुरू हो जाती है 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच। और फिलहाल अभी ये जो हमने सवाल आपसे पूछा था इस प्रोग्राम में होटो पे तेरी बात में, कि कौन सी ऐसी 2 आदतें हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किया, अपने जवाब दिए हैं। और प्रवीण जी का मेल आ गया है, लेकिन प्रवीण जी बहुत बेकरार हैं 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच के प्रोग्राम के लिए, उन्होंने अभी से ही हमें मेल कर दिया। प्रवीण जी, ये प्रोग्राम होटो पे तेरी बात है, इसमें आप अपने रिक्वेस्टेड नंबर हमसे नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो स्लॉट है वो अलग से है 2 बजे से 3 बजे के बीच, इसलिए प्लीज़ हम आपका मेल इस वक्त नहीं पढ़ पाएंगे। जावेद अख्तर साहब हैं, लिख रहे हैं तरन्नुम बाजी, ये बाजी आपा और बज्जो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं कभी कभी बड़ी इरीटेट करती हैं, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा जब ओहदा मिल जाता है ना, कहता है ना कि जब कोई घर में सबसे बड़ा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं, तो कभी कभी तो बड़ा इरिटेशन होता है, अरे भाई आपा बच्चों बाजी और ये दीदी ये सब लगता है कि ना कहो, और कभी कभी ये लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, बड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये लिख रहे हैं कि हमारे अंदर आदतें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम किसी की बिला वजह गीबत ना करें। गीबत यानी किसी की बैक बिचिंग, किसी की बुराई, पीठ पीछे बुराई, इसका बहुत बड़ा गुनाह कहा गया और इन्होंने कहा है कि भाई वो ना करें और बुज़ुर्गों का ख्याल करें। मेरे अंदर जो 2 आदतें हैं वो ये हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और अपने लोगों के लिए परेशानी के वक्त खड़ा रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है जावेद साहब, और ऐसी जो आपकी आदतें हैं ना उसको बना के रखिएगा। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं शमसुल खमर राही बेगम रुखसार, और मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश निजा जी हैं मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं आपका हार्दिक अभिनंदन, कहते हैं बहुत प्यार से लिखते हैं, बहना जी करके लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपको भी प्यार भरा नमस्कार सतीश जी। और लिख रहे हैं कि 2 आदतें हैं जो ज़रूर होनी चाहिए, एक तो हमेशा हमारे दिल में परार्थ की भावना होनी चाहिए, स्वार्थ की नहीं, और दूसरा सुबह उठते ही परमात्मा के आगे नतमस्तक होना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब तक आपने अच्छे से संभाल रखा है और आगे भी आपने ही देखना है। ये सांसें आपकी और आपकी हर योजना पर फूल चढ़ाएंगे, रोज इस प्रण की आदत होनी चाहिए। इतनी अच्छी आपने बात लिखी है और सही बात है कि ऐसा ही होना चाहिए, हर सांस का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये जो सांस आ रही है जा रही है इसका भी शुक्र हमें अदा करना चाहिए। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा जी, बिमला अनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और सुधाकर जाधव जी हैं और लिख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू नी जो लोग रहते हैं उनके सुख दुख में हम

हमेशा साथ रहते हैं। आपना आवाज बहुत ही सुंदर है। कौन सी चक्की का आटा खाती कि आपकी आपकी आवाज इतनी अच्छी है। जाफराबाद से हैं और इनका जो मेल करने का अंदाज है ना सुधाकर जी का, वो टूटी फूटी इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, इतना अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि हिंदी को पूरी अच्छी तरह से सीख लें। और चक्की का आटा, तो चक्की है, गेहूँ वही गेहूँ है जो आपकी तरफ आता होगा, और वही गेहूँ पिसता है और वही दो रोटी खा लेते हैं। अगर रात की बच जाती है तो वो भी खा लेते हैं, शुक्र कर लेते हैं भाई चलो खाना यहाँ तक गया, यहाँ से हलक तक नीचे उतरा, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और अभी चक्की गई आटा खाते रहिए। और बहुत सारे नाम इन्होंने लिखे हैं, अगर कहिए तो पढ़ देते हैं। और ग्राम पंचायत कालेगांव से सुधाकर राजीव जाधव, प्रशांत राजीव जाधव, संचिता वायल, प्रतिमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी, हर्षदा देशमुख, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बिट्टू भाटिया जी का मेल आ गया, छज्जर हरियाणा से हैं ये बिट्टू भाटिया जी। 2 बजने में भी बहुत वक्त है, इतनी बेकरारी, इतना उतावलापन आखिर क्यों है, कहीं जा नहीं रहे, हम यहीं बैठे हैं और आपका मेल भी पढ़ेंगे।

आटा तो चक्की तो चक्की है, गेहूँ वही गेहूँ है जो आपकी तरफ आता होगा, और वही गेहूँ पिसता है और वही दो रोटी खा लेते हैं, अगर रात की बच जाती है तो वो भी खा लेते हैं, शुक्र कर लेते हैं भाई चलो खाना यहाँ तक गया, यहाँ से हलक तक नीचे उतरा, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और अभी चक्की गई आटा खाते रहिए, और बहुत सारे नाम इन्होंने लिखे हैं, अगर कहिए तो पढ़ देते हैं। और ग्राम पंचायत कालेगांव से सुधाकर राजीव जाधव, प्रशांत राजीव जाधव, संचिता वायल, प्रतिमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी, हर्षदा देशमुख, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बिट्टू भाटिया जी का मेल आ गया, छज्जर हरियाणा से हैं ये। बिट्टू भाटिया जी, 2 बजने में भी बहुत वक्त है, इतनी बेकरारी, इतना उतावलापन आखिर क्यों है, कहीं जा नहीं रहे, हम यहीं बैठे हैं और आपका मेल भी पढ़ेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। अहमद नवाब हैं, लिख रही हैं, हेलो डियर अप्पी, कैसी हैं आप, अच्छा केक भेजा है, हार्ट भेजा है, इमोजी भेजा है, और यही कहना चाहूँगी इंसान के अंदर कुछ आदतें होनी चाहिए जो मेरे अंदर हैं, अल्लाह का शुक्र है। लिख रहे हैं, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो हमेशा खुद को पता हो और खुदा को पता हो, जैसे दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, डुग्गी पेट कर की गई मदद बेकार है, और अगर आपने किसी से वादा किया है तो पीछे मत हटिए, उसका वादा को निभाइए, बिल्कुल सही बात, परिवार समाज एक तरफ और एक इंसान एक तरफ, जिससे आपने वादा किया है कोशिश करनी चाहिए, आपसे किसी को भी दुख ना पहुंचे, अगर कोई खुशी आप दे सकते हैं किसी को तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इतने सारे दिल आपने दे दिए, दिल तो एक ही होता है लेकिन आपने 15-20 दिल तो इधर ही दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और किसका मेल आ गया मेरे पास, मुनेश कुमार राज जी का मेल आ गया है, लखीमपुर खीरी से, शुभ दोपहरिया कह रहे हैं, आपको भी शुभ दोपहरिया, लिख रहे हैं कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, हर कार्यक्रम है अच्छे, हमारे बात सुनेंगे हमारे बच्चे और बच्चे आपके बड़े हो रहे होंगे या बच्चे हैं कि नहीं है तो भाई हमें नहीं पता, लिख रहे हैं आपके कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर मुद्दे को इतनी खूबसूरत अंदाज में रखते हैं कि सुनते ही सीख मिल जाती है। और आगे लिख रहे हैं, 2 आदतें सबसे ज़रूरी हैं, झूठ ना बोलने की आदत, सच बोलने वाला इंसान हमेशा सिर ऊंचा करके जीता है, रिश्ते मजबूत रहते हैं और मन को सुकून मिलता है, टाइम को पकड़ कर चलने की आदत, समय की कदर करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहता, समय पर काम करने से इज्जत भी बढ़ती है और काम भी आसान हो जाते हैं। और भी बहुत सारे मेल हैं लेकिन अब थोड़ा सा जुबान को कंट्रोल करते हैं, लगाम देते हैं और पहुंचाते हैं ट्रैक आप तक।

और 1:50 हो गए हैं. भले ही इस गाने के कुछ जो बोल हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन नो डाउट गाना हमेशा ये एवरग्रीन हिट है और हिट रहेगा. बहुत सारे मेल मेरे पास आए हैं और बहुत सारे मेल हमने पढ़े हैं. रामेश्वर जी का मेल आ गया है. होटो पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन तरंगम जी, प्यार से ये हमें तरंगम कहते हैं और इतना अच्छा लगता है जब ये तरंगम कहते हैं. और हमें ऐसा लगता है कि दिल से अगर आप कुछ भी कहते हैं किसी को ना तो वो अच्छा ही लगता है. लेकिन सवाल ये कि दिल से होना चाहिए, उसमें दिमाग का मेल नहीं होना चाहिए. मतलब जैसे अगर आप हमसे कहें कि कुछ भी आप हमें कहें और कहें कि भाई इधर आओ, ऐसे करो, ऐसे बात करो, ऐसे करो, तो हम समझ जाएंगे कि भाई आप प्यार से कह रहे हैं या फिर आप उसके अंदर कुछ दिमाग का भी उसमें झोल आपके आ गया है. फिलहाल लिख रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि क्या लाजवाब प्रस्तुति कर रही हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस भाई को जिसने अस्पताल में भेजा, उनको धन्यवाद देता हूँ. मेरा हाथ और पैर टूट गया था और ग्राम पोस्ट मंगेसापुर देहा से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया. अच्छा, ये धन्यवाद देना चाहते हैं, यानी ये ही कहना चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर धन्यवाद करने की भी आदत होना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी बात है. और बहुत अच्छा लिखा आपने कि भाई अब किसने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो हमें नहीं पता कब हुआ, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन आपने तारीफ़ की, उसका धन्यवाद किया, ये आज आपका दिल थोड़ा हल्का हो गया होगा, है ना. क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जहन में दिमाग में बैठी रह जाती हैं और उनको दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल होता है. फिलहाल देखिए बिट्टू बाटिया जी फिर से हमें मेल कर रहे हैं. राधे श्याम जी का मेल आ गया है कासगंज से. मास्टर राधे श्याम शाके, गुड आफ्टरनून तरनुम जी, और आप कैसी हैं. दो आदतें प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए. सबसे पहले बात तो ये कि बहुत बहुत गुड आफ्टरनून टू यू टू, और बिल्कुल अच्छे हैं. और आप कैसे हैं, तो भाई हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे ऐसे में उम्मीद करते हैं. और लिख रहे हैं कि दो आदतें प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए. पहली ये कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान मॉर्निंग में 1 hour वॉकिंग नाइस प्रेजेंटेशन. कितनी दो लाइन में इन्होंने अच्छी सी बात लिख दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी. और मोहम्मद आसिफ जी ये मेल कर रहे हैं, आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं. अब देखिए इन्हीं ने भी ये लिखा है कि

ना सुनवा दीजिए। गाने तो आपको ऑलरेडी सुनवाए जा ही रहे हैं, लेकिन अभी जो वक्त था वो आपने थोड़ा सा मिस कर दिया। अगर आप प्रोग्राम में कहते तो भाई हम ज़रूर आपका मेल शामिल करते। और भी बहुत सारे हमारे पास मेल आए हैं, लेकिन वो मेल इस प्रोग्राम के लिए नहीं आए हैं। वो मेल आए हैं 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच वाले प्रोग्राम के लिए, जिनको हमें 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच पढ़ना होगा। आयल खान का भी मेल हमारे पास आ गया है, बुलंदशहर से है। इंसान की पहचान उसकी आदत से होती है, जिससे वक्त की पाबंदी, दूसरे लोगों के लिए इज्जत, सच्चाई, सफाई, यही अच्छे इंसान की पहचान है। और सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और अब 1:53 हो गए हैं, कुछ ही देर में 54, 55, 56, 57, 58, 69, 60 हो जाएंगे, 2 बज जाएंगे, और आप के मेल का जो झड़ी है ना वो लगातार इस पर आना शुरू हो जाएगी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब क्या करना है, अब होटो पे तेरी बात कार्यक्रम को वाइंड अप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 569 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विस्थापित 2500 परिवारों को नागरिकता और पट्टा वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता गरीब युवा और महिला सुरक्षा को लेकर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज जनता दरबार में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। श्री पाठक ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्रीराम जन्मभूमि दान चोरी मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि संघ का कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। यदि कोई अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से वकालतनामा दाखिल करता है तो उसे प्रत्येक आरोपी के नाम पर 5 लाख रुपए अधिवक्ता संघ में जमा कराने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अधिवक्ता संघ ने बताया कि करीब 15 अधिवक्ताओं की एक विशेष पैनल कमेटी बनाई गई है जो अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करेगी। अधिवक्ता संघ ने कहा कि वो मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम के तहत अमरोहा में सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिलना शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि योजना के तहत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग के किनारे बने 6 अस्पतालों को चयनित कर घायलों को तत्काल भर्ती कर कैशलेस इलाज के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा का शेड्यूल और गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई हैं। यूपीटीईटी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को ऑफलाइन मोड में होगी। इस राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए लगभग 15,99,638 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सपने बड़े हैं,
4: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
4: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
4: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
5: जी 2:04 हो चुके हैं, प्रोग्राम हॉट मेल लेकर हाजिर है तरन्नुम। ये ट्रैक आप तक उसके बाद पढ़ेंगे आपके नाम और आपके जो गाने हैं वो पहुंचाएंगे हम आप तक। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की तरन्नुम के साथ।

और 2:07 हो चुके हैं, बताइए 9 मिनट हो गए हैं और जल्दी जल्दी अब आपके मेल को पढ़ने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सुधांशु इसका मेल आ गया मेरे पास फिर से, बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से लिख रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गाने की फरमाइश की है और 2-3 गाने इन्होंने लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु मेल करने के लिए। मोहसिन रजा साहब का मेल आ गया है, अपनी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए, सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन अशोक कुमार राजकुमार बुढ़ाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। गगनदीप थांडी जी का मेल आ गया है टूरोवाल नवाशहर पंजाब से हैं, गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका एंड वाड़ी थांडी, आपका आभार धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। गाने की फरमाइश की है यासीन अंजान साहब का मेल आ गया है, पुरखलूस अदाब के साथ लिख रहे हैं, प्रोग्राम रेगुलर सुनता हूं और अपनापन का एहसास इनको लगता है, मेरा नाम शामिल करें। दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से हैं, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद मेफर नवाज, बेबी चाहत और सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब मेल करने के लिए। नबी हसन साहब का भी मेल आ गया है, गाने की फरमाइश की है, मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से हैं, मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया और गाने की फरमाइश की है। दिनेश वर्मा जी का भी मेल आ गया है मेरे पास, गाने की फरमाइश की है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बहुत ही शॉर्ट मैसेज है, बहुत ही शॉर्ट मेल है, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें मेल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मूसा शेख का भी मेल आ गया है, सनावत से हैं ये भी, शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बुड़ाना, गाने की फरमाइश की है, बहुत ही खूबसूरत सा मेल भेजा है सजा के, नवाब खान, संगीत सुहाने, आरजी जी वर्ली मुंबई से हैं, नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए, गाने की फरमाइश की है। हनुमंत शिंदे जी का मेल आ गया, प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्ते कह रहे हैं, शिर्ट जिला सांगली, हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, और क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना आपने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मेल किया। और दूसरा जो मेल आया मेरे पास, यानी नेक्स्ट जो मेल आया मेरे पास, सीताराम कांगड़ा जी का मेल आया, एक तो कॉलोनी रोहतक से हैं, सीताराम कांगड़ा, बाबिता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, गाने की फरमाइश। और साथ ही साथ मेल आ गया मेरे पास सोमदत्त जी का मेल, पटियाला पंजाब, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, आहा क्या गाना पसंद कर लिया आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। आगे भी मेल पढ़ने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों के बीच में से पसंद का ट्रैक आप तक।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना. टोलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं. RHL Gold TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा. जानो फिर मानो.

तुलसी मस्कीन जी का मेरे पास मेल आ गया है और लिख रहे हैं कि जादू है, नशा है. अच्छा, गाने के इन्होंने बोल लिखे हैं और लिख रहे हैं, मेरा मेल भी पढ़ लीजिए जी. बिल्कुल आपका मेल हम पढ़ेंगे. गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना. बहुत बहुत धन्यवाद जी तुलसी जी, आपने हमें मेल किया. और पंजाब रामटेके जी का मेल आ गया है, गाने की फरमाइश, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल, पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके. किसी भी गाने में इन्होंने कहा है कि चलेगा, बस आप मेरा मेल शामिल कर लीजिए. सतीश अनेजा जी का मेल आ गया, सलाम तरन्नुम सिस्टर जी, वेलकम टू द प्रोग्राम, फॉर अवर लव टू रेनबो लखनऊ. और गाने की फरमाइश की है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा. बहुत बहुत धन्यवाद जी, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे. जो बिल्कुल अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है. शरफुद्दीन अंसारी का है बक्सर बिहार से मेल, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश राहू डुमरा बिहार से, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी गोलाबाजार बक्सर से हैं, श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य सारिमपुर बक्सर से, राज एस जी अंसारी और आसमा खातून अंसारी. बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए. संदीप मक्कड़ साहब का मेल, गाने की फरमाइश, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत कमल, कमल सानी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए. और नेक्स्ट मेल मेरे पास आया है उत्तम कुमार भगत जी का मेल है. तरन्नुम जी आदाब, गुड आफ्टरनून, क्या बात है, कैसी हैं आप? आप आती हैं तो मज़ा आ जाता है, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छा लगता है. झारखंड से हैं ये. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. गुड आफ्टरनून टू यू टू. उत्तम जी कैसे हैं आप? श्वेता भगत, किसु तासु, अर्डमानंद, सत्यमानंद, बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत. बहुत बहुत शुक्रिया जी मेल करने के लिए, खूबसूरत सा मेल करने के लिए, और बहुत तहे दिल से शुक्रिया. मोहम्मद अमीन है, विलेज बेडहा पोस्ट बहरौली गंगागंज लखनऊ से. किसी भी गाने में इन्होंने जल्दी में लिख दिया, किसी भी गेम में शामिल कर लीजिए, और ऐसा लग रहा है हाथ में मोबाइल लिए होंगे और गेम खेल रहे होंगे, इसलिए जल्दी में इन्होंने ऐसा लिख दिया है. गुड आफ्टरनून तरन्नुम जी, और ये सॉन्ग इनको सुनना है, सुनवाना चाहते हैं ये. थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेल करने के लिए. जय का मेल आ गया है. जय बहुत बेकरार रहते हैं, बहुत बेकरार रहते हैं, मतलब एक घंटे में कम से कम 6-7 मेल तो कर ही देते हैं. बहुत उलझन इनको रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मेल शामिल ना हो. होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जय. और लिख रहे हैं सब खैरियत से हैं, जय राम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन खुरवाल, दीपांशु खुरवाल. गाना बड़ा ज़बरदस्त पसंद कर दिया जय. नो डाउट आपकी जो फरमाइश होती है ना, उसको तो मतलब उंगलियां जो है ना बेखरार रहती हैं उस ट्रैक को ढूंढने के लिए, फिर प्ले करने के लिए. नरेश जी का मेल आ गया. हमेशा इनकी बस यही फरमाइश होती है कि देखिए मेल आप पूरा पढ़िएगा, मतलब जो नाम है ना वो पूरे पढ़ना. ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का. बहुत बहुत धन्यवाद जी. और साई गायकवाड़ जी का मेल, सादर नमस्कार जी, तरानू मैडम जी, गुड आफ्टरनून जी. गुड आफ्टरनून टू यू टू. साई कैसी हैं आप? अच्छे हैं, हॉट मेल बहुत अच्छे लगता है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से टूटी फूटी हिंदी लिखते हैं. और हम भी सोच रहे हैं कि मराठी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, और जिस दिन पूरा सीख गया उस दिन हम आपको मराठी में इंशाल्लाह आंसर देंगे. आगे लिख रहे हैं कि बारिश का मौसम है. ओम रेडियो श्रोता सिंह कॉलोनी नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़. और साथ ही साथ नेक्स्ट मेल आ गया है संजय ढिंग्या जी का मेल, बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंग्या, नमन ढिंग्या, अपार ढिंग्या. और गाने की फरमाइश करी है प्रकाश बोरगांवकर जी का मेल आ गया है. प्यार भरे नमस्कार. क्या बात है, क्या बात है, क्या गाना पसंद किया. सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, स्वीट अंशुमन बीबी ओवी, आपका दिल से शुक्रिया. और अब क्या करते हैं, क्या करते हैं, बिना देर किए प्ले करते हैं मस्त नजरों से अल्लाह. यस, ट्रैक अब तक.

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तार पढ़ते रहना है हमें, क्योंकि अभी बहुत सारा वक्त हमारे पास है। 2:38 हुए हैं और साथ ही साथ जो मेल संदीप मक्कड़ जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं कल है मेरी मैरिज एनिवर्सरी और गाना इनको आज सुनना है। अच्छा, तो चलिए ठीक है भाई, आज नहीं तो कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, जो गाने की फरमाइश आपने की है वो बिल्कुल हम सुनवाएंगे। सैफ अंसारी जी का मेल आ गया है, हेलो मैम जी, और मेरा नाम हुस्बा अंसारी है, कभी किसी की मेल आईडी से मेल करती हैं और कभी किसी की, तो फिलहाल इन्होंने मेल किया है लखीमपुर खीरी से, गाने की फरमाइश की है और गाना इनको जो सुनना है बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। वारिस अली खान जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं ज़िंदगी कोई किताब नहीं जिसे पलट दो, ये एक एहसास है जिसे हर दिन जी कर समझो। गाने की फरमाइश, इनकी एक खासियत ये है कि गाने बहुत अच्छे पसंद करते हैं। संजय नगर रेशबाग से मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। मनोज बंसल जी का मेल आ गया है, हांसी हरियाणा से, नमस्कार, और आपके कार्यक्रम में गाना जो आपने पसंद किया है मनोज जी, वो ऑलरेडी हम प्ले कर चुके हैं। और कभी कभी ये होता है, इतफाक होता है कि एक ही की फरमाइश जो है ना वो कई लोगों की होती है, तो क्लैश कर जाती है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को बड़ी आसानी होती है कि कम से कम एक गाने की फरमाइश 4-5 लोगों ने की है, तो एक गाना प्ले हो गया, 5 लोग खुश हो गए, ताली बजाते होंगे कि अरे वाह मेरी पसंद का गाना प्ले हो गया है। दिलीप कुमार जी का भी मेल आ गया है मेरे पास, मूंदी चक भागलपुर बिहार से हैं दिलीप कुमार सोनी, गाने की फरमाइश की, बहुत ही छोटा सा मेल किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सदानंद मंदूरकर जी का मेल आ गया है, दाबकी रोड अकोला से है, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, धन्यवाद आपका भी सदानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया। महेंद्र दीपन जी का भी मेल आ गया है और बड़ा सजा के भेजा है, आज क्या बात है, आज बड़ा शायराना अंदाज है आपका। महेंद्र जी लिख रहे हैं रूड़नागौर की धरती से महेंद्र दीपन ने बड़े प्यार से संदेश भेजा है, एफएम रेनबो लखनऊ की महफिल में अदब के साथ सलाम भेजा है, हॉटमेल शो में आरजे तरन्नुम मैम की जादुई आवाज़ का दौर आ रहा है आया है, उनकी सुरीली और शानदार प्रस्तुति ने आज फिर समा बांधा है, और फिल्म डैश का सदाबहार गाना डैश सुनाना है, आरजे मैम से गुजारिश है कि इसी खूबसूरत नगमे को आज बजाना है। सुल्तान रजा बाबू भाई का स्नेह और रोशनी दीदी बबीता दीदी को सम्मान, और महेंद्र भाई ने अपनी इस प्यारी फरमाइश में सब अपनों का नाम लिया। और आप लोग जब एक दूसरे को ये कहते हैं ना कि इनका नाम लिया जाए, इनका नाम लिया जाए, तो हम लोग को लगता है चलो हमारी जो मेहनत है सफल हो गई। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हो, और हम लोगों को क्या चाहिए। मल्होत्रा टी डी महोली जी से मेल आ गया है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से है, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और राजेंद्र नारंग जी का मेल आ गया, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। अब्दुल गफ्फार साहब का मेल आ गया है, नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। हीरा मणि वर्मा जी का भी मेल, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, कोई भी गाना चलेगा सुनवा दीजिए। बबलेश पनवार जी का मेल, प्रसारक महोदया जी नमस्कार, गाने की फरमाइश, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, और डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, क्या बात है, इतने सारे एक दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। चलिए ठीक है, आप लोगों ने गाने की फरमाइश की है, नो डाउट जो गाना आपने पसंद किया है वो बहुत अच्छा है, तो गाने को गा के नहीं, एक काम करते हैं प्ले करते हैं ना, फिर उसको सुनते हैं, तो सुने

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सपने बड़े हैं,
4: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
4: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
4: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

आपको बता दें कि अब जो मेल मेरे पास आया है वो आया है सत्यनारायण कुरील जी का, और लिख रहे हैं राजस्थान से, कैसी हैं आप, गाने की फरमाइश की है। उदय भानपाल का भी मेरे पास मेल आ गया है और इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है। कहाँ से लिखा है, ग्राम रजौनी ज़िला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं ये। साथ ही साथ जो मेरे पास नेक्स्ट मेल आया है वो आया है शाहरुन नूर अंसारी का, ग्राम पोस्ट हररपुर मिटकली ज़िला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। रोज़ी डिकेस्ट्रो सहारनपुर से हैं, गाने की फरमाइश के साथ रोज़ी डिकेस्ट्रो, पर्ल वलिस डिकेस्ट्रो, जॉन डिकेस्ट्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिम रायन का मेल आ गया है, लिख रहे हैं प्यार भरा सलाम, लेकिन कोई भी इन्होंने फरमाइश नहीं की है। इसके अलावा आफ्ताब अंसारी जी का भी मेल आ गया है मेरे पास, मैसेज

एक अंदाज इनको बहुत ही शानदार लग रहा है. शिरवानी स्कूल गंज डुंडुवारा उत्तर प्रदेश से हैं. आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुमना अंसारी, आलिया अंसारी. और भी मेरे पास बहुत सारे मेल आए हैं. मोहम्मद अमीन जी का मेल आया, अब्दुल गफ्फार, मैनुद्दीन अंसारी, उदय भनपाल, सुरेश नारंग, अनुज स्वर्ण सिंह, बाबू अंसारी, तेज बहादुर यादव और नाजिम राय नगेन मेल कर रहे हैं. मुकेश कश्यप, संतोष खाटसी जी का भी मेल आ गया है. रामेश्वर जी का भी मेल आ गया है. स्वर्ण सिंह जी का भी मेल आ गया है. ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी का भी मेल आया. बिट्टू गगनेजा जी का भी मेल आ गया. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए. आप लोगों ने अपना इतना खूबसूरत सा टाइम निकाला इस प्रोग्राम में मेल करने के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. और अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाज़त. तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है सतरंगी दुनिया. तो एंजॉय करते रहिए सतरंगी चैनल, बोले तो FM रेनबो. सुनते रहिए.

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नागू के बेंच ने याचिका की तत्कालिकता पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के उद्गम स्थल को भी विश्व स्तरीय पर्यटन एवं आस्था केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र की कलीनगर तहसील स्थित गोमती उद्गम स्थल के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 1,04,00,000 रुपए की परियोजना स्वीकृत की है। इसके तहत प्रथम चरण में 78,00,000 रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा गोमती उद्गम स्थल को एक प्रमुख आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। CBSE ने कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले ही 2 विदेशी भाषाएं चुन ली हैं, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी की अनुमति होगी। नीट UG परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज CBI द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। CBI परीक्षा से पहले नीट UG प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। पूजा के बाद श्री सिन्हा ने कहा कि प्रशासन श्री अमरनाथ जी तीर्थ बोर्ड, सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय समुदाय, सेवा प्रदाता और स्वयंसेवक तीर्थ यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि तीर्थ यात्रा के संचालन के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो इस घंटे तरन्नुम के साथ।

साथ ही साथ जो ये प्रोग्राम है इसमें हम हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचाते हैं जो सुनने में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती हैं। कभी कभी ये लगता है कि बड़ी अजीब सी चीज़ है कि भाई ये ऐसा भी होता है क्या। अब देखिए क्या होता है ना कि जब शादी की बात होती है तो जिनकी शादी नहीं होती वो कितना शर्माने लगते हैं, कितना ठंडी सांसें भरते हैं कि अच्छा शादी की बात हो रही है, मेरी भी शादी होगी कभी, ऐसा होगा वैसा होगा। और फिर होता क्या है कि लड़की वाले जो हैं वो लड़के वाले लड़की वाले के घर आते हैं, लड़की शर्माती हुई ट्रे हाथ में लिए हुए आती है, ऐसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, और लड़का भी उधर शर्मा रहा है, भले ही वो शर्मीला ना हो लेकिन तब शर्मा रहा है। लड़की ट्रे लेके आ रही है, धीरे धीरे देख रही है कनखियों से, लड़के के साथ उसके घर वाले आते हैं, उसका भाई आता है, उसके दोस्त आते हैं, उसकी बहन आती है, कोई ना कोई आता है, लड़का भी शर्मा रहा है, लड़की भी शर्मा रही है, और लड़की चाय या शरबत जो भी है वो सर्व कर रही है, और फिर लड़का लड़की को पसंद कर लेते हैं और शादी हो जाती है। लड़का दिखने में अच्छा है ठीक है, कमाता अच्छा है ठीक है, लड़की भी सोचती है कि भाई अच्छा लग रहा था, चलो ठीक है शादी तय हो गई, और शादी हो जाती है। अब ये जो शादी हो गई तो भाई जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ शराफत देखी गई और रिस्पेक्ट देखी गई। ऐसी शादियां हम लोग सुनते हैं, ऐसी शादी हम लोग देखते हैं, और ऐसी शादी हम लोग के समाज में होती है। लेकिन ज़रा सोचिए आप कि अगर कहीं लड़का शादी के लिए जाए, यानी लड़का जो है लड़की को देखने जाए, और उसे लड़की के घर वाले इतना पीटें, मतलब घूसे, लात, थप्पड़, मार, जूते, सारी चीज़ें उसको खूब पीटें, और लड़का चुपचाप मार को सहन करता रहे, आप सोचिए। तो आप कहेंगे कि अरे भाई क्या कैसी बातें कर रही हैं तरन्नुम, मार ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर हम आपसे कहें कि ऐसा ही होता है किसी जगह पर,

और वहाँ पर इतना पीटा जाता है लड़के को, इतना पीटा जितनी मार वो सह लेता है। इसका मतलब ये है कि लड़का बहुत अच्छा है और शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और शादी क्या होती है, पक्की हो जाती है। तो अब ये होता कहाँ है भाई, ये देखिए अपने इंडिया में तो होता नहीं है, अफ्रीका में होता है। कहाँ होता है, फुलानी समुदाय है और वहाँ पर ऐसा ही होता है, इतनी पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती है। अब आप ज़रा सोचिए, अब यहाँ के लड़के तो इतने नाजुक मिजाज होते हैं, स्पेशली लखनऊ के लड़के लड़कियाँ तो बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, उनको तो मारना तो दूर की बात, अगर आप ज़रा ऊँची आवाज़ में बोल भी दीजिए तो बुरा लग जाता है कि भाई इतनी ऊँची आवाज़ में जब ये अभी से बात कर रहे हैं तो फिर आगे चल के क्या होगा। तो इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कमाल की होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इस दुनिया में देखे हो रही हैं और लोग उसको बड़ा खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो गलत भी होती हैं उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे समुदाय, जो विशेष समुदाय है उसमें ऐसे ही चलते हैं, उसमें तो ऐसे ही होता है। लेकिन सब कुछ हो, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ये मारपीट वाली बात भाई ये तो हलक से नीचे मेरे उतरी नहीं, लेकिन हमें लगा कि ये जो फैक्ट है इसे आप तक पहुँचा दें। फिलहाल अब शादी की बात हुई है तो चुनर की बात ना हो, ऐसा मुमकिन है क्या?

और 3:12 हो चुके हैं. प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एनसीईआरटी द्वारा है. ये 30 मिनट की इसकी ड्यूरेशन है और 3:30 से ये प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाएंगे. फिलहाल अभी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत ही रोचक तथ्य है जिसे कह सकते हैं हम, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. और कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं लोगों को देख के समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम किसी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, किसी के घर जाते हैं, खाना पीना उठने बैठने के तरीके देखते हैं, तो समझ में आता है कि भाई इनके घर में बड़ी डिसिप्लिन है, बच्चों को भी बड़ा अच्छे से पाला जा रहा है. और ये जो डिसिप्लिन है, ये जो तौर तरीके हैं, ये हमें भी आजमाने चाहिए, तभी हमारे बच्चे भी आगे चल के तरक्की पा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं. ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है कि हर चीज़ बड़ी डिसिप्लिन होती है. दोपहर का खाना खा लिया, उसके बाद सोना है, उसके बाद प्ले करना है, उसके बाद स्पोर्ट्स में जाना है या फिर पढ़ाई करनी है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखें कि अलग अलग घरों में अलग अलग तरह से होते हैं और बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसी इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई काबिले तारीफ़ हैं और ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी होनी चाहिए. और इसकी शुरुआत ऐसा नहीं है कि दूसरे शुरू करेंगे, अच्छा उन्होंने शुरू कर दिया तो भाई हम भी शुरू कर दें. आप ही क्यों नहीं शुरू कर देते हैं. कर्नाटका के एक

गांव है जिसका नाम है हलगा। वहाँ रोज शाम को 7 बजे सायरन बजता है। जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही लोग अपना टीवी और मोबाइल को बंद कर देते हैं, यानी 2 घंटे का डिजिटल ऑफ होता है। और ये 2 घंटे का जो डिजिटल ऑफ होता है ये इसलिए होता है ताकि बच्चों की पढ़ाई और जो टाइम है ना परिवार को, वो समय देने के लिए सुनिश्चित किया गया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। यानी मान लीजिए आप कि अगर 2 घंटे 7 बजे से सायरन बजता है, लोग अपना फ़ोन अपना टीवी सब बंद कर देते हैं, और 2 घंटे के टाइम में या तो बच्चे हैं अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई करते हैं, अगर कुछ लोग हैं जो अपने मम्मी पापा या नहीं बैठ पाते किसी वजह से, फ़ोन की वजह से सब चुपचाप गर्दन झुकाए नीचे बैठ रहते हैं फ़ोन लिए हुए, तो वो सारी चीज़ों से भी वो दूरी बना लेते हैं। बहुत अच्छी ये पहल है कर्नाटक की, और ऐसी ही पहल हमें भी शुरू करनी होगी, और कहीं ना कहीं से शुरुआत इसकी होनी ही चाहिए, क्यों ना हम अपने घर से शुरू कर दें। तो ये जो पहल है ये बहुत ही सराहनीय पहल। और एक और गाना, बहुत ही बढ़िया सा ढिंचक ट्रैक आप तक।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: 3:27 हो रहे हैं दोस्तों, अब प्रोग्राम सतरंग की दुनिया को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। किसी दिन और मुलाकात होगी, नेक्स्ट प्रोग्राम होगा स्पॉन्सर्ड। सुनते रहिए रेनबो।

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन शाहनवाज सर।

0: फराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है, बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: क्या भूल बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर।

0: बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
0: अरे जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे क्या हुआ?
1: अरे चुब्बा, चुब्बा क्या हुआ बेटा?
0: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
1: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? हायराम, क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
0: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
1: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुप्पा चुप्पा,
0: सजा सजा बेटे सजा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। है सोचा बेटा, सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है।
1: हा?
0: जब सोचा, अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है। वो... चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, तेरे भी इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ।

0: ये बात तो ठीक है, जामुन कहां से खाऊंगी? तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
1: अरे अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बड़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे, बात तो तुम्हारी सच है।
2: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत।

0: जितने पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
0: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं।
3: ये देखो, ये पेड़
1: देख लो।
0: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे,
1: चलो इधर से निकल कर आओ।
0: अच्छा
3: ध्यान से, ध्यान से बेटा।
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
3: क्या हुआ?
0: अम्मा अम्मा गांडा चुप गया। आई,
1: अरे दिखा दो।
0: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
0: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
2: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
1: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल,
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। हैं?
2: तू समझ गई है?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
2: रहने दे,
1: तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल।

0: पता?
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं, क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल
1: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव।

0: पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम के तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार। उमंग।

नमस्कार, 4 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर विस्थापित परिवारों को नागरिकता प्रदान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता मिले और जमीन का मालिकाना हक मिले। मुख्यमंत्री ने पीलीभीत में बंगाली विस्थापित परिवारों को नागरिकता के प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में 55,000 से अधिक लोगों को अब तक जमीन का मालिकाना दिलवाया जा चुका है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ पीलीभीत जिले का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर GTC ने आज वाराणसी स्थित IIT BHU के स्थापना दिवस समारोह में उन्नत ड्रोन तकनीक का सजीव प्रदर्शन किया। इस दौरान सशस्त्र बलों द्वारा आधुनिक ड्रोन प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। इसके माध्यम से आधुनिक रक्षा अभियानों में मानव रहित प्रणालियों की बढ़ती भूमिका तथा भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में नागरिक सैन्य समन्वय, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। CBSE ने कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले ही दो विदेशी भाषाएं चुन ली हैं, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। पूजा के बाद श्री सिन्हा ने कहा कि प्रशासन, श्री अमरनाथ जी, तीर्थ बोर्ड, सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय समुदाय, सेवा प्रदाता और स्वयंसेवक तीर्थयात्रियों के लिए एक सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आगाज हो गया है आपके अपने प्रोग्राम यूथ वेव का, और यूथ वेव में आज करेंगे ढेर सारी बातें स्टार्टअप्स की। फिलहाल 4:04 हो चुके हैं और ये आवाज जो आप सुन रहे हैं आपकी आरजे दोस्त अलका की है। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

सो माय डियर लिसनर्स, 4:07:29 हो चुके हैं और प्रोग्राम आज के यूथ वेव में हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप की। जी हाँ, स्टार्टअप एक्चुअल में एक ऐसा वर्ड है जब हमें लगता है कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ नई आगाज का समय आ गया है। लेकिन कभी कभी बहुत सारा कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में हम स्टार्टअप को शुरू कैसे करें और इसमें किन चीज़ों को शामिल करें, किन कामों को शामिल करें, किस काम को चुनें कि हमें इसमें आगे तरक्की और प्रोग्रेस मिलती रहे। तो कुछ ऐसे 5 आइडियाज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा लीक से हटकर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उन्हीं के बारे में आज करेंगे बात। तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्टअप आइडियाज को जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके साथ आज के ये 5 आइडियाज मैं शेयर करने वाली हूं अपने इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं नंबर 1। जी हाँ, इन 5 आइडियाज में सबसे पहले AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को शामिल किया जा सकता है। एजेंसी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एजेंसी आप खोल सकते हैं। कैसे? आप ये समझ लीजिए कि बहुत कम लागत में आप इस एजेंसी को खोल सकते हैं क्योंकि आजकल हर कंपनी जो है वो AI, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे वो अदर कोई ऐसे सोर्सेज हो, इनका इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन उनके कर्मचारियों को ये नहीं पता कि एक्चुअल में AI से सही तरीके से काम कैसे निकलवाना है। तो अब यहाँ से शुरू होता है आपका काम और आपकी ड्यूटी, यानी सही प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। और सही प्रॉम्प्ट जब तक नहीं लिखेंगे AI आपको आपका बेस्ट और सही रिजल्ट नहीं देगा। तो ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक काम है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं और इसे आप एक AI प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग के तौर पर आप इसे स्टार्टअप के रूप में शुरू कर सकते हैं। आप एक ऐसी एजेंसी शुरू कर सकते हैं जो कंपनियों के काम को आसान बनाने के लिए

उनके लिए जो कस्टमाइज एआई प्रॉम्प्ट्स हैं और वर्क फ्लो है उसे तैयार करके देंगे। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपकी जो स्किल है वो यहाँ पर काम आएगी। सिंपल सा एक छोटा लैपटॉप आपको जरूरत पड़ेगी लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए और ट्रेन करने के लिए। और इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, किसी मोटी रकम की जरूरत नहीं है, आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर बस वो स्किल होना चाहिए जो आप लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें सिखा सके। अब फिलहाल एक ट्रैक एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे आपके पास और बात करेंगे नंबर 2 के उस आइडिया की।

शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

वेल फ्रेंड्स, और अब बात करनी है आपसे अगले यानी कि नंबर 2 के स्टार्टअप आइडिया की। कुछ ऐसे स्टार्टअप आइडिया, कुछ ऐसे आइडियाज जो प्रैक्टिकल हैं, उनकी बात करते हैं। चलिए, आजकल की ज्यादातर सेवाएं जो है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की हो, ट्रेन से संबंधित हो, फ्लाइट बुकिंग हो, या कोई सरकारी ऐप हो, या ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो, पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं। लेकिन घर के जो बड़े हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, और ऐसे लोग जो तकनीक से थोड़ा सा दूर हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है, उन्हें इन्हें इस्तेमाल करने में आज भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब चूंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है फैमिली के अदर मेंबर्स का, तो वो उन्हें वक्त भी नहीं दे पाते हैं। ऐसे में एक ऐसी सर्विस जहां एक भरोसेमंद असिस्टेंट एक सारथी बनकर बुजुर्गों के घर जाकर कॉल पर उनकी उनकी जो डिजिटल समस्याएं हैं उनका हल कर सकते हैं, जैसे फोन की सेटिंग ठीक करना, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना, या डिजिटल दस्तावेज उनके जो है वो संभालना। इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल भी यूज किया जा सकता है, और कुछ अदर सर्विसेज भी दी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत कम बजट का काम है। एक या दो पार्टनर के साथ आप इसे शुरू कर सकते हैं, और इसे सिंपल तौर पर बुजुर्गों के लिए डिजिटल सारथी के रूप में भी कहा जा सकता है। एक ऐसा छोटा सा स्टार्टअप जिसे आप आसानी से शुरू कर सकते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रोजगार समाचार 4:25 पर 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर।
1: ये है 100.7

www.awr.res.in. सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आमंत्रित कर रहा है टीजीटी समाज विज्ञान पद के लिए. आवेदन पद नियमित है. अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org. गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन. टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क. अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org. आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक. केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रजिस्ट्रार का एक पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना चाहता है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. इच्छुक उम्मीदवार पात्रता की नियम और शर्तों, वेतनमान, आरक्षण और अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in और आवेदन कर सकते हैं. ईमेल का पता है dsadmin-cic@cic.nic.in. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, वैज्ञानिक बी, सी और डी वर्ग, प्रबंधक प्रशासन, हिंदी अधिकारी, कार्यकारी सहायक, हिंदी अनुवादक और एसोसिएट प्रशासन. अधिक विस्तृत जानकारी के लिए

0: देखिए वेबसाइट www.c.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समझ रहे हो?
1: तो फ्रेंड्स, 4:50 हो चुके हैं और अब वक्त हो रहा है अगले उस नंबर की तरफ बढ़ने का जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसे 5 आइडियाज शेयर करूंगी जिनसे आप एक अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और जो लीक से थोड़ा सा हटके होंगे। नंबर 1 और नंबर 2 मैंने आपके साथ शेयर किया और अब बारी है नंबर 3 की। तो इसको कह सकते हैं हाइपर लोकल एड एजेंसी, माइक्रो इन्फ्लुएंसर।

क्रिएटर स्टूडियो आप डेवलप कर सकते हैं। अब इस माइक्रो इन्फ्लुएंसर क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आपको काम क्या करना होगा, देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज अब टीवी स्टार्स के बजाय उन सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ढूंढ रही हैं जिनके पास कम फॉलोअर्स हैं लेकिन उनके फॉलोअर्स उनके बहुत वफादार हैं। सो आइडिया इसमें ये काम कर सकता है कि आप अपने शहर के ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर्स जो कि रील्स और बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको एक साथ आप लाएं, एक उनका एक नेटवर्क बनाएं, फिर स्थानीय जो आपकी शॉप्स हैं बहुत फेमस शॉप्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं ब्रांड्स हैं उनके पास जाकर उनके बिजनेस को इन क्रिएटर्स के जरिए आप प्रमोट भी करवा सकते हैं और आप बीच में इनके साथ अच्छा कमीशन ऐड कर सकते हैं। ये भी एक तरह का बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सिर्फ नेटवर्किंग और बातचीत की आपकी जो कला है यहाँ पर वो आपके साथ काम कर सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी डीलिंग जो है वो कितनी बेहतरीन हो सकती है इस काम को आगे बढ़ाने में। फिलहाल स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो RJ Alka के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आज का यूथ वेव।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: ओ गॉड,
0: स्टे ट्यून टू चैनल सतरंगी रे।
4: बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। 100.7
5: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सो फ्रेंड्स अब बढ़ चलते हैं नंबर 4 की तरफ। जी हाँ, 7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का यूथ वेव आरजेएल का के साथ। और अब नंबर 4 क्या है ये तो आपको बता दूं, जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून किया है उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज स्टार्टअप में कुछ प्रैक्टिकल स्टार्टअप आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिसमें कि कुछ 5 आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिसमें पहुंच चुके हैं इस वक्त हम नंबर 4 पर। 3 आइडियाज मैं आपको दे चुके हूं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल ग्रीन पैकेजिंग कुरियर सर्विस, और ये मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस होगा स्टार्टअप के लिए। ई कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी के कारण हर दिन लाखों टन प्लास्टिक और थर्माकोल का जो कचरा है वो निकलता ही निकलता है। अब सरकारें हो, सजग कस्टमर्स हो, वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले विकल्प ऑलवेज ढूंढते रहते हैं, कुछ ऐसा ऑप्शन उन्हें मिले जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंच पाए। अब आइडिया इसमें यह काम करेगा कि आप एक ऐसी लॉजिस्टिक्स या पैकेजिंग कंपनी शुरू करें जो सिर्फ कपड़े के थैलों, मशरूम बेस्ड थर्माकोल या रिसाइकल होने वाले कागज के डिब्बों में ही सामान को पैक करें और डिलीवर करें। स्थान जो लोकल लेवल के जो आपके होम शेफ हैं या फिर बुटीक चलाने वाले जो लोग हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका बन सकते हैं। इनको आप टारगेट कर सकते हैं बहुत ईजली। अब इसमें बजट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी, बहुत ही मतलब मिनिमम बजट में आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो ज़रूरत पड़ेगी वो पैकेजिंग मटीरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा आपको डिलीवरी बॉयज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक ऐसा आइडिया था जिसे आप अपने एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू कर सकते हैं और चुन सकते हैं इसे एक बेहतरीन विकल्प के रूप में। नंबर 5 की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, फिलहाल एक ट्रैक की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।

और आइए अब जल्दी से आपको बता देते हैं नंबर 5 के बारे में कि क्या कुछ प्लान है नंबर 5 में मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास। तो बता दें कि डिजिटल डिटॉक्स कैंप जो है वो एक बहुत अच्छा आइडिया है स्टार्टअप शुरू करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है डिजिटल डिटॉक्स कैंप। जी हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है एक छोटे से स्टार्टअप को शुरू करने का, क्योंकि आज के दौर में हर एक इंसान जो है वो स्क्रीन यानी कि मोबाइल हो लैपटॉप है से बहुत परेशान हो चुका है, इनफैक्ट इसमें उलझ चुका है। लोग चाहते हैं कि कुछ घंटे या कुछ दिन वो फ़ोन से पूरी तरह से दूर रहें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें आइडिया ये काम करेगा कि वीकेंड्स पर आप किसी शांत जगह पर, शहर से थोड़ा दूर, कोई ऐसा फार्म हाउस, कोई ऐसी शांत जगह, वहाँ पर नो फोन जोन कैंप आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप काउंटर पर किसी का भी जिसने वहाँ पर सर्विस ली है उसका मोबाइल फ़ोन आप जमा करा लें, पुराने ज़माने की तरह बोर्ड गेम्स खेलें, किताबें पढ़ें, मिट्टी के बर्तन बनाएं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम पहले किया करते थे उन्हें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको बजट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एक जगह आपको प्रॉपर चाहिए होगी जो आपको रेंट पर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ आप प्रॉपर प्लान करें और अच्छे से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले आप बहुत बड़ा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। पहले इन्हें 5 या 10 कस्टमर्स के साथ टेस्ट कर लें, यानी कि MVP इसे कहते हैं स्टार्टअप की दुनिया में, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसके बाद अगर अच्छा रिस्पांस मिले तो आप इसमें आगे इसे बढ़ा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा आइडिया था जो मुझे लगता है आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग हो सकता है। फिलहाल ऐसे कुछ और बहुत सारी आइडियाज के साथ आपके साथ

फिर लेकर आऊंगी यूथ वेव। फिलहाल प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो गया है, अलका को दीजिए इजाजत। खूबसूरत ट्रैक के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ, लेकर आऊंगी कुछ ही देर में आपके लिए टॉप 10 100.7 FM रेनबो पर। इंजॉय करते रहिए, प्रोग्राम्स का सिलसिला इसी तरह लगातार जारी रहेगा।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में विकसित ग्राम विकसित भारत के विजन को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में देश भर से आए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर लखपति दीदी डेस्क बोर्ड का शुभारंभ किया गया और माई जीओवी पोर्टल पर आयोजित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। श्री राम मंदिर दान प्रकरण में आज सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में वर्चुअल पेशी कराई गई। पुलिस ने किसी भी आरोपित की रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। वहीं अयोध्या बार में वकीलों की बैठक में तय किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता इन सभी आरोपितों की केस नहीं लड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर विस्थापित परिवारों को नागरिकता प्रदान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता मिले और जमीन का मालिकाना हक मिले। मुख्यमंत्री ने पीलीभीत में बंगाली विस्थापित परिवारों को नागरिकता के प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में 55,000 से अधिक लोगों को अब तक जमीन का मालिकाना हक दिलवाया जा चुका है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ पीलीभीत जिले का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के उद्गम स्थल को भी विश्व स्तरीय पर्यटन एवं आस्था केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में पीलीभीत जनपद के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र की कलीनगर तहसील स्थित गोमती उद्गम स्थल के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 1,04,00,000 रूपये की परियोजना स्वीकृत की है। इसके तहत प्रथम चरण में 78,00,000 रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा गोमती उद्गम स्थल को एक प्रमुख आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: फ्रेंड्स 5:03 और 46 सेकंड हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर एक बार फिर से आरजे अलका आपके साथ है। मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी अगले कुछ घंटे। फिलहाल बता दूं आपको कि प्रोग्राम आपका शुरू हो चुका है टॉप 10। तो टॉप 10 में आज के 10 गानों को हम शामिल करने वाले हैं जिनका काउंट डाउन शुरू हो जाएगा अब से कुछ ही देर में। फिलहाल आज हम टाइम मशीन में बैठेंगे और सीधे चलेंगे उस दौर में जब प्यार का मतलब ब्लू टिक नहीं बल्कि खेतों, जो खास तौर पर जो लेटर्स होते थे उस दौर में, जो खत होते थे उनमें छिपी जो खुशबू होती थी वो हुआ करती थी। जब गानों में शोर नहीं हुआ करता था, सुरीलापन हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्लोरियस 90s की। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से और पहुंचाते हैं आपको नंबर 1 पर। नंबर 10 पर जिस मूवी का ट्रैक रहा और जिसने उस वक्त 90s में धमाल मचा रखा था वो था ये।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: सुनिए,
4: कहिए, कहिए,
3: सुनिए, सुनिए,
4: कहिए, कहिए ना,
3: सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
5: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

सो फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है नंबर 10 के बाद नंबर 9 की, और नंबर 9 पर उस वक्त एक ऐसी मूवी के ट्रैक ने जमकर धमाल मचा रखा था। एक्चुअली मूवी मोहरा की मैं बात कर रही हूँ, उस दौर में यानी 90s में मोहरा एक ऐसी फिल्म थी जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। रीज़न था कि उस वक्त जो बहुत सुपर डुपर स्टार में अक्षय कुमार शामिल थे और उनकी फिल्म थी मोहरा, और मोहरा ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो कमाई करी थी उस वक्त, और उसके जो ट्रैक्स थे वो लोगों को बेहद पसंद थे। इनफैक्ट ये जो ट्रैक नंबर 9 पर जमकर बैठा उस वक्त, इस ट्रैक को भले ही कभी आप याद करें ना कहें, लेकिन आज के भी इस दौर में आप उसे बारिश के मौसम में ज़रूर गुनगुनाना चाहेंगे, और गुनगुनाते भी हैं लोग और उसे बेहद पसंद भी करते हैं।

सो फ्रेंड्स, नंबर 8 के बाद नंबर 7 की आ गई है बारी, नंबर 9 के बाद, और माफ कीजिएगा, नंबर 8 की बारी आ गई. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी. नंबर 9 के बाद बारी नंबर 8 की आ गई, और बॉम्बे फिल्म इस वक्त नंबर 8 पर जम कर चिपकी हुई थी, क्योंकि एक ऐसी फिल्म थी बॉम्बे जो सामाजिक उथल पुथल के बीच पल रही एक ऐसी लव स्टोरी को लेकर आई थी जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया, और साथ साथ इसके जो ट्रैक्स थे उसे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि गाने भी जो थे वो बहुत चुनिंदा गाने थे इसमें, और कम ही गानों के साथ इस फिल्म को लॉन्च किया गया था, लेकिन जो भी थे वो सुपर डुपर हिट थे, और उसका ही एक ट्रैक था नंबर 8 पर उस वक्त.

सो फ्रेंड्स, 5:22 हो चुके हैं और वक्त हो गया है अगले ट्रैक की तरफ आगे बढ़ने का. और ये जो ट्रैक है अगला, वो है नंबर 7. नंबर 7 पर छाई थी फिल्म दिल से, और दिल से का ये ट्रैक जिसे सुनने के बाद आपको थिरकने का मन करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ट्रैक ही कुछ ऐसा है. इस ट्रैक को इंजॉय करने के बाद आपको लगेगा कि आज भी अगर डीजे फ्लोर पर या फिर अदर किसी पार्टीज में, आप जहाँ पर गैदरिंग में रहें और ये सॉन्ग प्ले हो जाए, तो आप नाचे बिना नहीं रह सकते.

सो फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है जब इसे नंबर सिक्स की। नंबर सिक्स पर एक ऐसा ट्रैक जो मुझे लगता है अब थिरकने के बाद आपको थोड़ा सा गमगीन कर सकता है, क्योंकि नंबर सेवन के बाद आएंगे नंबर सिक्स पर, और जिस पर थी फिल्म नाम। अब आप थोड़ा थोड़ा शायद समझ रहे होंगे, उसका ये जो ट्रैक है ये एक गाना नहीं था बल्कि भावनाओं को बयां करता और दर्द को बयां करती एक कहानी कह रहा था ये ट्रैक पूरा। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि ये जो ट्रैक है वो कितना दिल को छू जाने वाला था।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
3: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
2: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
3: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
4: धड़कन लखनऊ की
3: 100.7 FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आज 5:32 और 41 सेकेंड है, ये वो ट्रैक जिसे आप इंजॉय करने वाले हैं नंबर 5 पर। जी हाँ, नंबर 5 पर इस ट्रैक को इंजॉय कीजिए, फ्रॉम द मूवी 1942 लव स्टोरी।

नंबर चार की आ गई है बारी, 5:36 हो चुके हैं दोस्तों, और इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं आज का टॉप 10 आरजेएल का के साथ 100.7 एफएम रेनबो पर। सो फ्रेंड्स, नंबर चार पर थी वो फिल्म जिसने सबके दिल को छुआ। एक्चुअली 90s का जो दौर था वो अपने आप में गोल्डन एरा था, क्योंकि उस वक्त जो मूवीज रिलीज हुई थी 80s और 90s में, इनफैक्ट 90s के खास तौर पर बात करें तो वो लगभग सबके दिलों को छूने वाली थी, और उनके जो ट्रैक्स थे, उनके जो सॉन्ग्स थे, वो आज भी उतना ही सुख चैन और आराम देते हैं, दिल को सुकून देते हैं, जितना उस समय दिया करते थे। सोचिए तब से लेके अब तक इतने डिकेड्स बीत चुके हैं, लेकिन इन गानों का जो चार्म है वो आज भी बिल्कुल वैसा है। और उन सुपर डुपर हिट लिस्ट में शामिल थी साजन। साजन की जब बात आती है तो आप सोच सकते हैं मैं किस तरह के किस लेवल के गानों की बात कर रही हूं। तो सुपर डुपर हिट फिल्म साजन का ये ट्रैक पहुंच चुका था नंबर 4 पर। तो आइए इस ट्रैक को करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: Kabhi अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
2: शाम होने को है।
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: सो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज टॉप 10 में 90s के उस दशक की। तो 90 के दशक की शुरुआत हुई थी एक ऐसे एल्बम से जिसने गुलशन कुमार, चुके टी सीरीज और कुमार शानू को हर घर की आवाज बना दिया था। फिल्म थी आशिकी और गाना था जो आज हर आशिक दिल की पहली पसंद बन गया है। जी हाँ, उस दौर से लेकर इस दौर तक अभी भी

0: personalized diet plans or modern day treatments ka labh.
1: Charak Hospital at Hardoi Road, Dubagga. 100.7. Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
2: Dhadkan Lucknow ki.
3: सो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज टॉप 10 में 90s के उस दशक की। तो 90 के दशक की शुरुआत हुई थी एक ऐसे एल्बम से जिसने गुलशन कुमार, चुके टी सीरीज और कुमार शानू को हर घर की आवाज बना दिया था। फिल्म थी आशिकी और गाना था जो आज हर आशिक दिल की पहली पसंद बन गया है। जी हाँ, उस दौर से लेकर इस दौर तक अभी भी उसी खूबसूरती के साथ लोगों के दिलों को छूने वाला फिल्म आशिकी का ये ट्रैक इस वक्त पहुंच चुका है कहाँ, जी हाँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर हम आ चुके हैं और अब बारी आ चुकी है उस फिल्म की और उस गाने की जिसने नंबर 3 पर बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह बना रखी थी। तो चलिए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं फ्रॉम द मूवी आशिकी।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

सो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है नेक्स्ट ट्रैक की. और 90s सिर्फ एक रोमांस का नहीं बल्कि कॉलेज बंक करने और अपनी पहली नजर के उस जादुई एहसास का भी दौर था. तो आमिर खान की लाल टोपी और जतिन ललित का वो आइकॉनिक पियानो पीस, बिल्कुल आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ. पेश है 1992 का वो गाना जिसने स्लो मोशन में दौड़ने का कूल बना दिया था और लोगों ने उसे बेहद पसंद किया था. चलिए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर.

पहला नशा। और फ्रेंड्स 5:55 और 40 सेकंड हो चुके हैं और अब बारी आ गई धीरे से नंबर ट्रैक वन की। नंबर वन पर पहुंच चुके हैं। वैसे इस गाने को सुनकर आज भी थोड़ा सा पेट में तितलियां उड़ती हैं। एक्चुअल में ये ट्रैक था है उस दौर का ऐसा गाना, जब बात 90s की हो तो किंग खान यानी कि शाहरुख खान और उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर को कैसे आप भूल सकते हैं। सरसों के खेत हो, हाथ फैलाए राज और सिमरन हो, तो आप उन्हें बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। तो एक खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक रहा उस दौर में नंबर वन पर। तो चलिए करते हैं इसे इंजॉय और वापस आते हैं लेकर आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम शाम। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो विद आरजे अलका।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी स्वयं की संपत्ति और वैभव

राष्ट्र में कैसे सहायक हो सकता है। दानवीर भामाशाह जी का प्रेरणादायक व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुरादाबाद का चहुमुखी विकास हो रहा है और जिले ने पीतल नगरी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वहीं चित्रकूट में भामाशाह जयंती पर व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन राज्य कर विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर जनपद के शीर्ष करदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने व्यापार को और सुगम बनाने, नगर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और युवाओं के स्वरोजगार को लेकर प्रशासन की विभिन्न पहलों की जानकारी साझा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये कदम स्वस्थ भारत और अधिक डिजिटल के रूप में सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ वो वर्तमान में भारत के शीर्ष और विश्व रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मिर्जापुर में कल शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि 6 लोग झुलस गए। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: और हमेशा की तरह हो गया है आगाज आपके शामी अवध का, क्योंकि 6:07:06 हो चुके हैं दोस्तों, और इस खूबसूरत ट्रैक को एंजॉय करिए, क्योंकि इसके कुछ ही देर के बाद आपकी लखनऊ अपडेट शुरू होने वाली है। तो शहर के बारे में होंगी बहुत सारी जानकारियां खूबसूरत गानों के साथ। स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो विद RJL का।

वेल फ्रेंड्स, टाइम हो गया 6:09 और 28 सेकेंड, और इस वक्त शामी अवध में जो पहली जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा काम की है। काम की ऐसे है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस में, ट्रेन में कई जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हमें पता नहीं होता कि हम उस प्रॉब्लम को चलती बस में या चलती ट्रेन में कैसे सॉल्व करें। तो समस्या ये हो जाती है कि सही जानकारी का ना पता होना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। तो आपको बता दें आज की, अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो इसके दौरान यात्री अगर आप हैं उस वक्त, तो आप शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते हैं अगर आपको, आपके संग कोई भी दुर्घटना हो रही है, कोई भी आपको परेशानी हो रही है। तो रोडवेज बस में सफ़र करने के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो कंट्रोल रूम नंबर 8726-0058 और 08, फिर से एक बार नोट कर लें, 8726-0058-08 पर फ़ोन करके अपनी शिकायत को आप दर्ज करा

0: सकते हैं और अपनी शिकायत बस नंबर और डिपो के साथ आपको दर्ज करानी होगी। अगर आपके संग कोई भी असुविधा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उस ट्रैवलिंग के दौरान हो रही है तो।
1: This is something

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।

0: spine pediatric brain and spine surgery, PICU, EEG, MRI, genetic test, physio और speech therapy जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सिरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।

सो फ्रेंड्स, 6:19 हो चुके हैं, लगभग आधा घंटा निकल चुका है, लेकिन शामी अवध में अभी अपडेट का सिलसिला जारी है। जो लोग डाक अदालत का वेट करते हैं, उनके लिए है अगली जानकारी कि लखनऊ मंडल के उपभोक्ता जो हैं, उनकी डाक और पेंशन संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनके त्वरित निपटान के लिए 1 जुलाई को सुबह 11 बजे से न्यू हैदराबाद स्थित प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालय में डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शिकायत पत्र पर डाक अदालत लिखना अनिवार्य है। आपकी जो भी शिकायत है उसे एक पत्र पर लिखिए, उसे एक एनवेलप में डालिए और उस लिफाफे पर आपको शिकायत पत्र लिखना अनिवार्य है। और 1 जुलाई इसकी डेट निर्धारित है, समय होगा 11 बजे, न्यू हैदराबाद स्थित प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालय में ये डाक अदालत आयोजित की जाएगी। तो अगर आपकी कोई भी इस तरह की शिकायत है तो आप बिल्कुल इसका त्वरित निपटान जो है वो कर सकते हैं इस अदालत का लाभ उठाकर।

रेफरेंस 6:45 हो चुके हैं 107 FM पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवदार जेलका के साथ. वैसे जो गर्मी है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और मुझे लगता नहीं है कि मानसून को इतना लेट होना चाहिए था. अभी भी प्रॉपर जिस तरह से बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है. कुछ ज़िलों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लेकिन कुछ जगहों पर बारिश अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही. इनफैक्ट अपना लखनऊ भी पूरी तरह से भीगा नहीं है. अभी कुछ एरियाज़ में होती है, कुछ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है. और ये जो वेदर चेंज है ना, तेज़ धूप और दिन थोड़ा सा मौसम चेंज और हल्की फुल्की बूंदाबांदी, यही जो है वो इस तरह की इसका कारण है. एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सर्दी गर्मी और फिर फीवर का आना, गले में खराश का होना और सर्दी खांसी हो जाना, ये नेचुरल है, ये तो फेस करना ही पड़ेगा. लेकिन हाँ, इससे थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है. प्रॉपर अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अपने आप को कवर करके फ्रेंड्स ज़रूर रखिए, क्योंकि ये तपती धूप जो है वो आपको कब प्रभावित कर देगी, कब परेशान कर देगी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. और अगर आप कहीं बाहर हैं, अचानक वेदर चेंज हुआ और पानी बरसने लगा, तब तो फिर मुसीबत ही है. यानी थोड़ी देर पहले आप धूप में थे और थोड़ी देर के बाद आप वापस पानी में भीग रहे हैं. तो इस तरह से अपने बचाने के लिए अपने साथ हमेशा आप अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह गाड़ी में रखकर चलिए. अगर आप पब्लिक कन्वेंस से चल रहे हैं तो भी आप उसे कैरी करके चलें, क्योंकि वेदर कभी भी बदल सकता है. मानसून तो आ ही चुका है, बारिश कभी भी हो सकती है. तो इस तरह से धूप है तो धूप में भी खुद को बचाइए, और अगर बारिश हो जा रही है तो में भी आप खुद को बचाइए जरूर, क्योंकि सेहत है तो सब है.

राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो

0: पुष्पांजलि, हर सुबह 6 से 7 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
2: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेन।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: To main aapko sunana chahta hu us saal ka lokpriya geet. Ye. ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

वेल फ्रेंड्स, 6:33:48, वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। फिलहाल अभी शामी अवध में वक्त बाकी है, ताकि कुछ अपडेट्स मेरे पास हैं आप सभी के लिए आपको बताती चलूं। जैसे कि अभी प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको बसेस से संबंधित और बस में यात्रा के दौरान अगर आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो कैसे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, रोडवेज बस के बारे में मैंने आपको बताया था। और अभी एक जानकारी और है मेरे पास आपके लिए, ये सिटी बस यात्री सेवा के लिए है, और इसमें अगर सिटी बस का कोई भी यात्री जो समस्या में पड़ गया है तो आप कहां पर शिकायत कर सकते हैं, कहां पर आपको टोल फ्री नंबर कैसे उपलब्ध हो बता देते हैं। एसी सिटी बसों में सफर करने वाले जो भी डेली सफर करने वाले यात्री हैं, दैनिक यात्री हैं, उनको सिटी ट्रांसपोर्ट ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। सफर के दौरान किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो जो भी यात्री हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी शिकायत और सुझाव के लिए आप सीधे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब क्या है वो नंबर, वो भी आपको बता देते हैं। 1800-1805014, यानी कि 1800-1805014, ये वो टोल फ्री नंबर है जिस पर आप अपनी शिकायत, अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और डायरेक्टली आप बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उस सफर के दौरान फेस कर रहे हैं।

सो फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो है वो लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज से है। स्मार्ट क्लास होगी यहाँ पर। जी हाँ, अमीनाबाद इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास में होगी अब पढ़ाई और अगस्त तक अब प्रवेश हो सकेंगे। अमीनाबाद इंटर कॉलेज में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ लगभग 1200 सीटों पर छात्रों के संग संग छात्राओं के भी दाखिले अब होंगे। फिलहाल कॉलेज में 1000 विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे में बची 200 सीटों पर अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकता है। यानी कि ये खबर जो है वो आप तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी था। अगर आप इस कॉलेज में प्रवेश चाह रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं अगर प्रवेश चाह रही हैं तो। वैसे एक जानकारी और आपको दे दें कि कॉलेज की जो स्थापना है उसके 139 सालों के बाद बालिकाओं को भी प्रवेश इस कॉलेज में दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कॉलेज में, अमीनाबाद इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वक्त अभी भी है, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना आपको जुलाई के संग संग मिल सकता है एडमिशन के लिए।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सर

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: ओह गॉड,
0: स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।
4: बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। 100.7।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

ग्रुप से करा लेना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं तो ध्यान दीजिए कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट नहीं है उनकी जानकारी यूडाइस पोर्टल से आप ले सकते हैं। जी हां, ये जानना बेहद जरूरी है। यूडाइस पोर्टल के माध्यम से विद्यालय अपने नामांकित विद्यार्थियों का विवरण और MEBU अपडेट की स्थिति भी देख सकते हैं। तो इस पोर्टल के जरिए आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। अभिभावकों और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने 5 से लेकर 17 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए बायोमेट्रिक अपडेट की जो तिथि है वो 30 सितंबर 2026 तक निशुल्क कर दी है। तो ये डेट अभी 30 सितंबर तक के लिए रखी गई है जो कि अभी एक लंबा समय है। अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसका लाभ उठाइए।

सो फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो है वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI से है। अगर आपके बच्चे का आधार अपडेट नहीं है तो UDICE पोर्टल से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कैसे, आपको बता दें कि बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनिवार्य

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग। Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

0: फसलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूं।
0: महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

और इस खूबसूरत ट्रैक के साथ फिलहाल शामी अवध को वाइंड अप कर रही हूँ मैं आपकी आज दोस्त हल्का, क्योंकि कुछ ही देर में आपका एक और फेवरेट शो लेकर हाजिर होना है। भाई बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप, हेलो एफएम की बात कर रही हूँ मैं। जल्दी से अपनी उंगलियों को रेडी रखिए नंबर डायल करने के लिए 2238852 या 2238845।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज मुरादाबाद का चहुमुखी विकास हो रहा है और जिले ने पीतल नगरी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित

याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये फैसला वकीलों और डीट राइटर्स की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में देश भर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। मिर्जापुर में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए प्रदेश सरकार ने 2 निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने की मंजूरी दी। साथ ही बेहद कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की भी संस्तुति दे दी है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। रोहित वर्तमान में भारत के शीर्ष और विश्व रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते जाइए और मिलाते जाइए 2238-52 या 2238-45। जी हाँ, ये वो नंबर है जो आपको आपकी पसंद के ट्रैक को एंजॉय करा सकते हैं। 100.7 FM रेनबो पर शुरू हो गया है हेलो FM, आपके साथ है आपकी आरजे दोस्त अलका।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: तो फ्रेंड्स, 7:53 हो चुके हैं और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो देखते हैं ये शुरुआत किस मेल से हो रही है या फीमेल से। हेलो।
5: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
4: गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, शुरुआत एक फीमेल से हो गई। मैं यही गेस कर रही थी कि आज की शुरुआत प्रोग्राम की मेल से होती है या फीमेल से। तो ये प्यारी सी आवाज किसकी है, अपना नाम बताएं।
5: मेरा नाम है रोशनी रावत।
4: रोशनी, आप चंडीगढ़ में है। रोशनी, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में। और कैसी हैं आप?
5: मैम बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात हो रही तो बहुत ज्यादा ही अच्छी हो रही है, मेरी चौथी बार आपसे बात हो रही है।
4: हाँ जी रोशनी, मैंने आपको पहचान लिया। जी जी जी, और बताएं आज क्या है फरमाइश आपकी?
5: मैम मुझे एक एल्बम सॉन्ग सुनना है, आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन।
4: ओके,
5: अभिजीत भट्टाचार्य जी के बोले।
4: हाँ, और किसको सुनवाना चाहती हैं?
5: सुनाने है मुझे बबीता राव जी, सुन रहे हैं आपको गोसाईगंज लखनऊ से, गुलस्ता दीदी चंडीला से सुन रहे हैं, नीलू शर्मा दीदी रूपुर चंडीला से, साहिबा सभी लोग आपको भी मैम।
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं भी नाम लेती तो ये मतलब अंडरस्टूड है कि मेरे लिए तो है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच,
5: भूल गई मैं इतना।
4: कोई नहीं कोई नहीं। रोशनी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, और ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए और आपके सभी वो लोग जिन्हें आपने डेडिकेट किया है। थैंक यू, थैंक यू।

0: सो फ्रेंड्स, 7:15 हो चुके हैं, नेक्स्ट कॉलर लाइन पर है, चले करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: अमृता बोल रही हैं, दलागांव के टेंपरोवल से रूरक पास पड़ता है।
0: ओके रीता, बहुत बहुत वेलकम है आपका। कैसी हैं रीता?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: वेरी गुड, तो बताइए रीता, आज क्या सुनना चाहती हैं?
1: सैनिक फिल्म का गाना।
0: गाना कौन सा? ये फिल्म सैनिक का गाना नहीं है, ये फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ट्रैक है, लता जी की खूबसूरत आवाज में। लेकिन गाना आपको हम यही सुनवाएंगे। और बताइए, किसी को सुनवाना चाहती हैं ये गाना?
1: हाँ, मैं सहेली है, सामने दुआ है, मैं डर के बस मैं सहेली है, पक्षी ना मेरे बगल में, सहेली रजनी, बस यही दूर सहेली है।
0: दोनों फ्रेंड्स को आप सुनवाना चाहती हैं?

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ा

0: जिम्बाब्वे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
1: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
0: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की सीबीआई की जांच की मांग भी करेगा।
2: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब जो कि भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
3: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
4: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
5: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जियो जारी किए गए 4/6/2026 को इस जियो में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम स्थिति बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जियो, उसको हम निरस्त करते हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के

0: रूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के ये सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से यूपीटीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
1: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें दो लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, और यहाँ से रोहित यादव, दो लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ कुछ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। और अब वक्त हो गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अगली अपडेट का।
2: Of a stoppage time winner, Canada will meet Netherlands or Morocco next.
3: Given Morocco's last 6 years, they're a modern giant, and I think that given the success of the Dutch national team for what feels like centuries, that that's a traditional giant. So now we're at that phase of the tournament, and I feel like it's a free hit, and we're going to go after it and do everything we can to see if we can find a way to get a win.
2: Defeat for South Africa was the final match in charge for retiring head coach Hugo Broos. He offered his assessment of where South African football needs to improve.
4: Modern football is more than technique. Modern football is power, is speed. I mean, you don't have it in your team and you play against a team who has it.

0: वेलकम अगेन फ्रेंड्स, 7:32:40 हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का हेलो FM RJL का के साथ, और हमारे साथ साथ निभाने के लिए इस वक्त कॉलर जुड़ चुके हैं। चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: और ये दिल मुस्कुराया, आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला याद आया। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। गाते गुनगुनाती ये आवाज किसकी है भाई?
1: गाती गुनगुनाती आवाज है सत्यम कुमार की, ग्राम कैंसरगंज भराई से। आज बहुत दिनों के बाद मेरी आवाज रेडियो तक पहुंची है।
0: तभी आपने सोचा कि शुरुआत ही हम गुनगुनाने से कर लेते हैं, है ना?
1: जी मैम, दरअसल मेरे रेडियो में भी प्रॉब्लम आ गई थी और फोन में भी आ गई थी।
0: ओके।
1: तो गूगल पर सुन रहे थे। जी
0: ओके,
1: और
0: ओके।
1: अब फोन भी सही हो गया है।
0: ओके, तभी आपने इतनी प्यारा सा जो है गाना सुना दिया हमें पहले। ये तो बनता तो है कि आपने हमें सुनाया तो हम भी आपको सुनवाएं जरूर। तो बताइए आज क्या सुनेंगे आप?
1: पहले गाना बता दूंगा, फिर पहले डेडिकेट कर दूं।
0: पहले गाना बताना पड़ेगा, तभी तो डेडिकेशन बताएंगे आप।
1: ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर, तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
0: भाई वाह, आपने मौका छोड़ा नहीं दोबारा गुनगुनाने का भी, है ना सत्यम? That's very good। अब बताइए कि किसको आप सुनवाना चाहती हैं गाना?
1: मैम अपने दोस्तों को। मैंने सोचा था मैम कि मेरे दोस्त मुझे भूल चुके होंगे ज्यादा दिन तक आवाज न सुनने पर, लेकिन वो लोग बराबर मेरा नाम लखीमपुर से है बहन समापद्दीन अंसारी, सॉरी सीतापुर से है समापद्दीन अंसारी, लखीमपुर से शायदा अंसारी, बाराबंकी से बाबू अंसारी भाई है, गुन्नाव से श्री प्रकाश दादा है, और रायबरेली से रिंकी पिंकी बहन है, लखनऊ से बबलू यादव भाई है, और सभी सुनने वालों को और आपको
0: थैंक यू सो मच सत्यम, और हम सभी की तरफ से आपको भी।

0: वेरी नाइस ट्रैक। और 7:39:14 हो चुके हैं दोस्तों, और हमारे अगले जो कॉलर है वो लाइन पर आ चुके हैं। चलिए उनसे करते हैं बात, उन्हें ज्वाइन करते हैं। हेलो।
1: जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो कोई गम न करो, बस FM रेनबो लखनऊ ट्यून करो और बजाते रहो।
0: भाई वाह, क्या दिल जीता है आपने। खूबसूरत शायरी, और मतलब कोई गाना गुनगुनाता है तो कोई शायराना अंदाज में जो शुरुआत करता है, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का इस तरह से जुड़े रहना FM रेनबो के साथ। तो बताएं ये कौन बोल रहे हैं?
1: मैम रजनीश चौरसिया, नवाबों के शहर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से।
0: रजनीश बहुत अच्छी शायरी बोली आपने, मतलब दिल को छू गई बिल्कुल। और थैंक यू सो मच रजनीश, वेलकम है आपका प्रोग्राम में। और आज क्या है आपकी पसंद बताएं?
1: मैम फिल्म है साजन, और इसका बहुत खूबसूरत गाना है तुमसे मिलने की तमन्ना है।
0: वैसे साजन
1: प्रिय लिसनर है सभी के लिए।
0: ओके, वैसे साजन फिल्म आपने जो चूज किया ना, इसके सारे गाने लाजवाब है, लाजवाब। तो सभी लिसनर्स के लिए आपने डेडिकेट किया है ये ट्रैक, और कुछ कहना चाहेंगे रजनीश?
1: जी मैम, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, सुनते रहें FM रेनबो।
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सो फ्रेंड्स, 7:45 हो चुके हैं, अभी भी प्रोग्राम में कुछ समय हमारे पास बाकी है और अपने अगले कॉलर से करते हैं बात कि क्या है उनकी फरमाइश। हेलो,
5: हेलो मैम,
4: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। ओके मौर्य जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आने की कोशिश करें।
5: अच्छा जी मैम।
4: जी मौर्य जी, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
5: अगर जिंदगी
4: संग। ओके, फ्रॉम द मूवी बलमा। किसी को सुनवाना चाहते हैं ये गाना?

0: 7:50 मिनट हो चुके हैं, अगले कॉलर लाइन पर आ चुके हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हमारा नाम वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ब्लॉक खरगांव, जिला सीतापुर।
0: सीतापुर से वकील अहमद बोल रहे हैं। वकील जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में।
1: आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे, आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले का रहमो करम है।
0: बिल्कुल, और होना भी चाहिए। आज बताइए कि कैसा, कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं आप?
1: मौसम हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है, आज हमारे यहाँ बारिश हुई थी रात में जो है, और थोड़ी गर्मी से रात मिली है, और आगे बारिश होने की संभावना है।
0: बिल्कुल संभावना है,
1: बारिश हो, सब किसान जो आदमी है गन्ने में पानी लग जाए, और जो है सब आराम, गर्मी से भी राहत मिलेगी,
0: गर्मी से राहत मिले, क्योंकि गर्म कुछ ज्यादा ही इस बार हो रही है।
1: बहुत गर्म हो रहा
0: है, सभी जगह है, सभी जगह है, मतलब अब बारिश का बहुत
1: बेसब्री, सब लोगों की बहुत अच्छी लगती है हमको।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। गाना बताएं, कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाने के बोल रहेंगे तू निकला छुपा रुस्तम।
0: ओके, और किसको सुनवाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल लीजिए।
1: जैसे साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, तमा परमीन, गुलता सिद्दीकी, अहमद नवाब, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी,
0: और आपको भी
1: गाना डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू,
1: और आपको खास कर
0: थैंक यू।

0: सो फ्रेंड्स, 7:54 हो चुके हैं और वक्त हो गया है आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉलर को लाइन पर लेने का, तो चलिए करते हैं उनका वेलकम। हेलो
1: हेलो दीदी को राज।
0: हेलो
1: हेलो दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
0: केसरी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया दीदी, और आप कैसे हो?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। काफी दिन बाद आपसे बात हो पा रही है।
1: हाँ दीदी, हाँ लगभग 1-2 महीने का अंतराल हो गया।
0: तो बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे केसरी जी?
1: प्रेम प्रतिज्ञा का सुनवा दीजिएगा दीदी।
0: कौन सा?
1: कभी कम नहीं करना।
0: ओके, और डेडिकेशन
1: कर लेना।
0: किसको आप सुनवाना चाहते हैं गाना?
1: आपको केंद्र से ऋचा दीदी को मेरा राधे राधे बोलिएगा।
0: बिल्कुल।
1: और राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, और जितने लाइव सुन रहे हैं सबके लिए रहेगा। सारून अंसारी जी भी सुन रहे हैं।
0: सभी सभी को डेडिकेट। बहुत खूबसूरत ट्रैक, चलिए थैंक यू सो मच। और आपको भी डेडिकेट ये ट्रैक, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केसरी जी।
1: जी सेम टू यू दीदी, राधे।
0: थैंक यू। और इस खूबसूरत गाने के साथ प्रोग्राम हेलो एफएम को यहीं पर वाइंड अप करती है आपकी रेडियो साथी अलका। और अब वादा ये जरूर करूंगी आपसे कि 100.7 एफएम रेनबो के इस प्लेटफॉर्म पर आपसे होगी जल्दी मुलाकात, खूबसूरत गानों के साथ, खूबसूरत बातों के साथ। स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देश भर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीव्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टैंप और न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने बताया कि ये फैसला वकीलों और डीड राइटर्स की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन, उत्पादन वृद्धि तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री सचान ने पोल्ट्री उद्योग से ज्यादा लोगों को जोड़ने और इस उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले अत्याधुनिक एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का निर्माण इस वर्ष सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण गोरखपुर के तालकंदला में 47 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से 10 एकड़

क्षेत्रफल में किया जा रहा है। ये एनसीसी ट्रेनिंग अकेडमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नया गौरव बनेगी। एनसीसी ग्रुप गोरखपुर प्रदेश के 11 पूर्वी जिलों का प्रतिनिधित्व करता है। कुशीनगर और देवरिया में दानवीर भामाशाह जयंती पर व्यापारिक कल्याण दिवस 2026 पर आज जनपद के शीर्ष करदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं अलीगढ़ में स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दो जानू हुए तो जो कासे में उतरा वही इस तरह लाए हैं। हम आंखों के भरोसे रहने वाले चांदनी नजरों में उतार लाए हैं। रातों की चमक को घटाने वाली कोई बात नहीं करेंगे आज। आओ सुबह को सीधा करो, हम आबशार लाए हैं।

ये अंदाज ये फरमा रवानी क्या कहिए, दरवेशों के दिलों पर आपकी हुक्मरानी क्या कहिए। रफाकत चंद रोजा और दिलों के घाव जिंदगी भर के, मरज ता कयामत और चार दिनों की जिंदगानी क्या कहिए।

कलम उठाओ तो जिंदगी को जीने के लिए, कलम उठाओ तो जिंदगी को जीने के लिए, हिसाब करने के लिए, जख्म सीने के लिए, सारे जमाने की नेमतें एक तरफ कर सको तो कलम उठाओ, वरना कारोबार बहुत है, कुछ और करते हैं चलो जीने के लिए। कलम उठाओ तो जिंदगी को जीने के लिए।

कौन क्या कहेगा सबका हिसाब रखते हैं, वो अपने सवाबों की हमारे गुनाहों की किताब रखते हैं, वो रखते हैं अपना चेहरा सरे रात भी धूप की ओर, वही अकेले तो हैं जो अपनी आंखों में आफताब रखते हैं।

हजारों बार कहकर भी इसे पाया जा नहीं सकता। बेतरह बारिशों से भी सहरा की तशनगी को बुझाया जा नहीं सकता। हर कोहसार में है कहीं छिपकर बैठी कोई गंगा, मगर मशीनों की बेहिस चीखों में उसे यहां तक लाया जा नहीं सकता।

गई शामों के किस्से अपने लहजे में समेटे, अब भी घूमते हैं हम। बिखर कर टूट कर भी सभी बच जाएं, रास्ता अब भी ढूंढते हैं हम। जिसे कह दें वही तो दूर तक दिखता नहीं है फिर। शिकवे छिपा कर मुस्कुरा कर न बचें,

किसी रोज हम साथ न होंगे तो किसी पन्ने पर तलाशोगे हमें, पुरानी डायरी की जिल्द नोचोगे, किताबों में रिसालों के पन्ने पर तलाशोगे हमें, किसी बहाने से खोजोगे हर सिमत, मगर फिर आसमां में टाक कर नजरें किसी सितारे के गिरने पर तलाशोगे हमें। शुक्राना महफिल गजल आबशार में हमारा साथ निभाने के लिए।

0: 8:44 अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज राष्ट्र ने और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं।

0: सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक

0: की असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: Applications launch is going to play a very important role.
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल

0: है और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है,
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, तिपहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधे उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में

0: वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक।
4: है सुना रही आकाशवाणी

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मंडे की रात शहर गिरफ्तार और गानों का तगड़े वाला वार। आज कोई डरावनी सिर्फ वो बीट्स जो दिन भर की थकान को एक झटके में मिटा दें। जिंदगी भाग रही है तो क्यों हम ठहरे और हम आगे बढ़े तेज म्यूजिक के साथ, अपनी सारी फिक्रें कहीं पीछे छोड़ करके सीधे मेन मुद्दे पर लैंड करते हैं। आज कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ वो रफ्तार जो सीधे दिल में उतर जाए। तैयार हो जाइए क्योंकि अब मैं म्यूजिक नहीं, एक पूरा एहसास बजने वाला है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ वहां जो है चैनल्स का बॉस यानी 100.7 FM रेनबो। प्रोग्राम पॉप टाइम शुरू हो चुका है।

कुछ सुने सिर्फ कानों के लिए नहीं होती, वो सीधा हमारे अंदर के उस शोर को पकड़ करके डांस कराने आती है जिसे हम अक्सर किसी से कह नहीं पाते। जब बीट ड्रॉप होती है तो दिमाग नहीं फिर दिल फैसला करता है। तेज कानों का यही तो मैजिक है, ये आपको सोचने का टाइम नहीं देते, बस फील करवाते हैं। अगला गाना बिल्कुल उसी तेज रफ्तार से आ रहा है आपके पास, सुन करके अगर नाचने का दिल करे तो हमें लिख के बताइएगा भी कि क्या क्या हुआ दिल में। हैं जी, हाँ जी।

0: मंडे नाइट यानी शहर की खाली होती सड़कों में भी काम को लेकर के एक बोझ सा जनाई देता है। गाड़ी में बजता एक हाई स्पीड ट्रैक आपकी लॉन्ग ड्राइव को बेहद सुंदर, खूबसूरत, दिल फरेब, दिलकश बना सकता है। तो उसके लिए बस अपने सेट्स की आवाज को थोड़ा सा उड़ाइए और ये वाला गाना साथ साथ थिरकिए और गुनगुनाइए।
1: ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी।

विजयपाल यादव जी ने ललहुआ खीरी से मैसेज भेजा है। आबशार बहुत ही अच्छा लगा। आबशार में आप गजल के पहले जो शेर सुनाते थे तो हुजूर उसको शेर न कहिए, वो क्विक बंदी है, कहीं से भी शेर है ही नहीं वो। पर आपको अच्छा लगा, मधुर आवाज में बहुत ही अच्छा लगता है। पॉप टाइम कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है, सभी परिवार के साथ कार्यक्रम सुन रहा हूँ, प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लग रही है। ये लिखा है विजयपाल यादव, बबलू यादव, राजेश कुमार, ग्राम वपूस, ललहुआ, जिला खीरी से बहुत प्यारी सी मेल और ढेर सारी और भी बातें, एक कविता भी लिखी इन्होंने। श्री गणेशाय नमः। पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, रामचरण, प्रजापति, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, धीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। आपका कार्यक्रम सुपर हिट है, बहुत ही अच्छा लगता है, फरमाइश ये है। तो ये वाले प्रोग्राम में तो फरमाइशी गाने नए न बजते हैं जी। एक और रिक्वेस्ट फॉर सॉन्ग है कमांडर यादव जी की, काइंडली प्ले माई सॉन्ग। तो इस वाले प्रोग्राम में तो नहीं, लेकिन फिर कभी लौटे तो आपका गाना जरूर प्ले करेंगे। विलेज एंड पोस्ट एट कोहना लखीमपुर खीरी से बड़े दिनों बाद, गुड इवनिंग डियर नितिन ब्रो, व्हाट्स अप। तो मैं बहुत अच्छा हूँ आरती, आप कैसी हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। वी वार्मली वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम एंड थैंक यू फॉर योर एक्सलेंट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच आरती, शुरुआत में ही आपने लिख कर भेज दिया है, अब प्रोग्राम तो अच्छा होना चाहिए ना। मैं सौरभ प्रजापति, उत्तर प्रदेश, जिला अमेठी, ग्राम गौतमपुर। नमस्ते सर जी, एंट्री बोले तो वाह तबाही, मैं तो

तो बस गर्मी हाल बेहाल कर रही है। सच में गर्मी बहुत बुरा हाल कर रही है। है नहीं तहजीब में मेरे कि तुम्हें बदनाम करूं, कि रात को दिन और दिन को रात करूं। ये जो तुम मेरे फलसफे को दोष देते हो कि दिल चाहता है मुखातिब हूं तुमसे, पर मलाल है कि सच बयान करूं तो कैसे बयान करूं। दिल का टेलीफोन उठाइए और जो बातें आपको बतानी है बता दीजिए, हमसे नहीं, हम तो बस मेल पे ही अवेलेबल हैं इस वक्त। जिनसे आपको अपने दिल का सच बयां करना है वो दिल के टेलीफोन से हो जाना चाहिए हुजूर।

हेलो एंड गुड इवनिंग नितिन भाई, ये लिखकर भेजा है हमें गुलाबसा सिद्दीकी जी ने। मैं ठीक हूँ, आपने हमसे पूछा है तो मैंने आपको बता दिया। संडीला से आपने ये नहीं लिखा है कि आप कैसी हैं, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आप इस समय छत पर हैं, हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रोशनी रावत, बबीता राव, नीलू शर्मा, निशा अंसारी, ममता गौतम, महक अंसारी, सब मिलकर सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो हम बहुत खुश हैं आपकी इस बात से और थैंक यू सो मच। बाकी सबसे भी कहिए कि वो भी प्यारी सी एक मेल लिखकर भेज दें हमारे।

पास तक, ताकि हमें यकीन भी हो जाए कि सब लोग मिलकर सुन रहे हैं। विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सरजी को गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, सादर प्रणाम। आपका अंदाज, आपकी प्रस्तुति सुपर हिट रहती है, अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका। कुछ मेरे दोस्त हैं आजाद सिमरी से, ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, क्षमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, संजय अतरौली से, ममता हरदोई से, सब लोग साथ में मिलकर सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये बताइए ना। राजकमल यादव जी लिखते हैं, हमारे यहाँ भतीजे का जन्म हुआ है तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एफएम की पूरी टीम की ओर से।

recorded message, eh?

अनुज, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग। आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। और ये गाना सुनकर के काहे सब लोगों को दुख देना चाहते हो? गर्मी तो ऐसे ही बहुत ज्यादा है। वकील अहमद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाने अच्छे बज रहे हैं। अर्ज है, वो गर्मी में भी सजा देता है, वो सर्दी में भी सजा देता है, टंकी का पानी हर मौसम में दगा देता है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, अहमद नवाब, रिंकी पिंकी, सबका नाम आपने ले लिया है। अब इन लोगों से ये भी बोलिए, मेल भी करें जिन लोगों ने अभी तक मेल नहीं भेजा है। जिंदगी ने सिखाया है कि हर खुशी आसान नहीं होती, कुछ मुस्कुराहटें कमानी पड़ती हैं और कुछ आंसू को छिपाना पड़ता है। वक्त के साथ सब बदल गया, ख्वाहिशें बढ़ गईं, सुकून कम हो गया, हम जीने लगे सपनों के पीछे और जीना ही कहीं पीछे रह गया। आनंद तिवारी लिखते हैं, दारू कुया मल्लावा हरदोई उत्तर प्रदेश से। प्रोग्राम के आगे इन्होंने 100 लिख के भेजा, इसका क्या मतलब है इन्हीं से पूछिए। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नितिन भैया जी। ब्रजेश सिंह, दीपू, इटहुआ, कैसरगंज, बहराइच से लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण जबरदस्त है, साथ में मीठी सी आवाज सुनकर मन एकदम मस्त मलंग हो जाता है। मोहम्मद अजान साहब, आपने जो लिखा है ना, ये काले रंग में एकदम हल्के कलर में जो आपने लिख के भेजा, हमें बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा, चश्मा लगाए हम फिर भी नहीं दिख रहा है। मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से, सुन रहा हूँ प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं, ऐसा लिख के इन्होंने हमें भेजा है तो हम मान लेते हैं कि ये बात सच भी है। वैभव प्रकाश सिंह, सुंदर सी अपनी मेल में एक तस्वीर भेजकर कहते हैं, बेवजह खुश रहिए, वजह बहुत महंगी है। ये लिखने के साथ ही उन्होंने हमें वजह दे दी है कि हम एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए प्ले कर दें और जब वापस लौटेंगे और ढेर सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन आपने अगर हमें अभी तक मेल नहीं भेजी तो काहे का इंतजार कर रहे हैं, बताइए।

रे भाई मंडे तो बस हफ्ते की शुरुआत से। आज जो हमने रफ्तार पकड़ी से ना पूरा हफ्ता इसी एटीट्यूड गेलना चलेगा। अपना तो उसूल से काम हो या म्यूजिक, दोनों में कोई कसर ना छोड़ते। ये जो अगला गाना बजाने वाला से, यो उसी धाकड़ और बेखौफ हौसले के नाम जो मारसा ने कदे रुकन नहीं देता। अपनी हिम्मत ने बुलंद रखो और सुनते रहो एफएम रेनबो 100.7 तड़कन लखनऊ की।

जैसे जैसे ही सुमार की संझिया गहिर होत बा, केहू आपन बहुत याद आवत बना। काम धंधा के बीचे में जब अचानक से कोनो इंसान कि दिल के बीच में ख्याल आ जाला, तो दिल के धड़कन अपने आप ही तेज हो जाला। पाप टाइम के अगला गीत तो ही बेकरारी या मीट मीट प्यार के नाम बा। उकरा के याद करी जरा दिल के बेहद करीब बा, और मुस्कात रही कि इह एफएम रेनबो 100.7 धड़कन लखनऊ के।

नाजिम राइन दिल्ली से सुन रहे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आपको। नाजिम कुछ अपने बारे में भी लिखते, हमें तो लगता है आपसे हमारी पहली मुलाकात है। हेलो नितिन भाई, आम जीशान खान संडीला से। ये प्रोग्राम मुझे सबसे अच्छा लगता है और मैं इस वक्त सऊदी अरब में सुन रहा हूँ आपको। आप गाने बहुत अच्छे बजाते हो। कुछ नाम है जैसे मेरी पत्नी गुलफ्सा सिद्दीकी, हसन खान, जिया खान, नूर अक्सा, तो सबका नाम हमने ले लिया है जीशान जी। अच्छा, आप सबसे एक सवाल है, आप में से कितने लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, लेफ्टी हैं? और ये बताइए कि कुछ परेशानी होती है क्या लेफ्टी लोगों को? हमको नहीं पता बिल्कुल भी। मेरी भांजी का नाम पलक, मेरी छोटी बहन का नाम पल्लवी, मेरे चाचा जी का नाम है श्री राम नरेश। हम सब लोग बैठे FM सुन रहे हैं, सॉन्ग अच्छे बज रहे हैं। सर जी, मेल पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबुरिया पोस्ट बरौली मालिक सिला पाराबंकी से, और नाम है इनका शिवराज, अपना ही नाम नहीं लिखें, बाकी सबका लिखें। नाम मोइनुद्दीन कोडरी खैराबाद सीतापुर से सुन रहे हैं। पहले तो प्यार भरा नमस्कार, बहुत धमाकेदार प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त गर्मी लग रही है। सच है, गर्मी तो बहुत तगड़ी है। तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से, बहुत दिनों के बाद मेल कर रहा हूँ FM रेनबो पे। क्यों बहुत दिनों बाद क्यों कर रहे हैं? रोज़ किया कीजिए ना मेल, पर भी था और बिजी भी थे। मेरा लास्ट मेल 22 जून को था, बट आई हैव कम बैक। आप गीत बहुत अच्छे प्ले करते हैं, थैंक यू तालिब। और अब आप कम बैक कर चुके हैं तो अब वापस ना जाइएगा। टाइगर पूर्णिमा रूपपुर चंदेला से, नितिन भैया हो या निखिल भैया, नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है। प्रोग्राम बहुत बिंदास लग रहा है, मेरी सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। रोशनी, बबीता, स्नेहा, सोनी, सारा, पीहू, गुलफ्सा दीदी, वंदना शुक्ला दीदी, सबको नमस्कार इन्होंने कह दिया है। और नाम में कन्फ्यूजन होती है इसलिए हमने वक्त बांट रखा है। रोशनी कहती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गर्दा उड़ाने की कोशिश है ना? गर्दा उड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं, गर्दा उड़ाने से हमको छींक बहुत आती है तो हम गर्दा बिल्कुल नहीं उड़ाते। बबीता राम

0: साहब, नीलू दीदी, गुलाबसा दीदी, शाजिया जी, साहिबा अंसारी, यासिर भाई, महेंद्र, देपन भाई, तालिब भाई, आसिफ भाई जी को मेरा सलाम बोल दीजिए। ये रोशनी ने लिखा है, हम सलाम बोल दिए, चंडीगढ़ से आप सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेल्स ढेर सारे हैं, सारे मेल पढ़ दूं। गुड इवनिंग प्रिया आरजे नितिन, सर जी आप कैसे हैं? सर प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत सुपर हिट सर, एकदम से दिल को सुकून मिल रहा है आज सर, ये लिखा है इन्होंने। अब सबने इतनी तारीफ लिख दी है, हमारा जो पांव है वो धरती से 4 अंगुल ऊपर हो चुका है, तो हमें नीचे लाने के लिए कोई बुराई भी लिख के भेजेगा, ज़रूर कोई ना कोई तो भेजेगा ही, और हम पढ़ के आपको बताएंगे कि क्या बुरा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये तो सब आपने बता दिया है।
1: और लगा

मुनेश कुमार आज गांव भानपुर हरौआ जिला रखीमपुर खीरी आरजे जी को शुभरतिया कार्यक्रम रेनबो पॉप टाइम हर कार्यक्रम बेमिसाल सुनते सुनते हो गए कई साल और लगता है बारिश होने वाली है आपके वहां मौसम कैसा है मैम तो कौन सी मैम को लिख के भेजे थे और ये रात में फिर से भेज दियो हैं और पॉप की स्पेलिंग POP होती है पॉपुलर सॉन्ग जो होते हैं ना उन्हें पॉप भी कहा जाता है और वो गाने जब बजते हैं तो उस वक्त को कहते हैं पॉप टाइम फिल वक्त यहाँ पे जो मौसम है उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हम स्टूडियो के अंदर अंदर मौसम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा तो आप जो बता रहे हैं उसी से हमको पता लग रहा है कि कैसा मौसम है और मैम वाली मेल ये रात में काहे भेज रहे हो जी हैं हमको भेजो ना मेल सुन रहे हो ना प्रोग्राम आप पता बेली का

गुसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश। सर जी, हमें आपका गजलों का आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। पॉप टाइम भी मस्त लग रहा है, एकदम झक्कास। आपका प्रोग्राम विनीता दी, रजनीश भाई, महेंद्र भाई राजस्थान से, रोशनी रावत जी, गुलफसा जी, आसिफ भाई, शाजिया अंसारी, साहिबा जी के साथ सुन रहे हैं। बेहतरीन प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। और आप जो भोजपुरी में बात कर रहे हैं वो भी बहुत मस्त लग रहा है। ईमेल शामिल करने के लिए तह ए दिल से शुक्रिया। बबीता राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी सी मेल हमें लिख के आपने जो भेजी है ना, इसके लिए हमें दिल से आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू, हमने बोल दिया है आपको। साबिर साहब लिखते हैं, कानपुर से प्रोग्राम मस्त लग रहा है। नीतीश सर कानपुर से लाइव सुन रहे हैं। मेरे दोनों भाइयों के नाम ले लीजिएगा। आपने हमारे भाई का नाम ले लिया, हम भी आपके भाई का नाम ले लेते हैं। आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, तो नाम ले लिए हैं। और अमन लिखती हैं, हेलो डियर नितिन भाई, कैसे हैं आप? लो मैं भी आ गई। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो स्वागत तो हम कर लिए हैं। पॉप टाइम की क्या बात करूँ, डांस पसंद की क्या बात है, स्वैग से स्वागत। मुझे ऐसा लग रहा है सारी मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट लेकर आए, बहुत मज़ा आ रहा है। सुपर

आपने हमारे भाई का नाम ले लिया, हम भी आपके भाई का नाम ले लेते हैं। आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, तो नाम ले लिए हैं। और अमल लिखती हैं, हेलो डियर नितिन भाई, कैसे हैं आप? लो मैं भी आ गई, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो स्वागत तो हम कर लिए हैं, पॉप टाइम की क्या बात करूँ, डांस पसंद की क्या बात है, स्वैग से स्वागत। मुझे ऐसा लग रहा है सारी मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट लेकर आए, बहुत मज़ा आ रहा है, सुपर सॉन्ग्स। आज बहुत खूबसूरत बात हुई, तो बात ये हुई कि इन्होंने ठंडा ठंडा शरबत पिया और उसे लेकर के चली गई छत से सूखते हुए कपड़े लाने के लिए, और वहाँ पर इन्होंने बाउंड्री पर अपने शरबत का गिलास रख दिया और एक चिड़िया आई और उसने भी शरबत पी। बहुत अच्छा किया आपने फ़ोटो नहीं ली, क्योंकि चिड़िया फिर उड़ जाती, और आपने जो आँखों से उसे देखा है ना, ये आपकी मेमोरी में हमेशा रहेगा। तस्वीर में होता है तो कुछ दिनों में धुंधला पड़ जाता है, तो बहुत अच्छा किया आपने कि चिड़िया के लिए ये अनजाने में ही आपने पानी रखा, मीठा पानी, और उसने पिया। आप लोग भी अगर चिड़िया के लिए पानी रख सकते हैं तो रखिए, दाना रख सकते हैं दाना भी रखिए। अमन रखती हैं दाना पानी, ये ऐसा उन्होंने हमें बताया है। मेल तो शामिल कर लिए शिवराज जी, अब एक ही मेल कितनी बार हम शामिल कर लिए हुजूर? हाँ, तो आपकी जो बातें हैं वो सारे मेल्स हम शामिल कर रहे हैं, और सबके सबके मेल्स शामिल करने का वादा करके आए हैं। मौसम अगर अच्छा है तो थोड़ा सा शेकी शेकी हो जाइए।

कि अपनी पसंद का गाना सुनवा दें, क्योंकि गाना जो है वो आपकी पसंद का हो तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारी पसंद का हो तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है। लेकिन पॉप टाइम तो आरजेस की चॉइस पर ही होता है, इसलिए इस समय थोड़े से फरमाइशी वाले जो गाने होते हैं हम नहीं प्ले कर पाते, उसके लिए माजरत जिन लोगों ने भी हमसे फरमाइशी गाने के बारे में पूछा था। गुलफसन लिखती हैं कि नितिन भाई मैं तो नहीं हूँ, मेरे अब्बू लेफ्ट हैंड से ही सारे काम करते हैं, तो एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे सवाल को ज़रा सी तरह दी है और जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफसन आपका, हमें प्यार से इतनी मोहब्बत से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। क्या परेशानी होती वो तो आप नहीं बता सकती हैं, लेकिन आपने बताया, हमारे सवाल का जवाब दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप शो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुझे सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं, ये लिखा है हमें वारिस अली खान साहब ने संजय नगर ऐशबाग से। आप सच बोलने की ठान चुके हैं तो फिर हर कदम पर किसी दुश्मन से उलझना होगा। वो जो कहते हैं कि बदलेगा ये दौरे जुल्मत, उनको पहले तो खुद अपने को बदलना होगा। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, आप बहुत अच्छे हैं, आपको हम सऊदी अरब से रोज़ सुनते हैं, मेरा घर कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है और मैं डेडिकेट करना चाहूँगा आपको और हमारी प्यारी बहनों को, रिंकी और पिंकी रायबरेली से। अगर सुन रही हैं प्रोग्राम तो आपको एक गाना नहीं पूरा प्रोग्राम डेडिकेट किया है अजान साहब ने। और इनके साथ में कौन लिखा है ये वाली मेल, मोहम्मद नौशाद ने लिखी है। तो ये सारे जो नाम हम पढ़ रहे हैं ना, ये इस वजह से हो गया है क्योंकि कहीं नाम कुछ और होता है मेल में और अंदर कुछ और नाम होता है। कोई बात नहीं है मुनेश जी, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी होती है, आपसे भी होती, कोई बात नहीं। आपके दिल की गहराई में डूबा था तभी याद आया मुझे, तैरना नहीं आता। ये वाह वाह वाह भी लिख कर भेजा है तालिब ने, ये बिल्कुल आप हमारी तरह ही शायरी करते हैं, न किया कीजिए, है ना। हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं तो हम अब नहीं करते हैं। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए और उसके बाद थोड़ी सी और बातें होंगी अगर मौका रहेगा तो, या शायद नहीं रहेगा मौका तो फिर बातें नहीं होंगी, तो यहीं से कहना पड़ेगा। पॉप टाइम में बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी मेल्स, अपने दिल की बातें हमसे शेयर करने के लिए। पॉप टाइम की स्पेलिंग POPTIME है, तो ये याद रखिएगा सब लोग, और सब्जेक्ट में ज़रूर लिखा कीजिए। कुछ लोग अभी भी रेनबो कैफ़े वाले मेल भेज देते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। इतनी मेहनत से आरजीज यहाँ चिल्ला चिल्ला के आपको बताते हैं पॉप टाइम हो गया, पॉप टाइम शुरू हो गया, पॉप टाइम शुरू हो गया, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। और आप सब ने इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सजी धजी हुई मेल समय भेजी, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कहीं जाइएगा मत, ये वाला प्रोग्राम पॉप टाइम आखिरी सॉन्ग के साथ यहीं पर ठहरेगा, उसके बाद एक समाचार और फिर वापस लौटेंगे तो आपको सुनाएंगे ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत कहाँ रजनीगंधा में, बस यहाँ। ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

पूजा ने हमें लिख के भेजा है, पर पूजा आपके नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें, ये पूजा पल पल है या पूजा पाल पाल है, क्योंकि दो बार लिखा है तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है। इस कंफ्यूजन को अगली बार मिटा दीजिएगा। बिठौली लखनऊ से प्रोग्राम सुन रही हैं इस टाइम, उनके साथ में निशा और रोशनी भी प्रोग्राम सुन रही हैं। अपनी पसंद का सॉन्ग सुनवा दीजिए, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच पूजा ये लिखने के लिए।

नमस्कार, रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 365 करोड़ रुपए की 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के उत्तर प्रदेश में विकास भी है, विरासत भी है। पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तानी होती थी, इसलिए पहले पैसा कब्रिस्तान में लगता था, अब मंदिरों के विकास में लगता है। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ इसके उदाहरण हैं और अब मथुरा की बारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का विजन विकास नहीं, इनका विजन परिवार का विकास है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर का 10वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 37 मेधावियों को स्वर्ण पदक तथा 25 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को सीख देते हुए कहा कि जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लो, लेकिन संस्कार नहीं भूलने चाहिए। आज हम पूरे विश्व को दिशा दिखा रहे हैं। मैनपुरी में दानवीर भामाशाह की जयंती पर कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वाधिक राज्य कर जमा करने वाले और समाज में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टूल किट और ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। बस्ती जनपद में संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला विकास समन्वय एवं सभागार में निगरानी समिति की बैठक सांसद रामप्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के हित में जो भी योजनाएं हैं उससे किसानों को 100% लाभ दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: किसी तरह से वैसा हो जाने से बचाते हुए बीता जैसा हम सबको देख करके बस जज करते हैं, जहां सब किसी और के बगीचे की खुशबू पर मर मिट रहे थे, वहां खुद के लगाए पौधों को धूप की आग में कुम्हलाने से बचाते हुए जब लग रहा था कि दिन बहुत संभव है कि आज बीतेगा ही नहीं, तभी फिर बीत गया एक और दिन। फिर रात आई, रात जिसमें अपने हिस्से का ढेर सारा सुख लेकर सबसे साझा करने इकट्ठा होते हैं हम, म्यूजिकल दुनिया के सबसे दिलकश हम सफर यानी रजनीगंधा में। और कहाँ, बस यहीं तो जो है हमारा ठिकाना, 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों की निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

दुनिया वालों में, खासकर किसी से मोहब्बत का दम भरने वालों में एक बुरी आदत होती है जो मोहब्बत की अज्जल गगरी को छलका रहे होते हैं। ज्ञान की तरह ही प्रेम भी जिनका बात बेबात छलक जाता है उनमें बहुत होता नहीं है, मगर सबको मोहब्बत में होने का एक मुअम्मा, एक झूठी पहेली भी बरकरार रखनी है। अब ऐसे में अक्सर आपकी मुलाकात उन खुंद जहन लोगों से होती है जिनको लगता है कि उन्हें पता है कि आजकल सच्ची मोहब्बत की कोई वक्त नहीं रह गई है। अब उन्हें कौन बताए कि वक्त व्यापार में होती है और मोहब्बत में ये व्यापार नहीं किया जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी उसे प्रेम के नजरिए से हटाकर लेन देन, डीलिंग, व्यापार में मत समझिए। आज रजनीगंधा में मौजूए महफिल मुअम्मा मोहब्बत का।

वैसे तो नामुमकिन के बराबर ही मुश्किल है, लेकिन अगर किसी रोज़ ज़िंदगी में ज़रूरतों को महदूद कर लेने की क्षमता काबिलियत आ गई, उस रोज़ इंसान का वक़ार मामूली से बहुत ऊपर उठ जाता है। वैसे ही जिस रोज़ मोहब्बत के कारोबार से वसूली की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी, बस उस रोज मोहब्बत मुकद्दस हो जाएगी। किसी से मोहब्बत करने के लिए सबसे पहले खुद को खोना पड़ता है। अगर आप हर बात में खुद अना के जहर आलूद निवाले खाकर ही खड़े हो पाते हैं तो आप कतई मोहब्बत करने ना निकले। पहले अपनी अना को आत्मसम्मान में तब्दील कीजिए, फिर मोहब्बत की ओर एक कदम बढ़ाइएगा। उससे पहले तो कतई नहीं।

अक्सर एक बहुत ही गैर मुमकिन बात होती है, और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए उस दिन आप सच्ची मोहब्बत की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे।

मोहब्बत वैसी नहीं है जैसी किताबों में लिखी है, वैसी तो कतई नहीं है जैसी सिनेमा में दिखी है। मोहब्बत की खातिर, जी हां, मोहब्बत की खातिर भी

दुनिया से भिड़ जाना मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि मोहब्बत के इतर भी तो जिंदगी है, और मोहब्बत सिर्फ इतनी है भी नहीं। मोहब्बत में जमाने को ठोकरों पर रखना बहुत बाद की बात है, पहले खुद से लड़ना होता है बार बार। मोहब्बत का जो मीठा जहर आप सिनेमा के भरोसे खुद को और दूसरों को बांटते फिर रहे हैं, जरा खुद को एक चिकोटी काटिए और पूछिए कि आप जो अक्सर एक बदतरीन सलूक पहले अपने साथ और फिर अपने आसपास के लोगों के साथ, परिवार के साथ करते हैं, वो भला मोहब्बत के किस अंदाज से किया जा रहा है? यकीन जानिए, आप इस सवाल से भाग तो सकते हैं, लेकिन अगर इसका जवाब मिलेगा तो पांव उखड़ जाएंगे। दुनिया भर में मोहब्बत बांटने की झूठी मुनादी से पहले ये बहाने, ये फसाने, इश्क के गढ़ने से बहुत बहुत पहले खुद से सच्ची मोहब्बत करना सीखी है।

0: मोहब्बत के खाम ख्याली का ये खिला बनाने में एक हिस्सा उनका भी है जिन्हें ये लगता है कि दुनिया में ये 7 बिलियन लोगों की दुनिया में मोहब्बत के अलावा तो कुछ है ही नहीं। बस एक बार कोई मोहब्बत कर ले उनसे या उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए, दुनिया तमाम की बाकी सारी चीजें तो खुद ब खुद हो जाएंगी। ये नहीं तो वो नहीं तो कोई और बहाना बनाकर मोहब्बत को जिंदगी बताने वालों से हमेशा किन के 100 गज की दूरी पर रहिए। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, काम के नाम पर सिर्फ विश्राम करते हैं, दौलत के नाम पर इनके पास बस उधार होता है और शोहरत के नाम पर दुनिया भर की बदनामियां। ये मोहब्बत का मुअम्मा अगर आपके आसपास कहीं मंडराए तो अपने ख्यालों से उसे फूंक कर उड़ा दीजिएगा, वरना बहुत सारी मुश्किलें पैदा होंगी। वो कभी बताएगा नहीं कि वो बहाना कर रहा है।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

ख्वाब में भी किसी से सच्चा इश्क किया है तो आपको उसके लिए जान की बाजी लगाने यानी जहांबाजी की जरूरत शायद न पड़े, बशर्ते आप खुद को किसी महाकाव्य का कोई नायक या नायिका न समझ बैठे। हाँ, आपसे मोहब्बत में बस तनिक सी समझदारी की उम्मीद हमेशा रहेगी। मोहब्बत रिश्तों की शुरुआत के लिए जरूरी है। हाँ, जब तक दूर रहकर आहें भरने भर से काम चल जा रहा है तब तक बात चल भी जाती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कुर्बत में आए तो मोहब्बत आपको दुनियावी जरूरतों के बरक्स तौलती जरूर है। मोहब्बत किसी ख्वाब जैसी लग जरूर सकती है, लेकिन ये कभी पल भर के लिए नहीं आती। ये आएगी तो ठहर जाएगी और फिर आती ही जाएगी, और उस वक्त आपको अगर दुनियावी तालीम नहीं हासिल है तो बहुत दिक्कत होगी।

ख्वाब में तो इंसान जो चाहे कर सकता है, उड़ सकता है, एक साथ अनगिनत कहकशा में काबिज हो सकता है, मगर हम और आप जो वाकईतन दुनिया के साथ चल रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सच को महसूस करते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि ये जिंदगी तो ख्वाब में भी ख्वाब जैसी नहीं होती। यहां सच अपना इमाम दस्ता लेकर हमेशा तैयार रहता है। जब मोहब्बत सच के साथ होती है तो जिंदगी को भुलाया नहीं जा सकता। अगर मोहब्बत में वक्त की झूठी तलाश से फारिग हो गए हों तो खुद में पैदा लियाकतों को पहले वक्त की कसौटी पर कसें, और फिर अगर आप अपनी जिंदगी अपने खर्चे अपने ढंग से जीते हुए चला सकते हैं, तभी मोहब्बत की दीवानगी में सर के बल उतरें, वरना जिगर पर हाथ रखकर सोचिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है।

किस्सा है मुख्तसर ये कि मोहब्बत के मुकद्दस हो जाने तक मोहब्बत कीजिए, कहीं भी कभी भी जब मन कहे सच्ची मोहब्बत के ख़त्म हो जाने के किस्से बयां करने में मत जुट जाइएगा। इस तरह की गलत बयानी कोई करे तो उसे छिछले किरदार का मालिक मानकर बस खामोशी से वहां से अलविदा कहते हुए निकल लीजिए। ये तो तय है कि मोहब्बत तिजारत नहीं है, और शुक्राना के मोहब्बत को तय करने की कोई कसौटी भी नहीं है। मोहब्बत जी भर के कीजिए, मगर रिसालों, अफसानों और सिनेमा की सी ढेर सारी शराइत में लदी बंधी खाम ख्याली से बिंधी हुई कसमसाती सी मोहब्बत नहीं। आजाद मोहब्बत कीजिए। आज भी, कल भी और हमेशा ही।

किसी और के बगीचे की खुशबू गुल पर मर मिटने की अपेक्षा अपने बगीचे के फूलों को पानी देना बेहतर होता है। कई बार लोग मोहब्बत के खत्म हो जाने की बातें कुछ यूं कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत तो भाई साहब दुनिया में रही ही नहीं, अब कहां मिलेगी। अब उन्हें कौन बताए कि सच्ची मोहब्बत तो है, मगर जब आप उसमें वक्त तलाशते हैं तो व्यापार में तब्दील हो जाती है। मोहब्बत अना का खेल नहीं है, मोहब्बत ख्वाब भी नहीं है, मोहब्बत वैसी भी नहीं है जैसी किताबों में, रिसालों में, नगमों में सुनाई देती है। लेकिन मोहब्बत होती बड़ी मुकद्दस है। जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो अक्सर मोहब्बत को जो लोग बुरा भला कहते हैं उनसे दूर भी होने लगेंगे। फिलवक्त एक गीत, फिर समाचार उस पार, एक बार और मोहम्मा मोहब्बत का रजनीगंधा में 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात्रि के 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसीज के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास की प्रेरक शक्ति है। श्री चौहान ने कहा कि गांवों में किया गया प्रत्येक निवेश भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान देता है। अमरोहा में आज एंटी करप्शन टीम ने हसनपुर तहसील के कानून गो को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता किसान ने अपने राजस्व संबंधी काम के लिए कानून गो से संपर्क किया था, जिसके बदले आरोपी ने 10,000 रुपए की घूस मांगी थी। पीड़ित किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और गजरौला में एक मिठाई की दुकान पर जैसे ही किसान ने कानून गो को पैसे दिए, टीम ने उसे दबोच लिया। एंटी करप्शन टीम के इंस्पेक्टर नवल मारवाह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजीपुर जनपद में होटल कारोबारी विनीत राय मर्डर केस के 2 आरोपितों सुमित और सत्या को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपित मामले में मुख्य आरोपित 1,00,000 के इनामी बदमाश शंकर पांडेय के भाई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सुमित और सत्या विनीत राय की हत्या की साजिश में शामिल थे, जबकि मुख्य आरोपित शंकर पांडेय अभी फरार चल रहा है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में 29 मई को विनीत राय हत्याकांड हुआ था। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

रजनीगंधा। उम्मीद एक जिंदा शय है। रात के अंधियारे में जब एक हाथ को दूसरा हाथ न सूझ रहा हो, जब

थकन इस कदर जिस्म को तोड़ रही हो कि घुटने तक कांपते से मालूम हो, प्यास से गला यूं सूख गया हो कि आवाज जलते सहरा की रेत से गला पहुंचती से लगे, नींद रूह पर इस कदर हावी हो जाए कि दुनिया का सही गलत भेदती आंखें मुनने लगें, उस वक्त भी जब कोई सीटी पर सांसों से ऐसा खेल खेले कि रात की खामोशी बरतरफ हो जाए, उस वक्त भी जब किसी की लाठी की सड़क पर टकराने की आवाज से हवा में जो स्पंदन जन्म लेता है, जब किसी के सतर्क कंठ से जागते रहो कि टेर सुनाई देती है, तब जो भाव मन में जागते हैं उन्हें उम्मीद कहा जाता है। मोहब्बत भले ही मुअम्मा ही क्यों ना हो, इस मरती खपती दुनिया में, डांटती डपटती दुनिया में उठकर न जागने वाले इंसानों के लिए एक उम्मीद ही तो है। इस डरती खपती दुनिया में मोहब्बत, और आज मुअम्मा मोहब्बत का।

मोहब्बत में हैं तो एक वादा कीजिए, नहीं हैं तो ये वादा बस कहीं लिखकर संभाल कर रख लीजिए। कभी मिलिएगा तो साथ दस्तखत करेंगे, ताकि दुनिया को सनद रहे कि मोहब्बत की उम्मीद कभी किसी ने जिंदा की थी। वादा ये है कि आज या बीते हुए कल में कभी अगर मोहब्बत ने हमें खुद की ताकत से नवाजा, या आने वाले कल में कभी नवाजती है, तो हम हर हाल में मोहब्बत बचाएंगे। इसे सरे बाजार सहानुभूति के लिए रुसवा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।

मोहब्बत का दावा तो हर कोई कर सकता है, जैसे किसी के सामान्य सृजन पर उनकी प्रशंसा करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर वही बेहद प्रसिद्ध हो जाए तो ये बहुत आसान है। उसी तरह मोहब्बत का दावा बहुत आसान है, क्योंकि भरोसा करने की मशक्कत, उसके सारे टेस्ट तो किसी और को देने होते हैं। अगर मोहब्बत में जरा भी सच है तो मोहब्बत का दावा नहीं कर सकेंगे आप। जहां दावे हैं वहीं रिश्तों में कहीं ना कहीं बाल आ जाता है। दावों से बचिए, कोशिशें कीजिए, वादे निभाने की कोशिशें कीजिए, और मोहब्बत को आपको एक बेहतर इंसान बनाने की गुंजाइश दीजिए। मन बहके तो बस वादा मत कर लीजिए, कोई दावा मत कर दीजिए। मोहब्बत है तो इसे छिपाया नहीं जा सकता। हाँ ये है कि झूठी मोहब्बत को जताने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई ये करे तो बचिए, और खुद को भी बचाइए करने से ये।

अब जो हम कहने जा रहे हैं उसके लिए आपको FM रेनबो 100.7 का वॉल्यूम तनिक बढ़ाना होगा। जहां में जहां तक ये बात पहुंचे वहां तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जहां मोहब्बत है वहां झगड़े जरूर होते हैं, जहां मोहब्बत है वहां हदस जरूर होती है, जहां मोहब्बत है वहां हसद जरूर होती है, जहां मोहब्बत है वहां सब कुछ हक होता है, जहां मोहब्बत है वहां सब कुछ जायज होता है। ये सारी बातें आज के बाद जब भी आप किसी से सुने उनको अपने दोस्तों में शामिल करना बंद कर दीजिएगा। ऐसे लोगों का दिमागी तवाकुन जरा हिला हुआ है, उनको मदद की जरूरत है, मगर आप मत कीजिए।

झगड़े अक्सर गलत फहमियों से होते हैं, वो वक्त रहते दूर कर ली जाएं तो शायद झगड़े ना हो, लेकिन अगर ये झगड़े हिंसा तक पहुंच जाएं तो अपराध है, और अपराधी की जगह जेल है, मोहब्बत भरा दिल नहीं। हसद या जलन एहसासे कमतरी की वजह से होती हैं, दिमागी फितूर हो जाता है कभी कभी, इसके लिए इलाज की ज़रूरत है, मोहब्बत की नहीं। हक हक सब कुछ नहीं होता, हक कमाया जाता है विश्वास से, कई बार भरम रखने से भी, लेकिन मांगें बेहिस मांगें नाहक होती हैं, उनके लिए मना कर देना बेहतर है। मोहब्बत में सब कुछ जायज है ये कहने वालों से बहुत तेजी से दूर भागिए। इनके आसपास होते ही आप जो उलझन महसूस करते हैं ना, वो सच्ची है, और ये उलझन बहुत दूर जाकर ही खत्म होगी। तो इनके नजदीक होते ही दूर भागिए, बहुत दूर।

जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो अक्सर नीर क्षीर विवेक की जो संभावनाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं।

फिर वो भले ही कितने ही झूठ बोले, कितनी बार वादे तोड़े, मोहब्बत को तिजारत समझे या हिंसा भी करे। अक्सर दिल है कि मानता ही नहीं, ऐसे में बगैर किसी गफलत के अपने साथ के लोगों का, बड़ों का, अच्छे दोस्तों का, डॉक्टर्स का, कानूनी सलाहकारों का सहारा लेने में चूके नहीं। इन्हें अपनी जद्दोजहद में शामिल करने से घबराए नहीं। मोहब्बत में कतई कोई बुराई नहीं है, मोहब्बत को पोशीदा रखना भी आपका हक है, लेकिन गलत अंदाज में कदम बढ़ाने का पहला हिस्सा ही, पहला मौका ही आखिरी मौका होना चाहिए। अगर आप हिज्र के डर से, बिछड़ जाने के गम में, बिछोह के डर से ये नहीं कर पा रहे, तो आपको मदद की जरूरत है। आईने में देखिए और खुद को ये बार बार समझाइए।

डिस्पाइट एवरीथिंग, कई बार मोहब्बत में हिंसा के बहुत सारे मामले दुनिया के सामने नहीं आ पाते। घर की चहार दीवारी में घटी घटना घर की बात बनकर घर में ही रह जाती है। चार लोग, चार मोतीबर लोग मामला रफा दफा करवा देते हैं, बाहर बात जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी। मोहब्बत से ये मुअम्मा उतारने में कतई देर न कीजिए। किसी के भारतीय दंड विधान के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए खुद को अपराधी मानना अभी इसी वक्त से बंद कर दीजिए और अपराधी को सजा दिलाने के लिए कानून तक लाने में कानून की मदद कीजिए। मोहब्बत में कोई हाथ उठाए, हिंसा करे तो चीखिए, मदद मांगिए अभी इसी वक्त।

मोहब्बत में कुछ झूठ बहुत आसान से हैं, जिन्हें आप पकड़ भी लेते होंगे, और उसके बाद मोहब्बत में गिरफ्तार आशिकों माशूक एक दूसरे की मजम्मत भी करते हैं, और अगर उन्हें आपसे और आपको उनसे

और उसके बाद मोहब्बत में गिरफ्तार आशिकों माशूक एक दूसरे की मजम्मत भी करते हैं, और अगर उन्हें आपसे और आपको उनसे मोहब्बत के साथ साथ एक इज्जत का रिश्ता भी है तो माफी तलाफी भी आसानी से हो जाती होगी। ऐसे झूठ जो नुकसान न पहुंचा रहे हों, ऐसे झूठ जिनसे बस आपके लिए जरा सा डर भर दिखता हो, उनको अगर आप पकड़ भी लीजिए तो माफ कर दीजिए। मगर ऐसे झूठ से सावधान रहिए जिनसे किसी को नुकसान होता है, जिन्हें आप आसानी से नहीं पकड़ पाते। इन्हें कभी ना कभी तो आपके सामने आना ही है। उस समय इंसाफ जरा सोच समझ कर कीजिएगा। ये मौके शायद बार बार ना आए।

मोहब्बत में जो अच्छाई है वही ये जानने का तरीका भी है कि आपको मोहब्बत हो गई है क्या। अगर आप बेहतर हो रहे हैं, आप में आ रही तब्दीलियां अगर आपको बेहतर इंसान बना रही हैं, आप खुद को बेहतर इंसान बना रहे हैं, तो आप मोहब्बत में हैं। और किसी से हो ना हो, खुद से आपको मोहब्बत हो ही गई है। ये मोहब्बत की अच्छाई है। मोहब्बत में बुराई ये है कि मोहब्बत जिनको बस छू कर गुजरी होती है, उन्हें इसका बहुत सारा असर दिखाने की बीमारी हो जाती है। फिर वो सच्ची मोहब्बत गैर दुनियावी इश्क की कस्में खाते सड़कों पर नजर आने लगते हैं। बुराई इसलिए भी है कि इस तरह के आशिकों की बारात सच्चे इश्क वालों पर अक्सर भारी पड़ जाती है। इनके नाकाबिले मुआफी अंदाज की वजह से दुनिया असली इश्क वालों के सच को भी नहीं मानती। इन्हें जहां पाइए वहीं इनके अंदाज को बदलने के लिए इनसे एक छोटी सी इल्तिजा जरूर कीजिए। इन्होंने कबूल कर लिया तो दुनिया जहान का भला हो जाएगा। मोहब्बत में अगर आपको लगता है कि सच्चाई कहीं नहीं है, तो आपको बस लगता है, ऐसा है कतई नहीं। मोहब्बत में डूब जाइए, मगर मोहब्बत का सिला मत मांगिए। मिलेगा नहीं, मिला तो दिलासा मिलेगा नहीं। मोहब्बत यहीं तक, इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित होंगे। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करके जनपद में विकास कार्यों, राजस्व कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी 15 दिन में और मंडल आयुक्त प्रत्येक माह में अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक करें। सीएम ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत जनपद में संचालित गौशालाओं की संख्या और वहां संरक्षित गौवंश के चारे की व्यवस्था एवं उपचार की व्यवस्था के बारे में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा जनपद सीतापुर के 2 प्राचीन स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने के संबंध में प्रथम अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार तहसील लहरपुर के ग्राम नवीनगर स्थित शिव मंदिर एवं कुंड तथा तहसील सिधौली के ग्राम परेवाजाल स्थित परेवाजाल का टीला को उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण संबंधी अधिनियम 1956 के अंतर्गत संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया है। जौनपुर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु व्यापार बंधु की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को भी निर्देशित किया कि वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व निरीक्षण कर आवश्यक कार्य पूर्ण कराए जाएं। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:16 पर और सूर्यास्त 7:04 पर होगा। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 प्रसारित होगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। हमारी सभा यहाँ समाप्त होती है। प्रातःकाल 5:53 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।